0: प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया, तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नील कंठ में धारण कर लिया, तभी से वे नील कंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के रावणे अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देख कर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च शवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। नीता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहने आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय।

0: करके घर से भी गई। कद्दू ने वनीता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जन्म दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वह कद्रु और अभिनेता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है परंतु पूछ काली है। ये देखकर अभिनेता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देख कर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुँह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे, जरूर इस प्रकार दोनों भाई लाल धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कृष्ण जी की आज्ञा प्राप्त कर गुरु जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गुरु को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गुरु जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गुरु जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से रक्षी शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके अभयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्शीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं। सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और धूल से ढककर मुंह से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गुरु जी ने कहा भगवान एक तो आप मुझे अपनी भुजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजरअमर हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ। गुरु जी ने कहा ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाते देखकर क्रोध में भरकर बजू चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा इंद्र, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए, आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुड़ उसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सड़कों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा ये बलवान सर भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा सर्पों से कहा ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोता, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे कि किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना, और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को,

0: कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है, तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी कैसे ये कथा बढ़ती है, अब क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के, तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गते सुतेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुंधतीषु हिमवान यद आकर्षित ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं, लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं, चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखाए जाते हैं तो, और वो जो सारा का सब पत्रिका उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए।
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है, अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है, तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा, और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयां भी भिजवाई, तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए, जो सप्त मुनि थे वो लौट आए, और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ, तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती है, तो उसने संग्रह करवाया। हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए। अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय तामंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हो वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेदव्यास है, वेदव्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेदव्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेदव्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का कि गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
1: यह अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत
0: सारे
1: अगर हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेद व्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामी समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़यो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही। हाँ। अब देवालय पर्वत है। हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं? मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदाय यत्नता। सुवेशालंकृतः श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाग्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए? तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे। वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में। तो नदी क्यों बनी? क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था। और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे।
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल। तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुड़ नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुड़ आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरी श्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए, अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय

0: के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पार यात्री भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब वो बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं,
1: देख रहे हैं वो
0: तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद
1: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन सब सातों गुणों को आत्मा

0: पूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा

0: प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट की, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे,
2: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्र

0: इंद्रियाणां हि चरतां यन् मनो नु विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भस्सि। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो, इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज सैटरडे का दिन है और मैं आपके लिए ना कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ जाती हूँ। अच्छा, आज ना एक कुछ ऐसी चीज लेके आई हूँ जो कि बड़ी मजेदार है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ओकेजन पे ये ना बने, किसी के घर कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन है, ये डिश ना हो तो कैसे हो सकता है। अच्छा, आज ना मैं मीठे की बात कर रही हूँ। अचानक किचन से अगर आपको मीठी मीठी खुशबू आए, फ्रेश वनीला, मेल्टेड चॉकलेट और बटर की शाही खुशबू, ये दिमाग मेरा घुल जाती है। और सच बताओ, दिमाग की बत्ती जल जाती है, अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और भारत हो या फिर पूरी दुनिया, जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है, किसी का बर्थडे होता है तो एक ही ख्याल आता है, वो एक किसकी मैं बात कर रही हूँ, आप ज़रा बताइए मुझे। तो हमारा नंबर है 8010781078, जल्दी से मैसेज कीजिए और मैं कुछ ही देर में आती हूँ। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे और भी बहुत सारी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, आज है सैटरडे का दिन, मैं लेकर के आई हूँ आपके पास एक कमाल की टेस्टी सी एक रेसिपी। और आज ना मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी डिश के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसे बेक किया जाता है, जिसकी खुशबू कभी वनीला कभी मेल्टेड चॉकलेट बटर शाही खुशबू दिमाग में ना घुल जाते हैं और भाई मज़ा ही आ जाता है। इसका स्वाद बड़ा अलग है, कमाल है। और आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं भाई, पूरा देश पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। मैं आज बात कर रही हूँ केक की। जी हाँ, केक जो है, देखिए ये जो है ना हमारे दिल को, ये जो है ना बिल्कुल छू जाता है। और जो चीज़ दिल को छू जाए ना उसे ज़रूर बनानी चाहिए। और आज का पूरा हमारा प्रोग्राम ना इसी पर है, यानी कि केक के बारे में आपको बात आपसे करने वाली हूँ। आपको रिच चॉकलेट फज केक अगर पसंद है या क्लासिक वनीला फ्रूट केक पसंद है तो भाई जल्दी से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर 8010781078। और इसी के साथ देखिए, केक जिसे हम बिल्कुल एक मॉडर्न वेस्टर्न डेजर्ट समझते हैं, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एशियन ग्रीस और रोम में सबसे पहले केक जैसी चीज़ें बनाई जाती थी, पर वो आज के केक जैसी जो फ्लफी है वो नहीं होती थी। वो एक्चुअली में वो मीठी रोटियां होती है ना, यानी कि स्वीट ब्रेड्स होती हैं, वो होती थी, और जिन्हें हनी नट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है वो महकाया जाता था, उसके साथ बनाया जाता था, बेक किया जाता था। और साथ ही साथ केक शब्द जो है वो आया ओल्ड नॉर्स वर्ड काका से। और 17th सेंचुरी में जब यूरोप में बेकिंग टेक्निक्स इम्प्रूव हुई और रिफाइंड शुगर मिलने लगी, तब बनाए गए हमारे आज के मॉडर्न स्पॉन्जी और फ्रॉस्टेड केक्स। अब ये कैसे बनाए गए, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। मैं ना बड़े मज़ेदार एक ऐसी डिश के बारे में बात कर रही हूँ जो कि सभी को बड़ी पसंद है। अच्छा, मज़ेदार एक फैक्ट बता दूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बर्थडे केक पर कैंडल्स क्यों लगाते हैं और उन्हें फूंक कर जो है वो बुझाते हैं? और ये ट्रेडिशन जो है ना, मैं आपको बता दूं, वो आकाश के तारों जितना पुराना है, बहुत पुराना है। एंशिएंट ग्रीक्स अपनी जो मून गॉडेस है उनकी आगे जो है वो केक चढ़ाते थे और केक के ऊपर कैंडल्स लगाते थे ताकि वो चांद की तरह चमके। अब उनका मानना था कि मोमबत्ती का जो धुआं है वो उनके विश और प्रेयर्स को सीधे भगवान तक लेकर के जाता है। तभी से आज तक हम केक काटने से पहले विश मांगते हैं और मतलब कैंडल्स लगाते हैं। कितना खूबसूरत थॉट है ना ये। तो देखिए, ये भी कुछ चीज़ें हैं ना जो सामने आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को ऐसे ही नहीं हम विद्वता का देश कहते हैं। जब वेस्टर्न केक कल्चर इंडिया में आया तो हमारे देश के लोगों ने उसे एक बड़ा ही प्यारा देसी ट्विस्ट दिया, द एगलेस केक। इंडिया में बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, इसीलिए हमारे लोकल बेकर्स ने दही और कंडेंस्ड मिल्क और बेकिंग पाउडर का यूज़ करके एक ऐसा मैजिक कॉम्बिनेशन बनाया कि बिना अंडे के भी केक बिल्कुल रुई जैसा स्पॉन्जी बनने लगा। आज इंडिया में एगलेस जो केक्स हैं उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि रेगुलर केक। तो सोचिए ज़रा, हमारे देश ने एक विदेशी डिश को अपना बनाया और उसमें देसी वेजिटेरियन ट्विस्ट डाल ही दिया। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खास कमाल डिश के बारे में, और वो है केक। जी हाँ, आज केक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से पुरानी बेकरी से आने वाली फ्रेश केक की खुशबू आपको सीधा आपके बचपन में ले जाए? भाई मुझे तो याद है बचपन में जब बर्थडे पर वो लोकल बेकरी से पाइनएप्पल केक आता था ना, तो मतलब ऐसा लगता था जैसे सारा का सारा ध्यान ना केक पर ही चला गया है। अच्छा, केक की जो फोटोज़ आप देखे हो जो पहले के टाइम में, क्योंकि हम तब तो फोटोज़ फ़ोन नहीं थे, ऐसे स्मार्टफोन नहीं थे। अगर अपने बचपन की काफ़ी पुरानी बात की जाए, हम 90s की बात की जाए या लेट 20s की बात की जाए, तब स्मार्टफोन जो है लेट 90s की और जो अर्ली 20s की बात की जाए, तब स्मार्टफोन नहीं आए थे। तो अब क्या होता था ना कि कैमरा होता था, कैमरा रोल होता था, उसके बाद उसको फोटोज़ जो है वो धुलवा ली जाती थी, यानी कि निकलवा ली जाती थी। फोटोज़ निकलवाने के बाद उसमें जब आप फोटोज़ देखेंगे, पुरानी फोटोज़ आप देखिए, एक केक रखा है, ढेर सारे बच्चे और सारे बच्चे केक को देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं कि सारे जने मिल कर केक को देख रहे हैं, और केक किसकी प्लेट में ज़्यादा आएगा किसकी कम, इसकी भी नज़र रखते थे। चेरी किसके पास आएगी, क्रीम किसके पास आएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें तो सिर्फ ब्रेड दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो ऊपर वाला जो फ्लावर बनाया ना, ये फ्लावर दे दो, ये जो क्रीम है ना ये हमें पसंद है। तो भाई बचपन तो याद आ ही जाता है ना जब भी हम केक को देखते हैं, और जो ऊपर रेड जो चेरी लगी हो, क्रीम होती है ना, वो मज़ेदार होती है। और वो चेरी के लिए ना मतलब हर कोई लड़ाई हो ही जाती थी उनमें, और वो 5 रुपए वाला जो क्रीम रोल जो है या प्लम केक जो है वो आता था, वो दिन इतने हसीन रहे हैं ना कि मतलब बहुत ही कमाल। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई कहानी है ऐसी, ज़रूर हमें बताइएगा। नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

फम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ आज केक की। अच्छा, केक बनाने का तरीका आपको ज़रूर बताऊंगी। एक सवाल हमारे पास आया है मेघा जी की ओर से, सेक्टर 15 फरीदाबाद से ये लिखती हैं। साक्षी, घर पर बच्चों के लिए केक बनाना है पर मेरे पास OTG या अवन नहीं है, क्या कढ़ाई या प्रेशर कुकर में स्पॉन्जी केक हम बना सकते हैं? तो भाई बिल्कुल बना सकते हैं मेघा जी। तो चलिए बिना देर किए ना मैं आपको ना बिना किसी अवन के बिल्कुल स्पॉन्जी मॉइस्चर और माउथ वाटरिंग प्रेशर कुकर वाला चॉकलेट स्पॉन्जी केक बनाने की एक आसान से आपको रेसिपी बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। डायरी और पेन तैयार कर लीजिए, आज साक्षी आपको बताने वाली आज कैसे झटपट से आप इसे घर पर प्रेशर कुकर में केक जो है वो बना सकते हैं। द नो अवन प्रेशर कुकर केक, चॉकलेट केक आज हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, बस अपना डायरी नोटपैड बिल्कुल तैयार रखिए, पेन तैयार रखिए। मैं बस यूं गई यूं आई, सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मारा रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही कमाल टेस्टी केक के बारे में बता रही हूँ। देखिए बच्चों के बर्थडे हो या शाम की चाय के साथ कुछ मीठा खाने का मन हो जाए ना, कोई कुकर वाला जो चॉकलेट केक है ना, हर मौके के लिए परफेक्ट और इजी रेसिपी है। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, मॉडर्न बेकिंग का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो 18th century में शुरू हुआ था, पर इंडिया में कुकर बेकिंग एक ऐसा जुगाड़ है जो हर घर में फेमस हो चुका है और बहुत टेस्टी बनता है। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, चीनी 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, दूध 1/2 कप, दही 1/4 कप, मेल्टेड बटर या ऑयल 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1 कप। और 1 कप हम इसलिए नमक ले रहे हैं, कुकर का जो बेस है वो हम बनाएंगे और इसमें प्री हीटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए नमक हमें ज़रूरत है 1 कप की। इसके साथ अब बताने वाली हूँ आपको इसकी विधि क्या है, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. मैं आ चुकी हूँ आपके पास और आपको बता दूँ आज केक की बातें कर रही हूँ. सैटरडे का दिन है, रेसिपीज आपके लिए लेकर के आती हूँ. अच्छा, मैं बात कर रही हूँ अब प्रेशर कुकर में बनने वाले केक की. नो ओवन आज हम केक की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले कुकर को प्री हीट आपको करना है. सबसे पहले एक बड़े प्रेशर कुकर के बेस पर आपको एक कप नमक आपको फैला देना है. आपको बैलेंस करना है, एकदम फैलाना है अच्छे से. उसके बीच में एक वायर स्टैंड या छोटी सी कटोरी आपको उल्टी करके रख देनी है. और कुकर की जो सीटी है, उसकी जो विसल है और उसका जो गैस्केट है, जो रबर है, वो निकाल देना है. ढक्कन बंद कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपको 10 मिनट तक के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है. इसके बाद अब एक बर्तन में आपको छलनी आपको रखनी है और इसमें आपको मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक डालकर अच्छी तरह से इसे छान लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रखे. अब क्या करना है, दूसरे बोल में आपको मेल्टेड बटर, दही, पाउडर्ड शुगर और वनीला एसेंस डालकर आपको विस्क करना है 2 मिनट तक के लिए अच्छे से. इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब आपको जो इसमें मिक्स अच्छे से फेंटने के बाद आपको जो है ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा. इसके बाद अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको डाल देना है. थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, जो मैदा है और वो सारी चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको जो है कट एंड फोल्ड इस तरह से आप जो है वो फेंटते रहिए. और अब इस मिक्स को आपको जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसीज की हो जाएगी. ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, बस अच्छे से आपको मिक्स करना है. इसके बाद आपको क्या करना है, केक टिन आपको लेना है. केक टिन को थोड़ा सा ऑयल या आपको ग्रीस ऑयल से आपको बटर से आपको ग्रीस करना है. ऑयल से करेंगे ज़्यादा बेहतर है, ऑयल से ग्रीस कर दीजिए और उसके बाद मैदा उसके ऊपर डस्ट कर दीजिए, यानी कि हल्का सा मैदा उस पर वो रख दीजिए, छींट दीजिए या बटर पेपर आप लगा सकते हैं चाहे तो. केक बैटर को आपको टिन में पलट देना है और 2 से 3 टैप आपको करने हैं ताकि अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाए. अब इस टिन को कुकर के अंदर स्टैंड पर रख देना है और ढक्कन बंद कर देना है. लो फ्लेम पर धीरे से आपको धीमे धीमे आंच पर पकाना है. 35 से 40 मिनट तक आपको बेक होने के लिए धीमी आँच पर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है. याद रखिए 30 से 40 मिनट तक के लिए. और 35 मिनट बाद केक के बीच में आपको एक टूथपिक डालकर चेक करना है कि क्या वो साफ बाहर आ रही है. साफ बाहर आ रही है इसका मतलब है केक अंदर से एकदम पक गया है, अच्छे से बन चुका है. और आपको क्या करना है, निकाल लीजिए जैसे ही वो हो जाए, आपको लगे कि पक गया है निकाल लीजिए. और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसे जो है डीमोल्ड करना है. थोड़ी देर बाद पहले उसे ठंडा होने दीजिए और ठंडे होने के बाद उसे डीमोल्ड करना है. अब इसका आपका जो केक है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है. बस आपको कुछ टिप्स और दूंगी. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी के बारे में, वो है केक की। आज हम बेकिंग कर रहे हैं। अरे केक बैटर को हमेशा एक डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ज़्यादा अगर आप ओवर मिक्स कर देते हैं तो केक अंदर से एयर पॉकेट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं और केक बाहर से हार्ड बन जाता है। और अगर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आपके पास ना हो तो नॉर्मल एक सैशे आप इनो फ्रूट सॉल्ट का जो है वो आप बैटर उसका बना सकते हैं, इसको आप डाल दीजिए। और साथ ही साथ आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध मिलाएंगे और तुरंत बेक करने के लिए आप इसे डाल दीजिए। केक उतना ही स्पॉन्जी बनेगा जितना आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से आपका बन रहा था। अब घर पर बना केक है तो मार्केट के जो प्रिजर्वेटिव और पाम ऑयल है वो नहीं होगा, कोको पाउडर में जो है वो एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, तो ये मूड को भी आपके अपलिफ्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा, खाने में भी आपको जो है मज़ेदार लगेगा। खा के आप ज़रूर कहेंगे कि साहब साक्षी आज तो भाई मज़ा ही आ गया, क्या बताई है ना डिश। तो आप इसके साथ बना सकते हैं। देखिए जो आप ठंडा हो जाए जब केक आपका तो आप उस पर मेल्टेड चॉकलेट जो है वो डाल सकते हैं, थोड़े चॉको चिप्स डाल सकते हैं, गर्म गर्म चाय या ठंडे दूध साथ इसे सर्व कीजिए, बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर चाहते हैं तो इसको आप कट करके इसके बीच में आप क्रीम भी लगा सकते हैं, मार्केट में आपको वो मिल जाएगी तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। विप क्रीम आपको मिल जाएगी तो विप क्रीम आप उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के उसे बना सकते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आपको मिल जाएगा। घर पर बनाइए केक, किसी का बर्थडे है कोई फंक्शन घर पर बनाइए, बहुत कमाल लगता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रही और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ। आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे वाले दिन आपके लिए एक बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई, और वो है केक की। अच्छा, केक के बारे में आपको बता दूँ, अभी मैंने बताया आपको केक कैसे बनाना है। और आजकल केक की दुनिया में ना बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है, क्लासिक चॉकलेट केक बेहतर है या फिर रॉयल रेड वेलवेट। तो रेड वेलवेट केक का वो माइल्ड कोको टेस्ट जो है, ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर चॉकलेट, जो चॉकलेट लवर्स हैं वो कहते हैं कि चॉकलेट का कोई मुकाबला ही नहीं है स्वाद और टेक्सचर का, या डिफरेंस जो कि ही जो बेकिंग की दुनिया है इतनी एक्साइटिंग देखिए इसे बना देता है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको वैसे कौन सा केक खाना पसंद है? भाई मुझे तो बटर स्कॉच फ्लेवर केक में बड़ा पसंद है। आजकल तो कितने सारे आ रहे हैं, मतलब गुलाब जामुन भी आ रहा है, अब तो गुलाब जामुन वाला केक जो है, या रसमलाई वाला केक भी है, ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। अलग अलग जो है तरीके केक जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, आजकल लोग जो है वो फिटनेस के चक्कर में ना केक से दूर भागते हैं, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। केक हमेशा अनहेल्दी होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आजकल जो है वो देखिए गिल्ट फ्री बेकिंग का भी ट्रेंड है, आप मैदे की जगह ओट्स फ्लावर का या फिर गेहूं का भी आटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर की जगह आप गुड़ या फिर बनानास का यूज़ कर सकते हैं। आटा देखिए, जो जागरी बनाना केक हो गया, आटा जागरी बनाना केक, वो उतना स्वादिष्ट होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो नुकसान नहीं देगा। और एक क्लीन ईटिंग के साथ आप मिठास को आप बनाए रख सकते हैं, तो अच्छा आपको लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए दुनिया का सबसे महंगे केक के बारे में आपको मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूं केक की। आज सैटरडे का दिन है, रेसिपीज लेकर के आती हूं। अच्छा, केक के बारे में मैंने आपको बताया है, बात करते हैं सबसे दुनिया के महंगे केक के बारे में। दुनिया का सबसे महंगा केक कितने का होगा, मतलब लगभग आप कितना सोच सकते हैं? भाई हम सोच सकते हैं कि चल

ये वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, इससे ज्यादा केक क्या ही महंगा होगा। ये भी एक्सट्रीम ही है, 2,00,000 रुपए भी क्या ही बोल दिया एक्चुअली। देखिए मैं आपको बता दूं, दुबई में एक डिजाइनर ने एक बर्थडे केक बनाया था जिसकी कीमत लगभग $75 मिलियन यानी कि करीब 600 करोड़ रुपए थी। इस केक में असली हीरे और प्रेशियस स्टोन जो है वो जड़े हुए थे। तो सोचिए जरा, खाना और आर्ट जब मिल जाए तो कितने बड़ा रिकॉर्ड जो है ये बनता है। और ये जो है भाई कमाल, लोग देखते रह गए थे। इसकी जो फोटोज हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए केक ना आजकल बड़े अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, एक और चलन जो है वो नया, एक ट्रेंड जो है वो आया है, और ये है कोरियन बेंटो केक का। ये छोटे छोटे सिर्फ 250 ग्राम्स के मिनी केक्स होते हैं, जो एक लंच बॉक्स जैसी जो मिट्टी या पेपर बॉक्स में जो है वो आते हैं, और अकेले खाने के लिए या छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बेंटो केक सुपर हिट है। और फरीदाबाद के कैफेज़ में भी इनका अलग ही क्रेज़ है, ट्रेंड है या ये रंग है, तो सच में मतलब मज़ा आ जाता है। बेंटो केक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं आजकल। अच्छा, क्रिसमस की अगर बात करें तो इस पे आते हैं प्लम केक, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग कहानी है, और साथ ही आपको कौन सा केक खाना पसंद है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। नंबर है 8010781078। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपको बताया केक के बारे में स्पेशल। देखिए होता है ना कोई भी ओकेजन तो केक बनाए जाते हैं, तो शुरुआत इसकी हुई थी स्वीट ब्रेड से और आज भाई बहुत ही कमाल टेस्टी ओवन केक में ये जो है इवॉल्व हो गया है। और आजकल तो भाई घर पर बिना ओवन के भी आप केक बना सकते हैं और वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप घर पर आप जो है वो बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में केक जो है वो बना सकते हैं और बहुत ईजी भी है बनाना। तो चलिए आप बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। अब इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अभी कुछ देर में आती हूँ आपके लिए लेकर के प्रोग्राम सफ़रनामा, जिसमें हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ग्रीन ग्रह और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की यानी कचरे के सही प्रबंधन की। दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह आपने चाय पी, सब्जियां काटी, दूध के पैकेट खाली किए, पानी की बॉटल खत्म हुई, ये सब इस्तेमाल करने के बाद आपने जो भी फेंका, क्या आपने कभी सोचा कि उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? क्या वो रिसाइकलिंग तक पहुंचता है या फिर किसी खुले मैदान, नाले या लैंडफिल में जाकर हमारी हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने लगता है? सच तो ये है कि कचरा हमारे घर से निकलने के बाद ख़त्म नहीं होता, बल्कि वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और अगर इस यात्रा का सही प्रबंधन ना हो तो यही कचरा हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं ग्रीन ग्रह, जहां हर कड़ी में हम जानेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कचरे का सही निपटान कैसे किया जाए और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस खास सफर की शुरुआत, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य धरती की शुरुआत हमारी अपनी जिम्मेदारी से होती है। हम सभी अपने घर की सफाई तो रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि घर से निकलने वाला कचरा आखिर कहाँ जाता है? क्या उसका सही तरीके से निपटान हो रहा है? अगर नहीं तो यही कचरा धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आज दुनिया भर में कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण हर दिन पहले से कहीं ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है। अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। और अगर ठोस कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक बन सकता है। कचरा कैसे बनता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो आइए बताती हूँ। जब कचरे को समय पर इकट्ठा नहीं किया जाता, खुले में फेंक दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है, तो उससे निकलने वाले धुएं और हानिकारक रसायन जो है वो हवा को प्रदूषित करते हैं। यही कचरा बारिश के पानी के साथ मिट्टी और जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, जिससे पानी भी दूषित होता है। और इतना ही नहीं, खुले में पड़ा कचरा मच्छर, मक्खियां, चूहे और बाकी जो कीट हैं उनके लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। यही कीट कई गंभीर बीमारियों को फैलाने का कारण बनते हैं। गलत तरीके से कचरे का प्रबंधन होने पर पानी और भोजन से होने वाले संक्रमण, श्वसन संबंधी बीमारियां और जहरीले रसायनों के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बन जाता है। सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है, तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही काफी वीक है, काफी संवेदनशील है। इनमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अनौपचारिक कचरा श्रमिक, यानी वो लोग जो बिना पर्याय सुरक्षा के कचरा इकट्ठा करते हैं, और वो परिवार शामिल हैं जो खुले कचरा डंप या लैंडफिल के आसपास रहते हैं। इन लोगों को प्रदूषित हवा, दूषित पानी और जहरीले पदार्थों के लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण और जलवायु पर प्रभाव, तो देखो कचरे का गलत प्रबंधन सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। जब कचरा खुले में फेंका जाता है या जलाया जाता है तो हवा, मिट्टी और पानी दूषित होते हैं। इससे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि बल्कि पूरी पृथ्वी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खुले डंपिंग स्थल और कचरे के सड़ने की प्रक्रिया से निकलने वाली गैसें जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी बढ़ाता है। यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरी धरती के भविष्य पर असर डाल सकती है। क्या कचरा सिर्फ समस्या है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कचरे का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो यही कचरा एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है। सूखे कचरे जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच को रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ प्रकार के कचरे से ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है और हरित रोजगार यानी ग्रीन जॉब्स के नए अवसर पैदा होते हैं। तो क्या करना होगा? तो देखिए, आपको मैं कुछ बताती हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण सुझाव। सबसे पहले हमें कचरा पैदा होने की मात्रा कम करनी होगी। जहाँ कचरा संग्रह की व्यवस्था कमजोर है, वहाँ बेहतर और नियमित कचरा संग्रह सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। खुले में कचरा फेंकने और जलाने जैसी आदतों पर रोक लगानी होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र की भी इसमें अहम भूमिका है। स्वास्थ्य संस्थानों में निकलने वाले कचरे का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना, कचरे का सही तरीके से पृथक्करण करना, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाना, ऐसी नीतियां बनाना जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा करते हैं। साथ ही कचरा श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान जरूरी है। तत्काल क्या किया जाना चाहिए? तो खुले कचरा डंप और खुले में कचरा जलाने की जो प्रथा है उसको बंद कर देना चाहिए। कचरा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के सहयोग से वैज्ञानिक और सुरक्षित कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारी जिम्मेदारी, जो कि एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता होना चाहिए। सरकार और प्रशासन के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अपने घर से ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने घर से जो शुरुआत है वो सबसे पहले की जानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। जहाँ संभव हो गीले कचरे से खाद बनाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, कचरा कभी भी सड़क, नालियां या खाली जगहों पर ना फेंके, रिसाइकलिंग को अपनी आदत बनाएं। और वहीं इसी के साथ याद रखिए, कचरा केवल एक अपशिष्ट नहीं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य संगठन की यह रिपोर्ट हमें साफ संदेश देती है कि अगर आज हमने कचरे के सही प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो यही कचरा एक संसाधन बन सकता है और इससे स्वच्छ शहर, बेहतर स्वास्थ्य, नए रोजगार और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। चलिए इस कड़ी में आगे कुछ और बातें करते हैं और जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। वहीं धरती हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, लेकिन आज ये बढ़ते कचरे और प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। जैसा कि इस पर हमने बात की, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और हमारी जीवन शैली बदल रही है, उसी रफ्तार से हर दिन कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यदि इस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो ये ना केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। और ग्रीन ग्रह जो ये प्रोग्राम है, इसी सोच के साथ शुरू किया गया ये एक जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब जैसा कि कुछ बदलाव मैंने आपको बताए घर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करती हूँ। भारत हर साल 6 करोड़ टन यानी लगभग 62 मिलियन टन से भी ज्यादा ठोस शहरी कचरा उत्पन्न करता है। भारत सरकार के अनुसार देश में प्रतिदिन 1.5 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा उत्पन्न होता है। वहीं दुनिया में हर साल 2 अरब टन से भी ज्यादा नगर ठोस कचरा यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। अगर आज स्थिति जारी रही तो साल 2050 तक ये बढ़कर लगभग 3.8 अरब यानी 3.8 अरब टन तक पहुंच सकता है। भारत में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे का बड़ा हिस्सा जैविक यानी गीला कचरा होता है, जिसे कंपोस्ट बनाकर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। और वहीं प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। जी हाँ, कई साल। कई प्रकार के प्लास्टिक को टूटने में करीबन 400 से 500 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। वहीं एक टन कागज की रिसाइकलिंग से लगभग 17 पेड़ों को बचाया जा सकता है और साथ ही पानी और ऊर्जा की भी बचत होती है। भारत के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार घरों, संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करना आवश्यक है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इस पर हम कई सारी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जब गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जाता है तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। इससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है, प्रदूषण घटता है और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, खुले में पड़े कचरे से जहरीली गैसें निकलती हैं, मच्छर और मक्खियां पनपती हैं और कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं प्लास्टिक नालियों को जाम कर देता है, जिससे जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम कई सारी बातें करते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। घर में कम से कम 2 डस्टबिन रखें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, घर में 2 डस्टबिन आप रखें, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। रसोई के जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। कपड़े या जूट बैग का इस्तेमाल करें। जी हाँ, उसको अपनाएं। पहले के टाइम में भी अगर हम आज से कई साल पहले जाते हैं, हमारे दादी जी नानी जी वाले दौर में जाते हैं, तो आपने उनसे ज़रूर सुना होगा कि जूट का बैग का इस्तेमाल वो करते थे। तो आज जो है ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन यह देखकर अच्छा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो वापस से जूट के बैग पर शिफ्ट हो रही है। तो बस आपको यही करना है, जूट के बैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ई वेस्ट, बैटरियां और बल्ब सामान्य कचरे में ना फेंकें, बल्कि आप इसे अधिकृत संग्रह केंद्रों पर जमा करें। रिसाइकलिंग वाली जो वस्तुएं हैं उसको रिसाइकलिंग चैनल तक पहुंचाएं। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा कर सेवा क्लीनलीनेस ड्राइव और प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद नगर निगम की माननीय मेयर सुश्री परवीन बत्रा जोशी जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अभियान के दौरान सफाई के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर कई छात्र छात्राओं ने भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अपने विचार साझा किए और सभी से प्रकृति को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में सभी जो छात्र छात्राएं जुड़े हैं और माननीय मेयर परवीन बत्रा जोशी जी हमारे साथ जुड़े, कई सारी बातें इन्होंने की, तो आइए सुनते हैं उनके विचार। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका और इस वक्त हम हैं मेयर मिस परवीन बत्रा जोशी जी के साथ में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं प्रियंका हूँ।
1: थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो ये मानव रचना ओपी भल्ला फाउंडेशन टीम की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इसके लिए पूरी टीम का आभार, वधवा साहब जी का और आप सभी जो बच्चे आए हुए हैं कॉलेज के। बहुत अच्छा इनिशिएट लेता है मानव रचना। मुझे लगता है कि जो समाज के लिए माननीय स्वर्गीय भल्ला साहब जी ने जो एक मुहिम चलाई थी सभी बच्चों को एजुकेट करना, स्पेशली लेबर क्लास के लिए, इसके लिए मैं खुद विटनेस हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई स्क्रिप्ट बता रही हूँ या कहीं कोई लिखा हुआ देगा जी। मैंने भल्ला साहब को एक साइकिल पर चलते हुए भी देखा, उनको इतने लेबोरियस पर्सन थे। उनका एक ही विज़न था, क्योंकि मेरा बच्चा भी मानव रचना से ही पास आउट है, तो मुझे इसलिए उनकी पूरी डिटेल भी मालूम है कि ये लोग कितने एफर्ट्स करते हैं बच्चों के लिए। और यूनिवर्सिटी तो अपने आप में एक नाम है ही, तो इसके लिए जो आज आपके सामने सभी बच्चे आए हुए हैं और इस कार्यक्रम और सफाई अभियान जो इन्होंने आज स्टार्ट किया इसके लिए तो सभी का आभार व्यक्त करूंगी। लेकिन बस यही है कि आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी शहरवासियों को कि कृपया अपनी इच्छा से ही पॉलीथीन बंद कर दें और वाटर बॉटल्स, क्योंकि शहर में जो सबसे ज़्यादा कूड़ा भी इन्हीं दो चीज़ों से है, प्लस वाटर लॉगिंग का मेन रीज़न यही है। हम कहीं कहीं तो 20 ट्रक 40 ट्रक 60 ट्रक इसमें नालों से निकाल लें, जो हमारे बड़े नाले हैं। आपको मालूम होगा कि बड़े नाले हमारे यहाँ 9 है शहर में, टोटल छोटे बड़े मिला के अराउंड 120 हैं। और सभी की सफाई करके सिर्फ ये दो चीज़ें ही निकलती हैं जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार सभी से कहना चाहूँगी कि पुराने समय में हमारे समय में हम अपने माता पिता के साथ दादा दादी के साथ एक झोला लेके चलते थे। झोला भी आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर जूट बैग्स और बहुत कुछ आता है।
2: Correct.
1: तब तो घर में मम्मियाँ ही बनाती थी, मम्मी दादी बुआ सब बनाते थे, उसी में ही सारा खा आता था सामान। अब क्यों नहीं आ सकता? तो अब भी तो आ सकता है। अब तो और भी अपनी गाड़ी में सभी लोग दो चार थैले रखें और कृपया स्वेच्छा से पॉलीथीन को बंद कर दें, जिससे कि गिलहरी का योगदान रहेगा सभी की तरफ से एक इस समाज के लिए, इस फरीदाबाद के लिए।
2: जी,
0: आज का यूथ बहुत स्मार्ट है और बहुत सारी चीज़ें जानता है। कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा जूट का बैग ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन अभी और बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयर करना ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार?
1: बस इसी के लिए कह रही हूँ मैं आपकी ओर से कि जैसे बच्चे भी आजकल जूट का बैग यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट लेदर भी बहुत कम यूज़ करते हैं, एक स्मार्ट बैग्स भी आ रहे हैं आजकल। उसके अलावा जो ये हम इनकी हेल्प ले सकते हैं महिलाओं से, ग्रहणियों से, बस वही जैसे ही कोई पॉलीथीन आता है उसको रीयूज ना करके उसको बंद करके एक साइड पर रख दें। अभी हम जगह जगह डस्टबिन लगा रहे हैं इनके लिए, स्पेशली बोतल बिन्स, उसमें आप प्लास्टिक बोतल डालिए, प्लास्टिक डालिए और वहाँ से हमारी टीम आएगी वीकली आपके पास, वीकली और कुछ पर डे भी जहाँ पर कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ कूड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ से डेली भी उठाया जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट हम वहाँ से उठा लेते हैं और उसके आपको मालूम होगा जगह जगह प्लांट्स लग चुके हैं, उसमें सोसाइटीज़ में यूज़ करने के लिए बेंचेस बनाए जा रहे हैं, उसका अच्छा यूज़ किया जा रहा है, कि पॉट्स भी बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। तो उसका कि सदुपयोग भी है और एक सहयोग भी है। और जब तक जन सहभागिता नहीं होगी कोई भी सरकार इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं हम कि हम पनिश करें तभी हम सब माने, हम अपनी इच्छा से भी तो मान सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कैंसर का मेन रूट कॉज प्लास्टिक है।
2: करेक्ट,
1: हम गर्म चीज़ उसमें डाल देते हैं, हम इस चीज़ में अवेयर ही नहीं है। तो पुनः सभी से आग्रह अपने स्वास्थ्य और अपने शहर के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए क्लीन सिटी ग्रीन सिटी को मन में बसा लें कि मेरा शहर जहाँ भी जाऊँ मैं हरियाली दिखाई देनी चाहिए। मेरा यही विज़न है और यही मेरा उद्देश्य है, इस पर मैं कार्य कर रही हूँ। और हमारे माननीय मंत्री जी जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री हैं, वो आपने देखा होगा जगह जगह पौधारोपण उनका चलता रहता है। माननीय CM साहब ने भी आकर कुछ किलोमीटर्स के अंदर पौधारोपण किया था लास्ट ईयर। वो ऐसा नहीं कि पौधारोपण किया और हमने छोड़ दिया, आज इस समय पेड़ बन चुके हैं। तो यहाँ पुनः सभी के शासन प्रशासन का सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो मैम, जैसे घर से कचरा निकलता है, काफ़ी लोगों को पता है कि कौन सा कचरा कैसे निपटान करना है उसका, लेकिन रेडियो के माध्यम से इस वक्त आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो घर से ही चीज़ें निकलती हैं और हमें उसको सुरक्षा के साथ में फेंकना चाहिए ताकि आगे हमारा जिस जो ग्रीन ग्रह है जिसके बारे में हम बात करें वो एक सही राह पे हो?
1: देखिए, मैंने अभी बताया कि घर से जो निकलता है, सबसे पहले तो जो मेरे यहाँ फैमिली में स्टिकनेस है, अगर कोई ग्लास टूट जाता है, कोई कांच का बर्तन टूटता है, तो उसको अच्छे से रैप करके ही डालें, 3-4 पेपर्स में अलग डालें कूड़े से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जानवर जहाँ भी कूड़ा होता है वो मुँह मारते हैं, कोई भी जानवर उससे हर्ट हो सकता है, कोई भी चलता फिरता किसी का पैर आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अलग रखें। अभी प्लास्टिक और प्लास्टिक बोटल्स, इनको स्वयं अपने घर से सेग्रीगेशन करना शुरू करते हैं, अदरवाइज जहाँ भी कूड़ा इकट्ठा जाता है वहाँ सेग्रीगेशन होता ही है। अगर हम अपनी ओर से कर देते हैं तो एक हेल्प हो जाती है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू,
2: थैंक यू,
1: थैंक्स, थैंक यू।
0: चलिए अब जानते हैं सीमा बत्रा जी के विचार, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकरी की। तो इन्होंने भी अपने विचार साझा किए और सभी लोगों को अपना संदेश दिया।
2: Myself सीमा बत्रा, working as a principal in government senior secondary school भांकड़ी, and I am very thankful to मानव रचना। ग्रीन ग्रह जो है ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि किस तरह से हमें अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, किस तरह से हमको अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। एंड फॉर ग्रीन ग्रह इनिशिएशन द ओपी भल्ला ट्रस्ट द मानव रचना सोसाइटी हैज प्रोवाइडेड अवर सोसाइटी टू ईच रेजिडेंट दे हैव प्रोवाइडेड टू डस्टबिन वन ग्रीन एंड वन ब्लू फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। This will be very helpful for the protection of our environment. And they have done lot for our school. They have motivated our student. And yesterday also, two or three students came from journalism and they motivated students for segregation of waste extra. And they also provide us copies which are best from the waste. They also provide copies not. And one thing very special they provide is a bench from a plastic. So much heavy and so much useful. I am very thankful to the OP Bhalla Trust.
0: इस अभियान में हमारे साथ में जुड़ी वैशाली OP Bhalla Foundation की तरफ से और मानव रचना के शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने मिलकर सफाई की और पौधारोपण कर समाज को ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं अब वैशाली के विचार।
3: नमस्कार, हम डॉक्टर OP Bhalla फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे हैं अंडर अवर प्रोग्राम ग्रीन ग्रह। ग्रीन ग्रह मेनली वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोग्राम है और यहाँ 21C में बहुत ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ था जो हमने हटाया है। हम कल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी आई थिंक एक दिन और लगेगा और ये सारा कूड़ा हटा के यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और लोगों को भी हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो घर में अपनी वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे और ड्राई वेस्ट को किसी ठीक से रिसाइकलर को दे देंगे तो ये कूड़े के ढेर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। थैंक यू।
0: इस अभियान में छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि एक छोटा सा प्रयास भी पर्यावरण को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है और हर व्यक्ति को पौधारोपण व स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
4: हाँ जी, मेरा नाम शांतनु बत्रा है एंड ये जो भी इनिशिएटिव हुआ है इससे हम सोसाइटी में काफ़ी बेनिफिट फील कर रहे हैं खुद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट सेग्रीगेशन से हेल्प मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं जैसे मंकीज वगैरह का बहुत रहता है, वो काफ़ी कम हो गया बिकॉज हम लोग जो वेस्ट होता है वेट वेस्ट वगैरह उसको हम लोग एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, तो ओवरऑल पोल्यूशन हाइजीन भी थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा ये बाकी जो भी आजकल पोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था पीछे, काफ़ी वेस्ट की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह में उसमें काफ़ी हेल्प मिला है। आसपास के जो कनेक्टेड स्वीपर्स हैं वगैरह उनको भी हेल्प मिल रहा है सेग्रीगेशन वगैरह से, उनको भी आके काफ़ी सपोर्ट हो रहा है, ईजिली वो जो चीज़ उनको यूज़फुल है वो मिल रही हैं। एंड यूथ के लिए मैं कहूँगा कि यार एक तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी आजकल बहुत है तो हॉन्किंग कम से कम करें। हम कई बार रोड पे निकलते हैं तो हॉन्किंग से काफ़ी नॉइस पोल्यूशन होता है, हम लोगों को आई थिंक उतना फील नहीं होता लेकिन जो एल्डरली हैं उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम सोसाइटी में फील करते हैं काफ़ी ओल्ड पीपल हैं जिनको पूरा दिन प्रॉब्लम्स हैं, ईयर्स में प्रॉब्लम है, कुछ लोग इस तरह की साउंड्स नहीं ले पाते हैं तो वो प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन है कम, उसका ध्यान रखिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज हम फील होता है कि हमारे लिए बेटर हैं, नहीं प्रॉब्लम फील करते, पर जो इस एजड लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। छोटा सा भी अगर PPM में एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर बंदे के पास अगेन एयर प्योरीफायर लेने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए हम बेटर एटमोसफेयर क्रिएट कर सकते हैं कैसे आगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, अपने स्पेशल ओकेशंस को सेलिब्रेट ऐसे करिए कि आप डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगा सकें अपने नियर बाय प्लेसेस में, जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाइजीन की, कूड़ा फैल रहा है, सब चीज़ फैल रही है, तो हमारा आधा दिन हम लोग वेट करें कि कोई मेजर हो तो उससे अच्छा हम लोग खुद मिल के एक इनिशिएटिव लें उनको क्लीन करें ताकि आगे हम एक बेटर क्लीनर एनवायरनमेंट जनरेट कर पाएँ आने वाले जनरेशन के लिए।
5: हेलो, आई एम लक्ष्य, आई एम फ्रॉम MRIIRS एंड today we are here for Green Grah March. Today we did we came with our friends approx 100 to 150 and we clean the city and we feel very happy and now we are planting many trees here So after this, I am feeling very good. And my suggestion is this, that everyone should plant their trees in their homes and in their surroundings. For example, government places, schools, etc. Thank you.
6: मेरा नाम जीविका है, मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं हम ही लोग यहाँ पे क्लीनिनेस और प्लांटेशन ड्राइव के लिए पहुँचे हैं. हमने यहाँ पे आके क्लीनिनेस के लिए बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा करा, डस्टबिन में गिरा और हमने साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स लगाए जो कि हमें ऑक्सीजन देने में हेल्प करते हैं. तो और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी इसमें मदद करें, आप भी अपना छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन इस चीज़ के लिए दें और कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और व्हीकल्स का भी कम यूज़ करें जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. अपने साइड से आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, अगर एक भी करेगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट को.
0: अब यहाँ बात होती है ग्रीन ग्रह का संदेश, जो कि बेहद ज़रूरी है और ये प्रोग्राम जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है. देखो, एक स्वच्छ शहर केवल सफाई कर्मचारियों के प्रयासों से नहीं बनता, बल्कि हर जिम्मेदार नागरिक के सहयोग से बनता है. अगर हर परिवार अपने घर से ही कचरे का सही पृथक्करण करना शुरू कर दे तो देश में जो कचरा है वो प्रबंधन की जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक बदल सकती है. याद रखिए, कचरा तब तक कचरा है जब तक उसे सही तरीके से अलग नहीं किया जाता. सही प्रबंधन के बाद वही कचरा खाद, ऊर्जा और नए उत्पादों के रूप में एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है. आइए ग्रीन ग्रह के साथ मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि हमारी पहचान बने, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है. और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि कचरे को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार भी होगा. तो आज के इस प्रोग्राम में हमने की ढेर सारी बातें. आपका कोई संदेश है या कोई बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078. आप इस नंबर पर हमें अपने संदेश भेज सकते हैं. आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और बहुत सारी बातें लेकर हम ज़रूर आएंगे प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रियंका और फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका इस बेहतरीन कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आई डोनेशन यानी नेत्रदान के बारे में। हमारे साथ हैं स्वाति कालरा जी, जो कि दिल्ली के डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल आई बैंक में आई डोनेशन काउंसलर है और इस विषय पर विशेषज्ञ है। स्वाति जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते
2: स्वाति। हम आई डोनेशन या नेत्रदान के बारे में ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में इसकी क्या सिचुएशन है। हम 90 के दशक से देखते आ रहे हैं कि इसके बारे में जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आज की स्थिति क्या है?
3: जी बिल्कुल गीतिका, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अवेयरनेस या जागरूकता होने के बावजूद भी लोगों में नेत्रदान करने के लिए एक हिचक है। और हर साल हमारे यहाँ पर करीब करीब 2 लाख लोग हैं जो कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं, और जितना हमारा नेत्रदान होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है।
2: अंकों के अनुसार स्वाति, हमने ये अपनी रिसर्च में देखा है कि भारत में करीब 70 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्निया की बीमारी के कारण जो नेत्रहीनता है उससे पीड़ित हैं, और हर साल सिर्फ 50,000 लोग ही मृत्यु के बाद नेत्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है?
3: ऐसा इसीलिए है, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि कहीं ना कहीं लोग हिचकते हैं या लोगों को ये डर लगता है कि नेत्रदान करने के बाद चेहरा जो है वो बिगड़ जाएगा, या कई बारी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नेत्रदान करेंगे तो वो अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
2: तो क्या हर तरह के नेत्रहीनता के लिए ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने से ठीक हो जाता है?
3: नहीं मैम, नेत्रहीनता के कारण कई होते हैं। नेत्रहीनता कई बारी आंख के पर्दे की खराबी की वजह से भी होती है, या आँख के अंदर जो नर्व्स जाती हैं उनकी वजह से भी होती है, लेकिन हम सिर्फ उस दृष्टिहीनता को ठीक कर सकते हैं जो कॉर्निया की खराबी के कारण हुई है। कॉर्निया की खराबी कई बारी चोट लगने की वजह से हो सकती है, या आँख में कुछ पड़ गया उस वजह से भी कॉर्निया की खराबी हो सकती है, या कई बारी हो सकता है कॉर्निया ठीक से जन्म से ही डेवलप नहीं हुआ है उस वजह से भी खराबी हो सकती है।
2: कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जब होती है तभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट का फायदा होता
3: जी,
2: है।
3: जी बिल्कुल।
2: हम जब बोलते हैं कि आप नेत्रदान कीजिए या लोग नेत्रदान का प्रण लेते हैं, तो क्या पूरी आंख को निकाल लिया जाता है? आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे?
3: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ आंख के आगे की एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है या लेयर होती है जो हम लोग निकालते हैं।
2: तो क्या नेत्रदान के बाद पता नहीं चलता है परिजनों को कि उनका नेत्रदान हुआ है या नहीं?
3: बिल्कुल भी नहीं।
2: तो शक्ल में कोई
3: कुछ शक्ल भी नहीं बिगड़ती है, चेहरा एज इट इज रहता है।
2: तो पूरे नेत्रदान का प्रोसेस क्या होता है, आप हमें ये बताइए।
3: नेत्रदान के प्रोसेस की जहाँ तक बात है, अगर किसी व्यक्ति ने जीते जी

0: नेत्रदान करने का प्रण लिया है तो उसे तो सबसे पहले उसे अपनी परिवार को इस बारे में इत्तला करके रखना चाहिए कि ये उसकी आखिरी इच्छा है और वो ये चीज़ करवाना चाहते हैं। उसके बाद मृत्यु के उपरांत परिवारजनों को आपके निकटतम आई बैंक से संपर्क करना चाहिए। 6 से 8 घंटे का समय होता है कॉर्निया को रिट्रीव करने का, जितना जल्दी संपर्क करेंगे उतना बेहतर होगा। आपका जो निकटतम आई बैंक है आपकी टीम आपके घर से आकर के भी कॉर्निया रिट्रीव कर सकती है और कॉर्निया रिट्रीवल किसी भी प्रकार की मृत्यु के उपरांत किया जा सकता है।
1: तो कॉर्निया को लेने के लिए टीम मृत व्यक्ति के घर आकर वहां से 10-15 मिनट में कॉर्निया कलेक्ट करके लेके जा सकती है। तो इस तरह जो कॉर्निया लेके जाया जाता है उसको कितने दिन तक हम सही रख सकते हैं?
0: कॉर्निया को टीम एक प्रेजर्वेटिव के अंदर लेकर के जाती है और उस प्रेजर्वेटिव में हम 14 दिनों तक कॉर्निया को सही रख सकते हैं।
1: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। स्वाति, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
0: हाँ जी कितका मैम, हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। हम जनरली 3 साल से 80 साल तक का एज बैंड लेते हैं नेत्रदान के लिए, क्योंकि 3 साल से पहले का जो कॉर्निया होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और वो बहुत नरम भी होता है, उसकी हैंडलिंग आसान नहीं होती है। और 80 साल से ऊपर कॉर्निया की क्वालिटी जो है एज के साथ साथ खराब होने शुरू हो जाती है, तो हम लोग प्रिफरेबली नहीं लेते हैं 80 ईयर्स के ऊपर का कॉर्निया।
1: और अगर किसी को डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है या कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है तो?
0: डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट या अगर किसी ने और किसी अन्य कारण की वजह से चश्मा लगा रखा है वो सब नेत्रदान कर सकते हैं। कैंसर वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया जिसे हम बोलते हैं और लिव कैंसर वाले लोग जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ कभी कभार क्या होता है गीतिका मैम कि कई लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जैसे HIV है या हेपेटाइटिस की बीमारी है किसी को, या जॉन्डिस है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, वो केसेस में भी हम लोग नेत्रदान नहीं करवाते हैं। नेत्रदान करते समय हम 10 mm का ब्लड सैंपल साथ में लेते हैं जिसका हम लोग लैब में जाकर के टेस्टिंग करते हैं, और अगर तो ब्लड सैंपल ठीक है तब तो हम फर्दर आगे कॉर्निया का प्रोसेसिंग करते हैं। अगर ब्लड सैंपल खराब है तो फिर वो कॉर्निया किसी को दृष्टि देने के काम नहीं आता है, और यही एक कारण होता है कि हम जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों का कॉर्निया नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर वो दृष्टि देने के काम नहीं आता है।
1: तो ये तो हमने चर्चा की नेत्रदान के बारे में, अब यदि कोई दृष्टिहीनता से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: ये आपका सवाल बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि कई बार ही क्या होता है दृष्टिहीनता से अगर कोई ग्रसित है तो उसकी बीमारी जो है उसका पता ही नहीं लग पाता है, क्योंकि हमारे देश में लोग इस बारे में ना तो ज़्यादा बात करना चाहते हैं और ना ही इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। दृष्टिहीनता के जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया था कई कारण होते हैं, तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम अपने निकटतम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके, या कई बारी कैंप वगैरह लगते रहते हैं तो वहाँ पर जा करके अपनी बीमारी का एग्जैक्ट पता लगवाएं कि हमारी दृष्टिहीनता का कारण क्या है, ताकि उस कारण का सही तरह से आगे इलाज हो सके। और अगर व्यक्ति कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टिहीन हुआ है तो उसकी उस खराबी को रिपेयर करके उसको उसकी आंखों की दृष्टि उसे लौटाई जा सके। तो अगर तो हमारी दृष्टिहीनता का कारण कॉर्निया की खराबी है तो हम अस्पताल में जाकर के खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए। सर्जरी जो है वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है वो बच्चों को और मिडिल एज लोगों को दी जाती है, क्योंकि उनके आगे उनका पूरा जीवन अभी बाकी है।
1: तो क्या आप हमें बता पाएंगी कुछ अनुमान कि इस सर्जरी के लिए कितना खर्चा लगता है और इतनी सफलता मिलती है इस ट्रांसप्लांट सर्जरी में?
0: अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करते हैं तो सरकारी अस्पताल में जैसे अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है, उसी प्रकार कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी मुफ्त में किया जाता है। सिर्फ जो दवाइयों का खर्च होता है वो लिया जाता है, और प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, एज कम्पेयर टू दी सरकारी।
1: स्वाति, क्योंकि आप इतने सालों से इस काम में लगी हुई हैं, तो मैं एक आपके काम से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। यदि आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा वाक्या बताना चाहें जिसमें आपको लगा हो कि ये काम करना क्यों इतना जरूरी है।
0: एक वाक्या है मेरे पास, ये बेसिकली एक 5 साल की छोटी सी लड़की की कहानी है। उस लड़की के कॉर्निया में कुछ तकलीफ थी जिसके कारण उसको दिखता नहीं था। वो जब बहुत छोटी थी तब से उसको ये प्रॉब्लम था, और वो लड़की को 5 साल तक, जैसा कि हमारे कल्चर में है कि स्पेशली विलेजेस में है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको घर के अंदर बंद करके रखना है, उस बेचारी बच्ची के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उसकी कॉर्निया की सर्जरी करी गई और उसको दिखना शुरू हुआ, और आज की डेट में वो लड़की स्कूल जाती है। तब मुझे समझ आए कि हाँ, हमारी इस छोटी सी एफर्ट से किसी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है।
1: और कभी कोई ऐसा नेत्रदान करने वाला परिवार जिन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की हो?
0: जी, एक लेडी थी जिन्होंने अपनी मदर का आई डोनेशन करवाया था, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी और उन्हें इस बात की संतुष्टि हुई कि उनका एक छोटा सा कार्य, अपनी माताजी का नेत्रदान करने का उनका ये छोटा सा कार्य जो है वो किसी की जिंदगी को खुशहाल बना गया, किसी की जिंदगी में रोशनी लेकर के आ गया।
1: तो जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहें, कोई संदेश?
0: जाने से पहले मैं अपने लिसनर्स से सिर्फ इतनी विनती करना चाहती हूँ कि वो जितना हो सके नेत्रदान के बारे में जागरूकता फैलाएं, और सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रहीन है तो कृपया करके उसको एक अलग दृष्टि से ना देखते हुए एक सामान्य दृष्टि से देखें और उसको उसी प्रकार से ट्रीट करें या उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें जो बाकी किसी इंसान के साथ करते हैं, और उसकी उस दृष्टिहीनता का पता लगाए, उसकी मदद करें कि वो अपनी इस दृष्टिहीनता से बाहर आ सके। जितना हो सके आई डोनेशन या नेत्रदान के बारे में प्लीज़ अवेयरनेस स्प्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान का प्रण लें।
1: स्वाति, हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सही जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता प्रेरित होंगे और आज ही नेत्रदान का प्रण करके अपने परिवार को इस बारे में बताएंगे। सो आज हम आप सबसे यही विदा लेते हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं, या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में अभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
2: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, लाइफ जर्नी लेकर आती हूँ लोगों की, जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। हम में से ऐसे ही बहुत कम लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना करें, कुछ ना बने या फिर अपना नाम ना बनाएं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। हर किसी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, एक बड़ा नाम हो, किसी की मदद कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें। तो बस इसीलिए आप अपनी ये होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। तो बस इसीलिए हर हफ्ते आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल जर्नी लेकर आ जाती हूँ। ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प से और अपने जज्बे से कभी हार ना मान करके उस कामयाबी को हासिल किया और लोगों को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि आपके पास ना कुछ ना होते हुए भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर ना वो मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अगर वो है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज भी लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास जर्नी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनसे पूरा देश प्यार करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। जी हाँ, आज हम इनकी जर्नी के साथ चलने वाले हैं। इनकी जर्नी से बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हम सीखने वाले हैं, इंस्पायर होने वाले हैं। बहुत सारी कहते ना कि लाइफ में अगर होप छूट जाती है तो किसी की जर्नी से, किसी की बातों से हमें होप मिल जाती है। तो शायद आज इनकी बातों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, जहाँ पर आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही प्यारे से गाने भी लेकर आई हूँ आपके लिए, वो भी सुनाऊंगी आपको। तो शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, संकल्प से और कभी हार न मानने वाले जज्बे से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज की हमारी कहानी भी है एक भारत के ऐसे सपूत की जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर ना सिर्फ देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में अपनी जगह बनाई बल्कि भारत के राष्ट्रपति बनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। दोस्तों, हर सफलता की कहानी किसी बड़े महल या फिर शानदार शुरुआत से नहीं होती है बल्कि कई बार इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनके पास सपने तो बड़े होते हैं लेकिन साधन बहुत कम होते हैं। वैसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नाम के एक छोटे से द्वीप पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक बहुत साधारण से बोट ओनर थे जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। उनकी माँ आसिमा बहुत ही दयालु और संस्कारी महिला थी। घर में कोई ऐसी ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी लेकिन ईमानदारी, मेहनत और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बचपन में ही अब्दुल कलाम ने समझ लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। इसीलिए स्कूल जाने के साथ साथ वो सुबह सुबह अखबार भी बांटा करते थे ताकि परिवार की मदद कर सके। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो दिन की शुरुआत जिम्मेदारी निभा कर कर रहा था और फिर स्कूल जाकर पूरी लगन से अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन इस कठिन परिस्थितियों ने कभी उनके सपने को छोटा नहीं होने दिया। जी हाँ, उन्हें बचपन से ही साइंस और उड़ते हुए हवाई जहाजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब भी वो आसमान की तरफ देखते थे तो उनके मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था कि आखिर इंसान इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है। शायद वही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत का महान वैज्ञानिक बनाने वाली थी। उनके टीचर्स ने भी उनकी प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया था। एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि बड़े सपने देखने का हौसला भी दिया। अब्दुल कलाम अक्सर कहा करते थे कि उनकी जिंदगी की दिशा देने में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की कहानी हमें बताती है कि आपका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, ये आपकी मंजिल तय नहीं करता बल्कि आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सपने ही आपकी पहचान बनाते हैं। यही से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पहला सक्सेस मंत्र मिलता है, जो कि है कि सपने वही नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखते हैं बल्कि असली सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, उनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं, उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा एक घंटे का ये सफर रहता है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत प्यार प्यार से गाने भी सुनते हैं, साथ ही एक मोटिवेशन लेते हैं उनकी लाइफ से कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे ने आर्थिक कमियों के बावजूद अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। अखबार बांटने से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। लेकिन दोस्तों, उनकी असली उड़ान अब शुरू होने वाली थी। जी हाँ, अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेहनती थे, खासकर साइंस और मैथमेटिक्स उनकी पसंदीदा विषय हुआ करती थी। और आजकल जैसे हम सुनते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मैथ्स और साइंस तो सच में नहीं पढ़े जाता, बहुत डिफिकल्ट लगता है, और वहीं पर ही उनका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। उनके टीचर्स अक्सर कहते थे कि कलाम सिर्फ किताब पढ़कर उनका मन शांत नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ के पीछे का कारण जानने का कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। उनके अंदर सीखने की एक अलग ही भूख थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के ST जॉपिंस कॉलेज में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट और इंजीनियरिंग की दुनिया को समझना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में, जहां पर उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, MIT में एडमिशन मिलना उनके लिए जितनी खुशी की बात थी, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी इंजीनियरिंग की फीस आसानी से भर सके। एक समय ऐसा भी आया जब फीस जमा करना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई जारी रखने की मदद की थी। ये सिर्फ परिवार का त्याग ही नहीं था, बल्कि अब्दुल कलाम के सपनों का उनके ऊपर विश्वास था। MIT में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जी हाँ, उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन प्रोजेक्ट दिया गया था। जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस धीमी थी तो उनके प्रोफेसर ने साफ कहा था कि अगर निर्धारित समय पे काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो सकती है। ये बात अब्दुल कलाम के लिए एक वेकअप कॉल जैसी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा किया और अपने प्रोफेसर का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान उन्होंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि टैलेंट तभी चमकता है जब हम उसके साथ अपना डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी देते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता है दोस्तों, उन्हें पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग, लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा की ये जर्नी हमें बताती है कि मुश्किलें रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर इरादे आपके मजबूत होना, तो हर चुनौती एक नई सीख की तरह बन जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दूसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। हर दिन की छोटी छोटी सी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बनती है। तो वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हम सबको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। कौन ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं ना, हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहता है। तो बस उसके लिए ना क्या करना होता है, आपको अपनी लाइफ में ना एक मोटिवेशन लेना ज़रूरी है। और दूसरा, उस मोटिवेशन को लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको जो अपनी लाइफ में करना है उससे पहले डिसाइड कर लीजिए और उस पर निरंतर मेहनत करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। शायद कुछ रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाते हैं पर कुछ रिजल्ट हमें लेट मिलते हैं। तो बस आपको होप नहीं छोड़नी है और उस पर निरंतर आपको काम करते रहना है। आप देखना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज आपको जो मोटिवेट करने के लिए मैं जर्नी लेकर आई हूँ, वो जर्नी है आज APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, आज उनकी जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें उनकी लाइफ से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया और डिसिप्लिन और एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन दोस्तों, डिग्री हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता या फिर मंजिल मिल जाना नहीं होता। उनका सपना था कि देश के लिए कुछ ऐसा करना जिसे भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के सामने गर्व से खड़ा हो सके। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO से की। यहाँ उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ही जुनून था। और बस इसी जुनून ने उन्हें बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO तक पहुंचाया। ISRO में डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग ही नहीं था बल्कि भारत के सपनों का प्रोजेक्ट था। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी और देश की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। साल आया 1979 जिसमें जब SLV-3 का पहला लॉन्च हुआ तो मिशन सफल नहीं हो सका। जी हाँ, रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, कई लोग निराश हो गए। डॉक्टर कलाम के लिए भी ये पल बहुत ज्यादा कठिन था। सालों की मेहनत एक पल में असफल होती नजर आ रही थी, लेकिन यहीं पर एक सच्चा लीडर सामने आता है। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, उन्होंने गलतियों का गहरा विश्लेषण किया, सीखा और दोबारा तैयारी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, सिर्फ एक साल के बाद ही 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोशनी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। इस उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बना सकता है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे कि फेलियर कभी भी अंत नहीं होता, अगर हम उसे सीख लें तो वही फेलियर हमें सफलता की तरफ ले जाता है। उनके लिए हर असफलता एक नई सीख थी, ना कि रुकने का कारण। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हम मेहनत के बाद भी देखते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिला, हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। लेकिन इस टाइम पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो निराशा में भी उम्मीद ढूंढते हैं और दोबारा उसे पूरी ताकत के साथ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है, असफलता से डरना नहीं है, उसे सीखना चाहिए, बल्कि उससे हमें सीखना चाहिए। हर फेलियर आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने का मौका देती है। तो इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। उनकी जर्नी के बारे में आज हम जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में काम करते हुए भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा दी। SLV-3 प्रोजेक्ट की सफलता ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे आपके मजबूत हो और टीम में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल काम मुमकिन बन सकता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों का सफर यही नहीं रुका। उन्होंने भारत की सुरक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसरो के बाद डॉक्टर कलाम ने फिर से DRDO में अपनी जिम्मेदारी संभाली। यहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में साल 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, किसी भी देश के लिए अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर कलाम ने भी अपनी वैज्ञानिक सोच, लीडरशिप और टीम वर्क के दम पर इस क्षेत्र में नए मुकाम को हासिल किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल का विकास किया है, जिसमें पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रमुख हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण ही डॉक्टर कलाम को पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उनकी लीडरशिप थी। वो अपनी टीम को, हर सदस्य को महत्वता देते थे और हमेशा उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करते थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि एक लीडर की असली पहचान तब होती है जब वो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और सफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। उनका ये विचार आज भी हर फील्ड में लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गया है। फिर आया साल 1998 में, जिसमें पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उपलब्धियों ने भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें बताती है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है, बल्कि उनके लिए विजन, टीम वर्क और पेशेंस और देश के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। उन्होंने कभी अपनी सफलता को सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं मानी है, बल्कि उसे देश की प्रगति का हिस्सा समझा है। तो दोस्तों, यही सोच उनकी उन्हें एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान इंसान भी बनाता है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चौथा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि बड़ी सफलता के लिए एक बड़ा विजन, लगातार मेहनत और टीम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और आप भी सक्सेस को हासिल कर सकें। और इस जर्नी में आज हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पर हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई पहचान दी और अपनी मेहनत, लीडरशिप और साइंटिफिक विजन के दम पर देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का एक और खास अध्याय भी अभी बाकी था। एक वैज्ञानिक जो हमेशा लेबोरेटरीज और रिसर्च के बीच रहे, एक दिन भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जी हाँ, साल आया 2002 जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये पल अपने आप में बहुत खास था क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध सीधे तौर पर आम लोगों, खास करके युवाओं और विद्यार्थियों से था। उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता ने उन्हें देश के हर वर्ग के लोगों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा की तरह सरल जीवन जीते रहे और अपना समय देश के भविष्य, खास करके युवाओं के साथ बिताना पसंद करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वो देश भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट से मिला करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी करते थे। उनका मानना था कि एक युवा के अंदर देश को बदलने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। वो अक्सर कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्रपति बनना सफलता के अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि देश की सेवा करने का एक और मौका था। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप स्टाइल भी बहुत अलग थी। वो हमेशा नए विचारों को बढ़ावा देते थे और लोगों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर सिर्फ कुर्सी से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से पहचाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो सम्मान और सफलता अपने आप आपके पास आ जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पांचवा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि असली लीडरशिप

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर

0: आता है सक्सेस जर्नी को आपके साथ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, जिससे आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ ही देश का, अपने आसपास की सोसाइटी में लोगों का भी भला कर सके। और आज हम जिनकी जर्नी के साथ चल रहे हैं, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक महान वैज्ञानिक से भारत के राष्ट्रपति बने, और कैसे उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और युवाओं के प्रति अपने लगाव से हर भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पहचान सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं थी, वो एक महान लेखक, एक प्रेरणादायक वक्ता और एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का सिखाया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश का असली विकास तभी संभव है जब युवाओं के पास बड़े सपने, सही सोच और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी किताबों और स्पीचेस के माध्यम से लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने संघर्ष तक, वैज्ञानिक सफर और सफलता तक पहुंचने की कहानी को बहुत ही सरल तरीके से बताया है, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सके। ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, और क्योंकि इसमें एक साधारण परिवार के बच्चे की असाधारण सफर की कहानी है। इसके अलावा उन्होंने इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें उन्होंने एक विकसित और मजबूत भारत का सपना देखा था। उनका विश्वास था कि अगर देश के युवा अपनी सोच को बड़ा रखें और अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, तो भारत दुनिया के सबसे आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की सबसे खास बात तो ये थी कि उनकी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उन्होंने खुद को हमेशा एक टीचर माना है। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी वो स्टूडेंट्स के बीच जाते रहे, लेक्चर्स देते रहे और उन्हें नए आइडियाज के लिए प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि अच्छा टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर सोचने और कुछ नया करने की चिंगारी भी जगाता है। शायद इसी वजह से स्टूडेंट्स के साथ उनका रिश्ता इतना खास था। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले, जिनमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का प्यार और युवाओं का विश्वास। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इंसान जितना ज्यादा सीखता है, उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। यहाँ से हमें उनकी जिंदगी से एक और सक्सेस मंत्र मिलता है, जो है कि जिंदगी में सीखना कभी मत रोकिए, क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें नए रास्ते दिखाती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव।

जरूरी काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र दुगना कर दे अगर तू कहना।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे। टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। और आज के इस प्रेरणादायक सफर में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी के कई पहलुओं को जाना। एक छोटे से शहर रामेश्वर में जन्मे एक साधारण बच्चे से लेकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का उनका ये सफर हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी जर्नी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, मेहनत और सीखने की और देश के प्रति समर्पण की कहानी थी। और उनकी जिंदगी से हमें ऐसे सक्सेस मंत्रास भी मिले जो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी चीजें समझाते हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ उनके बहुत सारे सक्सेस मंत्रा भी मिले जो कि हमने बात करी कि पहला सक्सेस मंत्रा था कि बड़े सपने देखिए। जी हाँ, सपने हमेशा बड़े देखिए, खुली आंखों से देखिए और इसे पूरा करने के लिए काम करिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा था शिक्षा और ज्ञान को अपनी ताकत बना लीजिए, पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा था असफलता से डरना नहीं चाहिए, चाहे फेलियर्स कितने भी क्यों ना आ जाए पर हमेशा ट्राई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा सक्सेस मंत्रा था मेहनत और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लीजिए, ये लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर किसी ने इसे ट्राई कर लिया ना तो समझ लीजिए आपकी लाइफ ना हमेशा के लिए बन गई, तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्रा है अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के लिए कीजिए। जी हाँ, हम अपने लिए तो सक्सेस होते ही है पर अपनी सक्सेस को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही खास बात होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ ये सारी चीजें जो हमने सीखी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी ली इस जर्नी में उनकी बातों से, उनकी लाइफ जर्नी से, वो हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम बड़े सपने देखें, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के सक्सेस मंत्रा में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जर्नी से विदा लेते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ स्नेहा और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शख्सियत की जर्नी के साथ, उनकी कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्रा मिलेगा। तब तक के लिए याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ, बाय।
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार ना, आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के जाती हूँ घुमाने के लिए। कभी जाते हैं हम कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी, कभी जाते हैं वेस्ट बंगाल तो कभी जाते हैं हम गुजरात। अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग कोनों में, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम भारत से बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। और आज जिस जगह आपको घूमने के लेकर के आई हूँ भाई, वो तो इंडिया की ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज आपको सदियों पुरानी मिट्टी, जहाँ इतिहास का आईना बन जाए और हर गली से जास्मीन की खुशबू आए, एक ऐसी जगह आपको लेकर के जाने वाली हूँ। तो जरा सोचिए, जास्मीन की बात हो रही है, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ? तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई संदेश है, कोई गाना है सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव, ना

राजा बनके हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो, हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र धुना कर दे मगर तू।

चिंता जूठ सन है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको बहुत खूबसूरत सी जगह लेकर के मैं आ गई हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ना हम जा रहे हैं साउथ इंडिया के ऐसे शहर में जिसे द एथेंस ऑफ द ईस्ट और या फिर थुंगा नागरम जो है यानी कि द सिटी ऑफ दैट नेवर स्लीप जिसे कहा जाता है। और यानी कि देखिए ये जो जगह है ना ये कभी सोती नहीं है। आज हमारा रास्ता ना मुड़ रहा है मदुरई की तरफ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिसका डिजाइन बिल्कुल एक खिलते हुए लोटस यानी कि कमल के फूल जैसा है, जिसके सेंटर में माता मीनाक्षी का एक विशाल एक बड़ा भव्य मंदिर है और चारों तरफ से शहर बसे हुआ है और पूरा शहर बड़ा खूबसूरत है। जब हम पहली बार वहां जाएंगे तो मदुरई की मिट्टी पर जब आप कदम रखेंगे तो हवाओं में गरम फिल्टर की कॉफी जो है फिल्टर कॉफी वही उसकी ताजा खुशबू और मदुरई के जो मल्ली यानी कि जो जास्मीन है इस फूलों की यहाँ पर आपको खुशबू भाई इतनी अच्छी आपको महका देगी बिल्कुल। आज के इस प्रोग्राम में हम मदुरई जाने वाले हैं और यहाँ की जो पुरानी जिंदा गलियों से हम भाई का जो एहसास है हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ के ग्रैंड पैलेस आपको मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, अनोखे किस्से आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मदुरई और यहाँ की बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आई हूँ। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, feel good, feel live.
1: ऐसा? हाँ? हाँ? आ आ आ आ आ ये हुई ना बात।

मंदिर के ऊंचे गोपुरम जब आकाश को छूते हैं तो लगता है आस्था ने खुद को पत्थर पर उकेर दिया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। मदुरई की पहचान, इसकी धड़कन और इसका दिल, सब कुछ एक ही जगह बसा हुआ है और वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर जो आर्किटेक्चर है ना, उसका एक ऐसा अजूबा है जिसे देख कर ना सांसें रुक जाती हैं। इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम यानी कि टावर हैं और सबसे बड़े टावर पर हजारों देवी देवताओं की, जानवरों की कलरफुल मूर्तियां इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर माता पार्वती यानी कि मीनाक्षी और भगवान शिव यानी कि सुंदरेश्वर को डेडिकेट ये मंदिर किया गया है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे सुबह सुबह इस मंदिर के अंदर एंटर जब आप करते हैं तो वहाँ की गोल्डन लोटस पॉन्ड जो है उसका पानी चमक रहा होगा। कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ जो पोएट होते थे अपनी किताबें पानी में डालते थे और जो किताब सच्ची होती थी वो पानी पर तैरते लगती थी। मंदिर के अंदर की हवा भी चंदन और जो कपूर है उसकी खुशबू वहाँ पर आती है, पवित्र खुशबू वहाँ पर आती है, आपके मन को एक अलग लेवल की यहाँ पर शांति मिलेगी जब आपको इस मतलब उस भव्य मंदिर के जो अंदर एहसास है ना उसमें रम जाएंगे आप खो जाएंगे उस टाइम पर ना, मतलब उस जगह में, उस एटमॉस्फेयर में, उस ऑरा में आप एकदम गायब हो जाएंगे। सुकून से वहीं आप बस कहीं बस खो जाएंगे, बस सुकून में ही खो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, क्योंकि मदुरई की बातें हो रही हैं, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं, एंजॉय कीजिए आप भी। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर के अंदर की मैं अब बात कर रही हूँ। पहले हम मदुरई आ जाए हैं तो वहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर के अंदर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा हॉल है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अय्यरम काल मंडपम यानी द हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। असल में यहाँ 985 पिलर्स हैं और एक पिलर पर इतनी बारीक जो देखिए नक्काशी जो है वो की गई है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर को जो देखिए मक्खन की तरह जो है काटा गया हो और इतनी खूबसूरत जो नक्काशी है वो की गई है कि क्या कहने। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, बड़ी जादुई बात है ये, बल्कि कई लोग हैरान होंगे ये जानकर जिनको अभी नहीं पता है। देखिए इसके बाहर खड़े होकर जब आप इन पत्थरों पर धीरे धीरे थपथपाते हैं तो उनमें से संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं, यानी कि सारे गामा पा धानी सा माफ कीजिएगा मेरी आवाज लेकिन जब आप खुद एक पिलर को हल्के से छूकर और आप छुएंगे और उसमें से मेटल जैसी आवाज जो है वो आएगी तो मतलब आप दंग रह जाएंगे। और ये आवाज जो है बिल्कुल एक सुर की तरह जो है वो निकलती है, इसलिए इसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ये हमारे पुरखों के ज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो बताता है कि पुराने जमाने में साइंस और आर्ट कितना गहरा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। चलिए अब मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं मदुरई के रॉयल इतिहास की तरफ, थिरुमलाई नयक्कर महल। इसे जो राजा है थिरुमलाई नायक ने 1636 में बनवाया था। जब आप इस महल के देखिए जाएंगे, आंगन में जाएंगे, वहाँ खड़े जब होंगे तो आपको सबसे पहले दिखेंगे इसके विशाल सफ़ेद खम्भे यानी कि पिलर्स। और ये खम्भे इतने बड़े और इतने ज़्यादा बड़े मतलब मोटे हैं कि चार लोग मिलकर भी एक खम्भे को नहीं पकड़ सकते हैं। इस महल का आर्किटेक्चर इटालियन और इस्लामिक स्टाइल का इससे बना हुआ है और एक परफेक्ट मिक्स है। जब आप यहाँ शाम को जाएंगे तो देखिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ लाइट्स की रोशनी में महल की दीवारें जो हैं वो बोल उठती हैं और राजा थिरुमलाई की बहादुरी और उनके ख्वाब की दास्तां सुनाई जाती है। ये महल आपको एहसास करवाता है कि मदुरई सिर्फ एक स्पिरिचुअल शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रॉयल किंगडम भी है। चलिए देखिए, एक बहुत रॉयल किंगडम की हम बात कर रहे हैं और ये रहा था मतलब बहुत ही खूबसूरत।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको बड़े खूबसूरत सी एक जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है मदुरई। जी हाँ, मदुरई की हम बात कर रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर में हर रात एक बहुत ही यूनिक और इमोशनल रिचुअल होता है, जिसे जो है वो पालियाराई सेरेमनी, द नाइट सेरेमनी जिसे कहते हैं। हर रोज रात को लगभग 9 बजे भगवान सुंदरेश्वर यानी कि शिवा की, यानी कि भगवान शिव की, भगवान देखिए यहाँ पर जो हमारे महाकाल हैं, उनकी मूर्ति को एक रंगीन पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों और आरती के साथ माता मीनाक्षी के दरबार में, यानी कि माता पार्वती के दरबार में ले जाया जाता है ताकि वो दोनों एक साथ आराम कर सकें। जब आप सामने से ये देखेंगे ना, ये दृश्य देखेंगे, तो पूरा मंदिर जो है बादाम और चंदन के जो धुआंधार रोशनी से जो है वो भरा हुआ होता है और लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर जो भजन कीर्तन है वो करते हैं। और ये जो रिचुअल है, ये जो देखिए वहाँ पर होता है, जब मदुरई के लोग जब देखते हैं तो आप मतलब जब आप वहाँ जाएंगे ना, जब आप उन लोगों से बात करेंगे, ईश्वर को सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा लोग मानते हैं वहाँ, जिन्हें हर रात प्यार से सुलाया जाता है। ये 20 मिनट आपके दिल को एक ऐसा देखिए एहसास देंगे, जो गर्माहट है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो दिखाएंगे और आप कभी वो भूल नहीं पाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगा वो आपको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। जायका वहाँ का बेहतरीन होता है जहाँ खाने के हर एक बाइट में शहर का जश्न खुला हो। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो देखिए, मदुरई को फूड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ का खाना एकदम लाजवाब है। अगर आप यहाँ हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ का आइकॉनिक ड्रिंक जिगर ठंडा। इसका नाम सुनकर ही मतलब ऐसा लगता है जैसे जिगर को ठंडक ये पहुंचा दे। ये जो दूध आलमंड यानी कि बादाम और गोंद यानी कि बादाम गोंद से जो है वो तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है सरसा पारिल्ला जो सिरप है वो डाला जाता है, और एकदम रिच आइसक्रीम से ये बनती है। एक सब में आपको जन्नत का एहसास हो जाएगा। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो मदुरई का जो करी डोसा है, करी डोसा ही है, यहाँ पर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये एक मोटा डोसा होता है जिसके ऊपर मसालेदार चॉप किया हुआ मटन जो है और अंडा एग जो है इसकी लेयरिंग होती है। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा, और क्रंची और तीखा स्वाद जुबान पर आपको रह जाएगा। और यहाँ हर स्वाद में ना मज़ा है। यहाँ का खाना थोड़ा मसालेदार ज़रूर है लेकिन आपको काफ़ी कमाल लगेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और विशाल टेंपल टैंक यानी कि तालाब है जिसे कहते हैं वांदियोर मारियम्मन तेप्पाकुलम, और ये पूरे तमिलनाडु का सबसे बड़ा टेंपल टैंक यानी कि जो पॉन्ड है इसे माना जाता है। और ये इतना बड़ा है कि इसके बीच में एक छोटा जो है छोटे से हरा भरा जो आइसलैंड है जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थित है। कहते हैं कि जब थिरुमलाई जो राजा है यहाँ के, जब जो महल है जिसने बनाने के लिए यहाँ की मिट्टी जो है वो खोदी जा रही थी, तो ज़मीन के नीचे से भगवान गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति निकली थी और बाद में उस खाली जगह को इस विशाल तालाब में बदल दिया गया। और जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ जो फ्लोट फेस्टिवल है ये होता है जहाँ उस जगह पर उस जो आइलैंड एक बना हुआ है तो इस पे मंदिर को लाखों दियों से सजाया जाता है और माता मीनाक्षी यानी कि माता पार्वती की जो एक बोट निकाली जाती है शाम को इस तालाब के किनारे, जो अगर आप बैठते हैं तो ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं और सुकून आपको यहाँ मिल जाएगा। मदुरई एक ऐसी जगह स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको हर जगह मंदिर जो है वो आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपको जो नेचर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसे महसूस कर पाएंगे, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। अच्छा एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, जो मदुरई है ना इसको जैस्मिन कैपिटल भी जो है वो कहा जाता है। फूलों की महक जब शहर की हवाओं में और घुल जाए ना तो हर रास्ता एक नया ख्वाब लगने लगता है और हर रास्ता आपको ख्वाब ही लगने लगेगा जब आप मदुरई आएंगे। चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज लेकर के आई हूँ आपको मदुरई। मदुरई की एक और बहुत बड़ी पहचान है वहाँ के जास्मीन यानी कि मोंगरे के फूल, जिसे लोकल लैंग्वेज में मदुरई मल्ली कहते हैं। और यहाँ के जास्मीन के फूल यानी कि जो मोंगरे के जो फूलों की खुशबू है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी यूनिक है कि इसे GI टैग यानी कि ग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिला हुआ है। जब आप मदुरई के फ्लावर मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरफ सफ़ेद फूलों के ढेर दिखाई देंगे और हवाओं में एकदम महक जो है ये रहती है वहाँ के फूलों की, यानी कि जो फूल हैं वहाँ पर मोंगरे के उसकी आपको खुशबू जो है ये आपको उसका महसूस आपको हो जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने बालों में ये गजरा बहुत ही प्यार से लगाती हैं और जब आप यहाँ जाएंगे, और मैंने सुना है कि मदुरई मल्ली की खुशबू इतनी फेमस है कि ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स यहाँ से फूल एक्सपोर्ट कराते हैं और इस मार्केट से गुजरने पर आपको समझ आ जाएगा कि मदुरई सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि खुशबू का भी शहर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। मदुरई आज हम घूमने के लिए आए हैं। मदुरई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक साइट जो है यहाँ पर है, जो हमारे देश के इतिहास में भी है, द गांधी मेमोरियल म्यूजियम। पूरी इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 गांधी म्यूजियम है और मदुरई का ये एक जो म्यूजियम है उनमें से ये एक है। पता देखिए, मैं आपको इसलिए बता दूं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1921 में मदुरई में ही महात्मा गांधी ने पहली बार देखा कि हमारे देश के गरीब जो हैं किसान कपड़ों के बिना रह रहे हैं, और उन्होंने वहीं फैसला किया कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे की देखिए जो खादी धोती है, छोटी सी खादी धोती जो है वो पहन कर गुजारेंगे। और इस म्यूज़ियम के अंदर वो ऐतिहासिक कपड़ा यानी कि ब्लड स्टेन क्लॉथ रखा हुआ है जो बापू ने अपनी आखिरी वक्त में पहना हुआ था। जब आप इस म्यूजियम के हॉल में घूमते हैं और आज़ादी के उन पुरानी फोटोज और लेटर्स को आप जब देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में देशभक्ति जो है वो भाई आ जाएगी और गुरूर होगा आपको उस देशभक्ति पर। आपको एहसास होगा कि हमारे देश ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत कुछ है, और साथ ही यहाँ पर आपको मदुरई की मैं बात आपसे कर रही हूँ। मदुरई की बात करें तो मदुरई को लोकल बड़े प्यार से कहते हैं ठुंगा नागरम, और इसका मतलब होता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पूरे तमिलनाडु में ये एकमात्र शहर है जहाँ रात के 2 बजे भी आपको मार्केट्स खुले मिलेंगे, सड़कों पर चहल पहल होगी और गर्म इडली या फिल्टर कॉफ़ी आपको मिल रही होगी। जब आप यहाँ रात को जाएंगे तो 1 बजे के करीब भी आपको यहाँ पर लोग आसपास खूब चलते हुए मिल जाएंगे, आसपास बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे, लोग दुकानों पर खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, ऑटो चल रहे होंगे, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो है वो चल रहे होंगे और वहाँ पर बन रहा होगा परौठा। मदुरई के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और उनकी लाइफ में एक अलग ही जोश होता है, और ये शहर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में भी थकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए जैसे ये शहर चलता रहता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारी बातें लेकर के आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। इसी के साथ वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए इतनी खूबसूरत ये जगह है, तो आप इस जगह पर ना सिर्फ घूमने मत आइए, यहाँ से आप जो है कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइएगा, शॉपिंग जरूर कीजिएगा। शॉपिंग तो बनती है। मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है पुट्ठू मंडपम। ये एक सदियों पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे राजा तिरुमलई नायक ने बनवाया।

आया था। इस मार्केट के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपको दोनों तरफ लाइन से टेलर्स बैठे दिखाई देंगे जो कपड़े सिलते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है मदुरई संगुड़ी साड़ी, और ये एक खास तरह की टाई और टाई एंड डाई जो कॉटन की साड़ी होती है जो बहुत ही लाइट वेट और कलरफुल होती है। और साथ ही यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के आपको जो ब्रास हैं यानी कि जो पीतल का काम जो है उसके दिए मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जब आप यहाँ जाएंगे तो एक कोई भी चीज़ आप ज़रूर लेकर के आएगा तो एक यादगार चीज़ जो है वो रह जाती है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूँगी जिसके बाद होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और इस सफरनामा में आज हमने करी बहुत सारी बातें. आज हम आए मदुरई और मदुरई की बहुत सारी जगहों में हमने घूमा है और एक बहुत ही सुखमय, शांति, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है. मतलब शब्द कम पड़ जाए तो भी अच्छी जगह है ये, सुकून आपको मिल जाएगा यहाँ पर. तो आप भी मदुरई जरूर जाएगा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. मुलाकात आपसे होती रहेंगी, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहाँ मैं आप लोगों के पास रहती हूँ 1 बजे से 3 बजे तक जी हाँ और ये वक्त होता है जहाँ हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा, आप च्युइंगम अपने पास में रखें, और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए, उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें. यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ही समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मज़बूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूँ बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूँ. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ना ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना तो उसका चेहरा ही बता देता है कि ये अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए और हाँ मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूं जिससे आपको फायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद में डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं। तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना। अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है, क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप, मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है। अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना, और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो। हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। जी हाँ, है ना कितना इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा। तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ये नंबर हमारा है 8010781078। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो खिलाफ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्राग का और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्राग का और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया क्या करें?
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनके ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरूह इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों, हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे, बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों, बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?
1: तुहे प्यार दूं गोरे भैया।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 FM पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी करा और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत्तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है, टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों, बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो इनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम

0: धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा। और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे। और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की, और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील लाइव।
1: क्या कहा?

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं लेकर के आ चुका हूँ प्रोग्राम सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत, रेडियो मानव रचना 107.8 का एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है ये, जहाँ पर आपको लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, अपने अधिकारों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, जो चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन हमें फिर भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। इसे गैप को दूर करने के लिए ये वाला प्रोग्राम हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आते हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर छवि। डॉक्टर छवि इज एन एसोसिएट प्रोफेसर विद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट मानव रचना यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ये वैसे बात नहीं होने वाली है कि आपको कैसे बात करनी चाहिए पब्लिक में। हम सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि कानून के हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई बयान दे रहे हो या किसी इंसान से आप कोई बात कर रहे हो, कोई अपनी बात कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई लूप होल है वहां पर? क्या वहां पर गलती की गुंजाइश होती है और गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कैसे उनको सुधारा जाए? आज के इस एपिसोड से आपको ये तमाम चीजें क्लियर होने वाली है। तो इत्मीनान से बैठिए, अपने शो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन स्वागत करेंगे डॉक्टर छवि का। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
4: हाय सागर, थैंक यू वेरी मच, इट इज रियली अ प्लेजर टू बी हियर।
3: थैंक यू सो मच मैम, मतलब मुझे हमेशा जब मैं ये शो करता हूँ तो बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, और वैसे मेरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स भी उतना ही एंजॉय करते होंगे, उतना ही सीख पाते होंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अलग नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी का। स्पेशली अगर मैंने कोई टिप्पणी कर दी और मैंने अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए?
4: सागर, आज के समय में सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन एक तरह से हम कहेंगे कि एक इंडिस्पेंसिबल एस्पेक्ट हो गया है, और ये हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। ये हमें अपने आसपास के लोगों से भी जोड़ के रखता है, और कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे के साथ ही चल पाते हैं। तो हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम बहुत बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है, ये हमें अधिकार देती है कि हम सेंसिटिव तरीके से और किसी के इमोशंस को हर्ट ना करते हुए, अपने अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ ना करते हुए, कम्युनिकेशन को कैसे एम्पैथेटिक तरीके से सामने वाले के आगे हम रखते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लाइक योर कमेंट्स, योर थिंग्स दैट यू स्पीक ऑन सोशल मीडिया।
3: बहुत सुंदर। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि लोगों के शब्दों में आपको नफरत नजर आएगी या फिर आपको कड़वाहट नजर आएगी, या अपशब्दों का चयन किया जाता है, ठीक है, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, खुलेआम होता है, और ये हम सब ने इस तरह की वीडियोस देखी हुई हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं डोमेन में, कानून क्या कहता है इसको लेकर के? क्या कानून में कोई प्रावधान है कि अगर किसी ने मानकर चलिए गाली दे दी और मुझे वो बात बुरी लगी लेकिन मेरे लिए नहीं बोली गई है, क्या मैं उसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ कानून के सामने?
4: हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं उसको पॉइंट आउट। और अगर देखा जाए तो लॉ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इस तरह के, बट सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिकली आपको साइबर जो हमारे सेल्स बने हुए हैं उनके पास रिपोर्ट करना होता है इन सारी चीज़ों के लिए। फिर वो आगे के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ से आपको क्लियर होते हैं। एक वैसे भी साइकोलॉजी में कहा जाता है ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट, तो आपको लगता है आप तो स्क्रीन के इस तरफ हैं, सामने वाला आपको डायरेक्टली नहीं देख पा रहा, तो आप अपने शब्दों का चयन जो है वो उस तरह से नहीं करते, और जो आपके मन में होता है बिना सोचे समझे आप उस फाउल लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो स्क्रीन, आप वैसे ही शब्दों का चयन करें जो आप अपने लिए सुनना पसंद करते हो।
3: बहुत सुंदर। ये मुझे लगता है कि सिंपल सा सिद्धांत है, लेकिन ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि यार आपको उस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए जो आप सुन सकें, जो अपने घर में आप बोल सकें, वही सब चीज़ें आप उसको एक घर की तरह मानिए कि आप बाकी लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हो, वहां पर भी लोग ही रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लोग सोशल मीडिया पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं?
4: सिमिलरली जैसे अभी मैंने अभी बोला कि वो एक डिसइनहिबिशन वाला जो इफ़ेक्ट होता है, लोगों को शायद ऐसा लगता है कि एक हीट ऑफ मोमेंट या इंस्टेंटली देयर इज़ नो वन वॉचिंग यू, आपको कोई नहीं देख रहा एंड यू कैन राइट और स्पीक एनीथिंग व्हाट यू लाइक, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके मन में उस तरफ एक ऐसा कोई शब्द आता है, आपको बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, यू आर इन रेज, तो आप उस तरह का कमेंट लिख देते हैं। उस टाइम आप ये भूल जाते हैं कि शायद जो व्यक्ति स्क्रीन के उस तरफ है वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है और उसको आपके कमेंट्स या लैंग्वेज से उतना ही हर्ट होगा जितना कि शायद आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखते हैं। तो जो चीज़ हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखते हैं, हम अपना कर्टसी, पोलाइटनेस, काइंड, तो सेम मैं ये आग्रह करूंगी सभी से कि जब आप कुछ सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो आप उतने ही कर्टियस, पोलाइट, एम्पैथेटिक रहें।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे इस संवाद को हम लेकर के चलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया के डोमेन में कैसे बात करनी होती है, कैसे अपनी बात रखी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सही में आपको ये अलाउ करता है कि किसी भी तरीके के शब्दों का आप चयन कर सकते हो, ये आगे डिस्कस हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।
5: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
6: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
5: हाँ गुरुदेव।

काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहा है सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ डॉक्टर छवि। कम्युनिकेशन स्किल हमारा आज का टॉपिक है, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको कैसे बात करनी है अपने दोस्त से, बल्कि इस तरीके से कि कैसे आपको इस तरीके से बात करनी है कि कानून का शिकंजा आप तक ना पहुंचे। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, थोड़ा सा मुझे अंतर समझाइए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू अब्यूज समवन में।
1: बहुत से लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो हमारे विचार और जो हमारी नीतियाँ हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, उनसे डिसअग्री भी कर सकते हैं, पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं निकलता कि हम इंसल्ट करें किसी को भी, या किसी को थ्रेटन करें, या किसी पर डिफेमेशन का किसी भी तरह का, या नफ़रत फैलाने का जो है उस तरह का कोई अधिकार आपको मिल गया है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इसीलिए फ्रीडम टू अब्यूज़ के साथ कई बार, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है हमें, वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ वर्ड, एनी टाइप ऑफ अ लैंग्वेज दैट वी विश टू यूज़। तो बिल्कुल इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और डेमोक्रेसी है हमारी, असहमति हो सकती है, पर असभ्य भाषा का उपयोग ना करा जाए।
0: क्या किसी के अभद्र शब्दों से या अपमानजनक भाषा से किसी की मानसिक हालत के ऊपर प्रभाव पड़ता है? मानसिक जो हमारी हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका?
1: बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर हम एग्जांपल लें, अभी कोई एक बच्ची है, उसने 99% अचीव किए हैं और उसने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाला है। वो पोस्ट उसने लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है और उसको कोई भी देख सकता है, उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। अगर वो कमेंट्स उसके अचीवमेंट्स को ना लेके उसको लाइक वो कैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस है या उसका कलर कैसा है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसका मेंटल हेल्थ ज़रूर डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे यू डोंट लुक वेल, इस तरह का कोई कमेंट आ गया, तो सच में वो जो केस है, जो लड़की है, उसके साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ सच में डिटेरियोरेट हो सकती है, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। और आपकी जो भाषा है, जो कहते नहीं है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। वर्ड्स आर जस्ट लाइक अ सॉर्ड, वो किसी को भी घायल कर सकते हैं। तो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और मेंटल हेल्थ का एक ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतने लाइक्स नहीं हैं तो एंग्जाइटी में चले जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर तो लैंग्वेज तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह की भाषा का आपको उपयोग करना है।
0: अगर कोई मैंने गलत रील डाल दी जिसमें मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उसको लोगों ने पॉइंट आउट किया और बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्या ये सच में प्रॉब्लम फिक्स हो गई है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कई सारी पोस्ट या रील में देखते और पढ़ते भी होंगे कि एक बार जो चीज़ इंटरनेट पर चली जाती है वो किसी भी तरह से डिलीट नहीं हो सकती, मतलब परमानेंटली तो वो रिमूव हो ही नहीं सकती। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिट्रीव करे जा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने मोबाइल में डिलीट कर दिया है किसी को कुछ भी अब्यूज़ करके और वो सब ख़त्म हो गया है? नहीं, हो सकता है उस व्यक्ति ने उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया हो, रिपोर्ट कर दिया हो आपका एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी आप अपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर एनी पर्पस।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग। किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं हमारे देश में?
1: कहने को तो बहुत सारे लाइक पोस्ट्स हैं अदर देन कर्टियस। तो एक मिसकंसेप्शन ये भी आ जाता है कि आप कुछ भी पोस्ट करेंगे आपको कोई लॉ का शिकंजा नहीं कर सकता, बस ऐसा नहीं है, लीगल एक्शन होगा। और सबसे पहले तो डिफेमेटरी जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी आप पर आरोप लगाया जा सकता है। अगर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, इवन ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और एनी काइंड, अगर आपने धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष कुछ हेटरेड सॉर्ट ऑफ स्पीच दी, उस बारे में भी आप पर हो सकता है लीगल एक्शन। साइबर बुलिंग अगर आप कर रहे हैं उस पर भी आपको एक्शन हो सकता है। किसी की आप पर्सनल चीज़ों को बाहर ला रहे हैं उस पर भी हो सकता है, विदाउट हिज और हर कंसेंट, अगर पर्सनल चीज़ें आप बाहर ला रहे हैं, प्राइवेट चीज़ें, तो उस पर भी हो सकता है। और फॉल्स र्यूमर्स को अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उस पर भी हो जाएगा। फेक न्यूज़, इम्पर्सनेशन, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिन पर आप पर लीगल एक्शन हो सकता है।
0: ओके, क्या ह्यूमर भी हार्मफुल हो सकता है?
1: देखिए, ह्यूमर को कई बार हम बहुत अच्छी भाषा में सटायर से भी कई बार मिसकॉन्सेप्शन में चला जाता है। जैसे मजाक अगर एंटरटेनमेंट के लिए है, ह्यूमर इफ़ इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, किसी को हंसा सकता है वहाँ तक तो ठीक है, पर अगर आप किसी को हैरिस करने के लिए, उसके फिजिकल अपीयरेंस को बुली करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को, उसकी कास्ट को, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, इन सब को अगर आप डिसरिस्पेक्ट तरीके से अगर आप बोलते हैं, तो वो वाला ह्यूमर जो है दैट इज़ नॉट गुड। तो उस पर अच्छा ह्यूमर, विटी, इज़ अलग चीज़ जो सबको हंसाता है, और जो ह्यूमर किसी को रुला सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी के मन में किसी भी तरह का इमोशन हर्ट ना हो तो ह्यूमर इस तरह का होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिलहाल वक्त एक और ठहराव का, यहाँ पर एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ आप लोग बने हुए रेडियो मानवप्रश्न 107.8 पर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर छवि। आइए आगे शो में बात करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: और उसकी वजह से हमारे पास कई बार डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट्स सामने वाले से हो सकते हैं, बट अगेन हमें जैसे अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा. हमारे पास मतभेद हो सकते हैं, मतलब हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं सामने वाले से, उसके विचारों से, पर उस व्यक्ति विशेष से आप नहीं डिसएग्री हो सकते हो. तो मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए. तो आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस में जो आपकी भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा मतभेद ठीक है, लाइक आप उनके विचारों से सहमत नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी, अगर वो प्रेजुडिस्ड हैं आप उन सब पर टिप्पणी कर सकते हैं, बट वो कैसे व्यक्ति हैं, वो फुलिश हैं या किस तरह के, वो नहीं करनी चाहिए. तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी डिसएग्रीमेंट में आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर.
1: अभी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मैंने जाकर के देखा वहाँ पर पर्सनली, मोटिव अच्छा था, कॉज अच्छा था, अच्छा लगा देश के नौजवान उठ के सामने आए, आवाज़ उठाई. ठीक है, आप इस पार्टी में विश्वास रख सकते हैं, आप उस आइडियोलॉजी में विश्वास रख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी कि लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, संविधान आपको ये अधिकार देता है. ठीक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जाकर के मैंने पर्सनली जो चीज़ नोटिस करी वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. वहाँ पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करी जा रही थी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दी जाना या किसी और व्यक्ति को, किसी समुदाय को गालियां दिए जाना, क्या ये किसी भी प्रोटेस्ट में ओके है, एक्सेप्टेबल है?
0: फिर से हम लोग उसी बात पर आते हैं कि हमारी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा कर्टियस और सम्मानजनक होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को, अगर हम 5 साल बाद भी सेम उस भाषा को अगर हम सुनते हैं, लाइक हम अपना कमेंट पढ़ते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए. तो वो जो भाषा जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं या जिसने भी करी और जिसके लिए भी करी, कोई भी व्यक्ति विशेष है या पार्टीज़ हैं, उन भाषा का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. अब्यूज़िव लैंग्वेज, गालियाँ देना, किसी पर पर्सनल अटैक्स करना, ये सब तो कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आजकल कहा जाता है, उसका तो बिल्कुल भी ये हिस्सा है ही नहीं. और ऐसा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ आपको खुद के लिए सुनना पसंद है आप वही बोलें वही लिखें. तो जो इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं वो एक बार पहले देख लें कि क्या वो अपने घर में टेबल के अदर साइड अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड से, क्या वो इस तरह की भाषा सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, तभी वो इसको आगे लेके जाएं. और नहीं तो भाषा हमेशा बहुत ही पोलाइट, काइंड और कर्टियस होनी चाहिए. मतलब डिसएग्री करती हूँ मैं इस चीज़ से कि कोई भी भाषा आप इस्तेमाल कर सकते हो.
1: बिल्कुल. क्या सोशल मीडिया का कोई पोस्ट किसी के करियर को प्रभावित कर सकता है?
0: क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है. और इसीलिए कर सकता है क्योंकि आजकल तो सारा कुछ सोशल मीडिया पर है. अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो यूजुअली आपका सोशल प्रोफाइल देखा जाता है, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म पर हो, और आपका ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपकी डिजिटल रेप्यूटेशन बताता है कि आपकी पोस्ट्स कैसी हैं, आप कि लाइक्स किस चीज़ पर है, आपके कमेंट्स किस तरह के हैं. तो आपका जो फुटप्रिंट है डिजिटल वाला वो आपकी रेप्यूटेशन बिल्ड करता है. तो जब आप करियर के लिए, प्रोस्पेक्ट्स के लिए जाते हैं तो यस, दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द अदर पार्टी, लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू शॉर्ट लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल फुटप्रिंट.
1: बहुत अंदर. तो भैया आपके करियर के ऊपर भी सवाल उठ सकता है अगर आप थोड़े माइंडफुल नहीं हुए, अगर आपने ऐसे ही रैंडम कोई चीज़ डाल दी, सोच समझ कर डालिएगा. मैं आपसे पूछना चाहूँगा 5 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जो जिम्मेदार हैं कम्युनिकेशन के ऑन सोशल मीडिया. व्हाट आर द 5 गोल्डन रूल्स?
0: ऑलराइट, अब ऐसे गोल्डन रूल्स तो बहुत सारे, मतलब 5 हम लोग कहते हैं, पर जैसे सबसे पहला जो मैं कहूँगी वो थिंक बिफोर पोस्टिंग. तो पोस्ट करने से पहले ज़रूर एक बार सोचें, और अगर आप कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वेरीफाई बिफोर फॉरवर्डिंग. तो हमेशा देख लें कि आप र्यूमर, गॉसिप, ये सब तो नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं. और रिस्पेक्ट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, जब भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये देख के चलें कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पोलाइट हैं या नहीं. और रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचें, ज़रूर पॉज ज़रूर लें. इंस्टेंट रिएक्शन इज ऑलवेज डेंजरस. एंड एम्पथाइज बिफोर कमेंटिंग, सेम, पुट योर सेल्फ इन अदर्स

0: choose before commenting anything. So these things are to be kept in mind while you are posting anything on social media.
1: बहुत सुंदर. मेरे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं. कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हैं श्रोताओं से, तो प्लीज फील फ्री मैम.
0: देखिए आज का जो टाइम है, थैंक यू सागर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग इन द कंक्लूडिंग पार्ट. तो जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, बट उसके साथ में हमारी विजडम, सेंसिटिविटी साथ में जुड़ी होनी चाहिए. क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक थिंक फॉर्मूला अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. हमें हमेशा सच के साथ ही रहना है, लाइक सच ही बोलना है सोशल मीडिया पर भी. हेल्पफुल रहना है, इंस्पायर करते जाना है, और जो ज़रूरी है उसी को हम फॉरवर्ड करें या सोशल मीडिया के पोस्ट को लाइक करें. और काइंड लैंग्वेज वी हैव टू यूज़. तो अगर हमारी पोस्ट और हम लोग इस तरह इन सारी चीज़ों पर अगर हम बढ़िया निकल जाते हैं, तो शायद हमें लीगल फ्रेमवर्क से दूर ही रहना पड़ेगा.
1: बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच मैम यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू अस.
0: थैंक यू. एंड एज आई सेड, इट्स ऑलवेज आई चेरिश कमिंग हियर एंड जस्ट कीप इनवाइटिंग अस.
1: थैंक यू सो मच मैम. इट्स एन ऑनर टू ऑलवेज हैव यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस. एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज आपको एक और टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है. रीजन बीइंग कि ये शो बहुत खास इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर डॉक्टर छवि हमारे साथ है, तो ये वो लोग हैं जो भविष्य तैयार करते हैं देश का. दीज आर प्रोफेसर्स जिन्होंने खुद वकालत की पढ़ाई की हुई है पहले, उसके बाद अब बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो आगे जा करके अच्छे वकील बन सकें, अच्छे जजेस बन सकें, या और किसी डोमेन में उन्हें जाना, तो एटलीस्ट एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें. ये एक जिम्मेदारी है जो उनके कंधों पर होती है, इसलिए ये शो हमेशा बहुत खास होता है. अगर आप इस शो को पसंद करते हैं तो हमें बताइए ज़रा 8010078107 पर. फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहाँ पर पार्क करने का, एक हॉल्ट देने का. फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग ले एक वादा। अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूं। सशक्त महिलाओं से मिलवाने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनाती हूं जिन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग चुना है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नुपुर माथुर। डॉक्टर नुपुर माथुर एक MBBS डॉक्टर हैं और सेवा की राह पर इस तरीके से चल रही हैं कि क्या कहने। ना सिर्फ ये जो गरीब लोग होते हैं या हमें कहना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनके लिए सलाह लेकर जाती हैं, एडवाइस लेकर जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस लेकर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें सेहत का एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा देने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: हाँ, नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा विशेष है नहीं मुझ में जितना आपने बताया है, बट स्टिल आई थिंक।
0: तो डॉक्टर नुपुर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं?
1: हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण शायद हर व्यक्ति सोच में एक अलग अर्थ रखता है, और जैसा कि हम सोचते हैं, एक आम आदमी ये सोचता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से रिलेटेड है या महिला काम कर रही है या नौकरी कर रही है उससे रिलेटेड है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। सशक्तिकरण से अगर आप वैसे अर्थ ले तो महिला शक्ति, देखिए शक्ति तो महिला में होती है, नारी शक्ति का हमारे में तो हमेशा से रहा है, तो उस शक्ति को थोड़ा सा एक सही अर्थ देने को शायद सशक्तिकरण कहा जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह पर स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, तो सशक्तिकरण इस माध्यम से हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्वयं की जो भावना है जो नारी में होनी चाहिए, उस भावना को लेकर कुछ भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए जो भी कार्य वो करना चाहे उसको हम नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं।
0: हालांकि
1: हाँ, एक बड़े तौर पर देखा जाए अगर किसी देश के लिए या विश्व के लिए तो यही देखा जा सकता है कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छा कमा सकती हैं। पर अगर इंडिविजुअल अप्रोच देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही रिलेट किया जाना चाहिए।
0: वाकई बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नुपुर आपने। और मैं ये कहती हूँ महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए वो आजादी है जिससे वो अपना जीवन जी सकती हैं, क्योंकि परेशानी है कि महिलाएं अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबे समय तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। दोस्तों, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर से। डॉक्टर नुपुर की वैसे तो पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस में ये इतनी सारी महिलाओं की मदद करती हैं कि क्या कहने। भाई मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि महिलाएं जो है ना वो अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं, और जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ना वो बाहर डॉक्टर के पास तो जाती ही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर हैं, आई एम श्योर इस बात से तो वो बिल्कुल अग्री करती हैं। डॉक्टर नुपुर मुझे बताइए ना कि आज के टाइम की महिलाओं का क्या खास चैलेंज है।
1: हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाएं नहीं आती हैं आसानी से डॉक्टर्स के पास। इसका एक कारण जो ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इवन जो लोअर क्लास है उसमें इतनी विजिलेंस नहीं है। लगता है कि एक छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो है कि पैसों की कमी होती है। जो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए और जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उसमें पैसों की काफ़ी कमी होती है। तो हमेशा महिलाओं का पहला प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, उनको पहले आगे रखें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इसका इलाज करा दें। फिर एजुकेशन है जिसमें आजकल काफ़ी पैसा चला जाता है, तो उसमें वो अपना योगदान दे देती हैं और उनकी बीमारी थोड़ा पीछे रह जाती है। और एक दूसरा कारण यह है कि कुछ हद तक औरतें अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाती हैं सबसे, ख़ास तौर से जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ उनके पति का कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता है और इस तरह से वो पीछे रह जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों मैं तो महिलाओं से हमेशा से ये बात कहती हूँ, इतनी सारी महिलाएं फिलहाल मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी, जीवन तो आपका है और इस जीवन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है। तो अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना पाएंगी। जरूरी है कि अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। जहां पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वहां अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करें। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जब मैं ये कहती हूँ ना सशक्तिकरण, तो ऐसा लगता है महिलाओं में बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये दरअसल चैनलाइज कहीं और जगह हो रही है। मानी वो शक्ति है तो वो पूरे परिवार को पालने के लिए शक्ति है, शक्ति है तो बहुत सारे दर्द को एंड्योर करने की शक्ति है, शक्ति है तो अच्छे डिसीजन लेने की शक्ति है, लेकिन उसे सही जगह इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं को ये मौके मिलने चाहिए। आज हम डॉक्टर नुपुर से बात करें। डॉक्टर नुपुर माथुर अगर देखा जाए तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन दिल में इनके बिल्कुल मदर टेरेसा की जैसे ही बहुत सारा प्यार है। इतने सारे लोगों की ये मदद करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में तो बहुत कम है। डॉक्टर नुपुर, अब मैं ना आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। क्या आपके समय में डॉक्टर बनना आसान था? और अगर मैं आज तक की आपकी पूरी जर्नी देखूं, तो कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जिसको आप आज जीवन के इस पड़ाव पर बैठकर ये कहें कि यस, मैंने ये एम्पावरमेंट भरा डिसीजन लिया?
1: थोड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। खैर, जर्नी मेरी कुछ बहुत कठिन नहीं रही, क्योंकि एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षा वर्ग से थे और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम जहाँ रहते थे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैंपस था, तो चारों तरफ देखा जाए तो शिक्षा ही शिक्षा थी। फादर भी मेरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, मदर लेक्चरर थी, तो ये हमेशा देखते चले आए कि हमसे सीनियर, हमारे से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो या तो उस टाइम पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये दो ही चार थोड़ी अच्छी वाली शिक्षाएं कही जा सकती थी। तो थोड़ा सा प्रयत्न करा, कुछ बहुत विशेष नहीं, पर हाँ उस टाइम PMT एग्ज़ाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट करके, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद हाँ यह ज़रूर था कि शादी हमेशा माँ बाप सोचते थे कि एक सही समय पर हो जाए, तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर शादी के बाद यहाँ दिल्ली आई और उसके बाद लगा कि पिछड़े वर्ग को और भी समाज को ऐसा लगा कि एक MBBS डॉक्टर की अपनी अलग पहचान है, तो फिर मैंने वही परस्यू कर लिया।

0: और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक था तो मैं उसके साथ ही जुड़ गई और फिर बस तब से शायद चली रही है गाड़ी।
1: वाओ, बट भाई देखिए ये एक बहुत एम्पावरिंग सी जर्नी है क्योंकि ये जो डिसीजन है ना ये बहुत सारी महिलाएं नहीं ले पाती हैं और आपने ये डिसीजन लिया। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आज आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज जब आप उनके इलाज करती हैं, आज जब आप उनके पास जाती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जीवन को टच कर रही हैं और उनके जीवन को बदलकर उनके जीवन को और भी खुशमय बना रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। ढेर सारे लोगों से हम बात करते हैं, जब डॉक्टर्स की बारी आती है ना, तो मन में हमेशा ये फीलिंग होती है कि ये वो लोग हैं जो हमें दर्द से बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर में हम भगवान का रूप तो देखते ही हैं, और आज हम बिल्कुल कहना चाहिए कि भगवान स्वरूप डॉक्टर नुपुर माथुर से बात कर रहे हैं। ये जिस तरीके का काम कर रही है ना, दरअसल मानवता की सच्ची सेवा है। आज भी ऐसे जमाने में जहाँ पर कि आपको डॉक्टरी सलाह फ्री में नहीं मिलती है या बहुत कम कॉस्ट में नहीं मिलती है, ये आज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। और इनफैक्ट मेरे इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये वहीं जाने वाली हैं। डॉक्टर नुपुर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ना जेंडर इक्वालिटी की बड़ी बात करते हैं, और अगर मैं डॉक्टरी लाइन में देखूं तो वहां तो फिर भी इक्वालिटी है, क्योंकि देखिए महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार तो सब पड़ते हैं, तो डॉक्टर तो आपको हर जेंडर के चाहिए। लेकिन बाकी सारे एरियाज में अगर आप देखें तो इम्बैलेंस है, तो क्या इस इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं?
1: हाँ, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में काफी हद तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहा जाए तो उत्थान नहीं हो पा रहा है। मगर अब बहुत सा नजरिया सब लोगों का बदल गया है। डॉक्टरी में तो आपने अभी देखा होगा कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स हर फील्ड में फीमेल्स हैं, और इवन जो पहले इवन हम जब पढ़ रहे थे तब भी ऐसा था कि जो सोचा करते थे कि गायनी डिपार्टमेंट में इसमें मेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे। तो डॉक्टरी में तो ये समानता है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इतना कोई अंतर नहीं रहा है। पर और फील्ड में देखा जाता है कि इंजीनियरिंग में जो क्रूड वाली इंजीनियरिंग होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा पीछे से अगर देखा जाए, अच्छी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो या उनके मम्मी पापा अच्छी तरह समझा दें, तो शायद हर फील्ड में, और इंडिया में तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई हैं। तो ये कहना कि समानता नहीं है, यह भी गलत होगा। थोड़ा सा उसमें अंदर से, अपने अंदर से कुछ एक भावना सी चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं, तो काफी हद तक सरलता से पहुंच जाती हैं स्त्रियां।
0: वाकई, तो भाई देखिए, इस बात की हम खुशी मना सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। जहां पर एक जमाने में महिलाएं होती ही नहीं थी, वहां अब हम महिलाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि अगला सवाल बड़ा दिल को छूने वाला है। हर महिला जब इस सवाल को सुनती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इस सवाल से रेजोनेट करती है और सोचती है इसका सोल्यूशन क्या मेरी जिंदगी पर फिट होगा या नहीं। तो पूछने वाली हूँ ये अगला सवाल डॉक्टर नुपुर माथुर से, पर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज उतनी ही प्यारी लेकिन सीजन्ड डॉक्टर डॉक्टर नुपुर माथुर जी से मैं बात कर रही हूँ। बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, जब कभी भी महिलाओं की बात होती है, मतलब मैं अक्रॉस पूरे भारत की बात करूं या ग्लोब की बात करूं, तो हमेशा से ये माना गया है कि जो महिला है ना वो घर की केयर टेकर है और नर्चरर है। और ये जो रोल्स हैं मुझे लगता है कि बहुत जमाने से डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसा होता है कि एक अगर महिला अपना करियर बना भी रही है या बना भी चुकी है, तो जैसे ही जीवन का वो पड़ाव आता है जहां बच्चे आते हैं और आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमेशा एक महिला को अपने करियर का त्याग करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करिए, आप ब्रेक ले लीजिए या आप कुछ और करिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी भी महिला के करियर के लिए एक पुरुष ने कहीं कोई त्याग दिया हो।
1: नहीं नहीं, ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल तो पुरुष वर्ग बहुत साथ देता है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी यंग, बिल्कुल यंग अभी आगे बढ़ रही हैं, और जब फैमिली में आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक अच्छा प्रमोशन होने वाला है, साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देर आर मैनी, अब तो अपर क्लास में तो हैं पर लोअर क्लास में भी देर आर मैनी मेल मेंबर्स हु रेस्पेक्ट देम एंड हु ऑप्ट फॉर लीव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द फीमेल पार्टनर। सो इट्स नॉट एज सच, बट हाँ, डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर। द मेन थिंग इज दैट इन लॉज एंड हूएवर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फैमिली शुड बी कंपैशनेट फॉर द गर्ल। सो आई थिंक इतना नहीं है, रहता जरूर है। और अगर स्त्री कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है, कुछ

0: ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के माइंडसेट को और भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं।
1: रिस्पेक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। वो शायद मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग में एक स्कूलिंग के टाइम से जो मैनर्स और रिस्पेक्ट फीमेल्स के प्रति इम्बाइब हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो बॉयज होते हैं उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आपको अपने साथ वाली जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी उसके लिए, मैंने देखा है मदर्स के लिए भी कई लोगों में वो रिस्पेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, जो और कंट्रीज में होता है मेल्स में। तो वो उसमें अगर थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से अगर अच्छी एजुकेशन दे दें तो शायद काफी हद तक ये समस्या खत्म हो सकती है।
0: और इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत घर से हो सकती है, और घर में फिर कौन, माँ, महिला। तो भाई अगर महिलाएं चाहें तो वाकई बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों वक्त है एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर माथुर से। डॉक्टर नुपुर, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने ना अपने पूरे जीवन के पन्ने खोले, आपने बहुत सारी शिक्षा हमें दी, साथ के साथ ही बताया कि चीजें बदल रही हैं और कुछ जो चीजें बदलनी है उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन सामंजस्य बिठाकर। तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी सभी को आप?
1: खास मैसेज तो यही है कि स्त्रियों को लगे रहना पड़ेगा, अपना एक अलग स्थान तो बनाना पड़ेगा और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के शायद यह काम करना ज्यादा आसान होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो स्थान आपका परिवार आपको नहीं देगा, जरूर देगा। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखें और उस तरफ अपने प्रयत्न जारी रखें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जो समाज है ये तभी बदलेगा जब आप और मैं बदलने वाले हों, जब हम अपनी सोच को बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना? जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएँ जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2015 25 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितनी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था यूएस में भी जो वीज़ा के नियमों में काफ़ी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीज़ा नियम काफ़ी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जा करके एजुकेशन लोन की ईएमआई कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कंफर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए। यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है दोस्तों? आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा चार्म भी रहता है हमारे देश में उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने का। यदि हम 2025 के प्लेसमेंट सीजन की बात करें तो IIT बॉम्बे में लगभग 74% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये कि IIT मुंबई में 74% प्लेसमेंट हुआ। और इंटरनेशनल जो पैकेज था वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है, उसकी प्लेसमेंट आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में, वो बहुत बढ़ गया है, वीज़ा की इश्यूज हो गए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं। यानी
अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच हमें आज स्वीकारना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो, इसका एक जो लाभ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सीधा सीधा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए होते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप है या कोई भी और एसेसरी। और साथ ही साथ जब आप किसी जगह पर रहते हैं नई जगह पर विदेशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। और एक अनुमान के अनुसार जो हम कई देशों की हम बात करते हैं, तो उसमें तकरीबन किसी एक छात्र पर 20 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि छात्र अपने खर्चे को बियर करने के लिए, वहाँ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं और वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले वहाँ मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है या वहाँ का जो वातावरण है या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस, जो आपको अकेलापन महसूस होता है, वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु, जो पर्यावरण वहाँ का है, वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदी नहीं होते, तो वहाँ पर जा कर के उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है, तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है, उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा कर के जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पर हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और में रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है। और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले करके आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता

तुमसे सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें या यदि हम विकास की बात करें, तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा, एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा। लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसा हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं, वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में, जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य जब ही होता है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंघल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी। रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थी मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठते कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ग्रीन ग्रह और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की यानी कचरे के सही प्रबंधन की। दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह आपने चाय पी, सब्जियां काटी, दूध के पैकेट खाली किए, पानी की बॉटल खत्म हुई, ये सब इस्तेमाल करने के बाद आपने जो भी फेंका, क्या आपने कभी सोचा कि उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? क्या वो रिसाइकलिंग तक पहुंचता है या फिर किसी खुले मैदान, नाले या लैंडफिल में जाकर हमारी हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने लगता है? सच तो ये है कि कचरा हमारे घर से निकलने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और अगर इस यात्रा का सही प्रबंधन ना हो तो यही कचरा हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं ग्रीन ग्रह, जहां हर कड़ी में हम जानेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कचरे का सही निपटान कैसे किया जाए और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस खास सफर की शुरुआत, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य धरती की शुरुआत हमारी अपनी जिम्मेदारी से होती है। हम सभी अपने घर की सफाई तो रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि घर से निकलने वाला कचरा आखिर कहाँ जाता है? क्या उसका सही तरीके से निपटान हो रहा है? अगर नहीं तो यही कचरा धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आज दुनिया भर में कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण हर दिन पहले से कहीं ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है। अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। और अगर ठोस कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक बन सकता है। कचरा कैसे बनता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो आइए बताती हूँ। जब कचरे को समय पर इकट्ठा नहीं किया जाता, खुले में फेंक दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है, तो उससे निकलने वाले धुएं और हानिकारक रसायन जो है वो हवा को प्रदूषित करते हैं। यही कचरा बारिश के पानी के साथ मिट्टी और जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, जिससे पानी भी दूषित होता है। और इतना ही नहीं, खुले में पड़ा कचरा मच्छर, मक्खियां, चूहे और बाकी जो कीट हैं उनके लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। यही कीट कई गंभीर बीमारियों को फैलाने का कारण बनते हैं। गलत तरीके से कचरे का प्रबंधन होने पर पानी और भोजन से होने वाले संक्रमण, श्वसन संबंधी बीमारियां और जहरीले रसायनों के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बन जाता है। सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है, तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही काफी वीक है, काफी संवेदनशील है। इनमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अनौपचारिक कचरा श्रमिक, यानी वो लोग जो बिना पर्याय सुरक्षा के कचरा इकट्ठा करते हैं, और वो परिवार शामिल हैं जो खुले कचरा डंप या लैंडफिल के आसपास रहते हैं। इन लोगों को प्रदूषित हवा, दूषित पानी और जहरीले पदार्थों के लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण और जलवायु पर प्रभाव, तो देखो कचरे का गलत प्रबंधन सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। जब कचरा खुले में फेंका जाता है या जलाया जाता है तो हवा, मिट्टी और पानी दूषित होते हैं। इससे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि बल्कि पूरी पृथ्वी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खुले डंपिंग स्थल और कचरे के सड़ने की प्रक्रिया से निकलने वाली गैसें जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी बढ़ाता है। यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरी धरती के भविष्य पर असर डाल सकती है। क्या कचरा सिर्फ समस्या है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कचरे का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो यही कचरा एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है। सूखे कचरे जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच को रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ प्रकार के कचरे से ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है और हरित रोजगार यानी ग्रीन जॉब्स के नए अवसर पैदा होते हैं। तो क्या करना होगा? तो देखिए, आपको मैं कुछ बताती हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण सुझाव। सबसे पहले हमें कचरा पैदा होने की मात्रा कम करनी होगी। जहाँ कचरा संग्रह की व्यवस्था कमजोर है, वहाँ बेहतर और नियमित कचरा संग्रह सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। खुले में कचरा फेंकने और जलाने जैसी आदतों पर रोक लगानी होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र की भी इसमें अहम भूमिका है। स्वास्थ्य संस्थानों में निकलने वाले कचरे का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना, कचरे का सही तरीके से पृथक्करण करना, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाना, ऐसी नीतियां बनाना जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा करते हैं। साथ ही कचरा श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान जरूरी है। तत्काल क्या किया जाना चाहिए? तो खुले कचरा डंप और खुले में कचरा जलाने की जो प्रथा है उसको बंद कर देना चाहिए। कचरा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के सहयोग से वैज्ञानिक और सुरक्षित कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारी जिम्मेदारी, जो कि एक बहुत जरूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हमें पता होना चाहिए। सरकार और प्रशासन के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अपने घर से ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने घर से जो शुरुआत है वो सबसे पहले की जानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। जहां संभव हो गीले कचरे से खाद बनाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। कचरा कभी भी सड़क, नालियां या खाली जगहों पर ना फेंके। रिसाइकलिंग को अपनी आदत बनाएं। और वहीं इसी के साथ याद रखिए, कचरा केवल एक अपशिष्ट नहीं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य संगठन की यह रिपोर्ट हमें साफ संदेश देती है कि अगर आज हमने कचरे के सही प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो यही कचरा एक संसाधन बन सकता है और इससे स्वच्छ शहर, बेहतर स्वास्थ्य, नए रोजगार और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। चलिए इस कड़ी में आगे कुछ और बातें करते हैं और जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। वहीं धरती हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, लेकिन आज ये बढ़ते कचरे और प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। जैसा कि इस पर हमने बात की, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और हमारी जीवन शैली बदल रही है, उसी रफ्तार से हर दिन कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यदि इस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो ये ना केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। और ग्रीन ग्रह जो ये प्रोग्राम है, इसी सोच के साथ शुरू किया गया ये एक जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब जैसा कि कुछ बदलाव मैंने आपको बताए, घर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करती हूँ। भारत हर साल 6 करोड़ टन यानी लगभग 62 मिलियन टन से भी ज्यादा ठोस शहरी कचरा उत्पन्न करता है। भारत सरकार के अनुसार देश में प्रतिदिन 1.5 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा उत्पन्न होता है। वहीं दुनिया में हर साल 2 अरब टन से भी ज्यादा नगर ठोस कचरा यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। अगर आज स्थिति जारी रही तो साल 2050 तक ये बढ़कर लगभग 3.8 अरब यानी 3.8 अरब टन तक पहुंच सकता है। भारत में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे का बड़ा हिस्सा जैविक यानी गीला कचरा होता है, जिसे कंपोस्ट बनाकर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। और वहीं प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। जी हाँ, कई साल। कई प्रकार के प्लास्टिक को टूटने में करीबन 400 से 500 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। वहीं एक टन कागज की रिसाइकलिंग से लगभग 17 पेड़ों को बचाया जा सकता है और साथ ही पानी और ऊर्जा की भी बचत होती है। भारत के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार घरों, संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करना आवश्यक है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इस पर हम कई सारी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जब गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जाता है तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। इससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है, प्रदूषण घटता है और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, खुले में पड़े कचरे से जहरीली गैसें निकलती हैं, मच्छर और मक्खियां पनपते हैं और कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं प्लास्टिक नालियों को जाम कर देता है, जिससे जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम कई सारी बातें करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। घर में कम से कम 2 डस्टबिन रखें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, घर में 2 डस्टबिन आप रखें, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। रसोई के जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। कपड़े या जूट बैग का इस्तेमाल करें, जी हाँ उसको अपनाएं। पहले के टाइम में भी अगर हम आज से कई साल पहले जाते हैं, हमारे दादी जी नानी जी वाले दौर में जाते हैं, तो आपने उनसे ज़रूर सुना होगा कि जूट का बैग का इस्तेमाल वो करते थे। तो आज जो है ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन यह देखकर अच्छा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो वापस से जूट के बैग पर शिफ्ट हो रही है। तो बस आपको यही करना है, जूट के बैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ई वेस्ट, बैटरियाँ और बल्ब सामान्य कचरे में ना फेंकें, बल्कि आप इसे अधिकृत संग्रह केंद्रों पर जमा करें। रिसाइकलिंग वाली जो वस्तुएं हैं उसको रिसाइकलिंग चैनल तक पहुंचाएं। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा कर सेवा क्लीनलीनेस ड्राइव और प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद नगर निगम की माननीय मेयर सुश्री परवीन बत्रा जोशी जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अभियान के दौरान सफाई के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर कई छात्र छात्राओं ने भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अपने विचार साझा किए और सभी से प्रकृति को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में सभी जो छात्र छात्राएं जुड़े हैं और माननीय मेयर परवीन बत्रा जोशी जी हमारे साथ जुड़े, कई सारी बातें इन्होंने की, तो आइए सुनते हैं उनके विचार। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका और इस वक्त हम हैं मेयर मिस परवीन बत्रा जोशी जी के साथ में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं प्रांका हूँ।
1: अंका, थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो ये मानव रचना ओ पी भल्ला फाउंडेशन टीम की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इसके लिए पूरी टीम का आभार, वधवा साहब जी का और आप सभी जो बच्चे आए हुए हैं कॉलेज के, बहुत अच्छा इनिशिएट लेता है मानव रचना। मुझे लगता है कि जो समाज के लिए माननीय स्वर्गीय भल्ला साहब जी ने जो एक मुहिम चलाई थी, सभी बच्चों को एजुकेट करना स्पेशली लेबर क्लास के लिए, इसके लिए मैं खुद विटनेस हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई स्क्रिप्ट बता रही हूँ या कहीं कोई लिखा हुआ देगा जी। मैंने भल्ला साहब को एक साइकिल पर चलते हुए भी देखा है उनको, इतने लेबोरियस पर्सन थे। उनका एक ही विज़न था, क्योंकि मेरा बच्चा भी मानव रचना से ही पास आउट है, तो मुझे इसलिए उनकी पूरी डिटेल भी मालूम है कि ये लोग कितने एफर्ट्स करते हैं बच्चों के लिए। और यूनिवर्सिटी तो अपने आप में एक नाम है ही, तो इसके लिए जो आज आपके सामने सभी बच्चे आए हुए हैं और इस कार्यक्रम और सफाई अभियान जो इन्होंने आज स्टार्ट किया, इसके लिए तो सभी का आभार व्यक्त करूंगी। लेकिन बस यही है कि आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी शहरवासियों को कि कृपया अपनी इच्छा से ही पॉलीथीन बंद कर दें और वाटर बॉटल्स, क्योंकि शहर में जो सबसे ज़्यादा कूड़ा भी इन्हीं दो चीज़ों से है, प्लस वाटर लॉगिंग का मेन रीजन यही है। हम कहीं कहीं तो 20 ट्रक, 40 ट्रक, 60 ट्रक इसमें नालों से निकाल लें, जो हमारे बड़े नाले हैं। आपको मालूम होगा कि बड़े नाले हमारे यहाँ 9 है शहर में, टोटल छोटे बड़े मिला के अराउंड 120 हैं। और सभी की सफाई करके सिर्फ ये दो चीज़ें ही निकलती हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार सभी से कहना चाहूँगी कि पुराने समय में हमारे समय में हम अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ एक झोला लेके चलते थे। झोला भी आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर जूट बैग्स और बहुत कुछ आता है। तब तो घर में मम्मियाँ ही बनाती थी, मम्मी दादी बुआ सब बनाते थे, उसी में ही सारा खा आता था सामान। अब क्यों नहीं आ सकता? तो अब भी तो आ सकता है। अब तो और भी अपनी गाड़ी में सभी लोग 2-4 थैले रखें और कृपया स्वेच्छा से पॉलीथीन को बंद कर दें, जिससे कि एक गिलहरी का योगदान रहेगा सभी की तरफ से एक इस समाज के लिए, इस फरीदाबाद के लिए।
2: जी, आज का यूथ बहुत स्मार्ट है और बहुत सारी चीज़ें जानता है। कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा जूट का बैग ही इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन अभी और बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयर करना ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: बस इसी के लिए कह रही हूँ मैं आपकी ओर से कि जैसे बच्चे भी आजकल जूट का बैग यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट लेदर भी बहुत कम यूज़ करते हैं, एक स्मार्ट बैग्स भी आ रहे हैं आजकल। उसके अलावा जो ये हम इनकी हेल्प ले सकते हैं महिलाओं से, ग्रहणियों से, बस वही जैसे ही कोई पॉलीथीन आता है उसको रीयूज ना करके उसको बंद करके एक साइड पर रख दें। अभी हम जगह जगह डस्टबिन लगा रहे हैं इनके लिए, स्पेशली बोटल बिन्स, उसमें आप प्लास्टिक बोटल डालिए, प्लास्टिक डालिए और वहाँ से हमारी टीम आएगी वीकली आपके पास, वीकली और कुछ पर डे भी जहाँ पर कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ कूड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ से डेली भी उठाया जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट हम वहाँ से उठा लेते हैं और उसके आपको मालूम होगा जगह जगह प्लांट्स लग चुके हैं, उसमें सोसाइटीज़ में यूज़ करने के लिए बेंचेस बनाए जा रहे हैं, उसका अच्छा यूज़ किया जा रहा है, कि वो पॉट्स भी बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। तो उसका एक सदुपयोग भी है और एक सहयोग भी है। और जब तक जन सहभागिता नहीं होगी कोई भी सरकार इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं हम कि हम पनिश करें तभी हम सब माने, हम अपनी इच्छा से भी तो मान सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कैंसर का मेन रूट कॉज प्लास्टिक है।
2: करेक्ट,
1: हम गर्म चीज़ उसमें डाल देते हैं, हम इस चीज़ में अवेयर ही नहीं है। तो पुनः सभी से आग्रह अपने स्वास्थ्य और अपने शहर के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी को मन में बसा लें कि मेरा शहर जहाँ भी जाऊँ मैं हरियाली दिखने के लिए जाऊँ। मेरा यही विज़न है और यही मेरा उद्देश्य है, इस पर मैं कार्य कर रही हूँ। और हमारे माननीय मंत्री जी जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री हैं, वो आपने देखा होगा जगह जगह पौधारोपण उनका चलता रहता है। माननीय CM साहब ने भी आकर कुछ किलोमीटर्स के अंदर पौधारोपण किया था लास्ट ईयर। वो ऐसा नहीं कि पौधारोपण किया और हमने छोड़ दिया, आज इस समय पेड़ बन चुके हैं। तो यहाँ पुनः सभी के शासन प्रशासन का सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो, मैम जैसे घर से कचरा निकलता है, काफ़ी लोगों को पता है कि कौन सा कचरा कैसे निपटान करना है उसका, लेकिन रेडियो के माध्यम से इस वक्त आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो घर से ही चीज़ें निकलती हैं और हमें

0: कि अभी प्लास्टिक और प्लास्टिक बोटल्स इनको स्वयं ही अपने घर से सेग्रीगेशन करना शुरू करते हैं। अदरवाइज जहाँ भी कूड़ा इकट्ठा जाता है वहाँ सेग्रीगेशन होता ही है। अगर हम अपनी ओर से कर देते हैं तो एक हेल्प हो जाती है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
1: थैंक यू।
0: थैंक्स।
2: थैंक यू। चलिए अब जानते हैं सीमा बत्रा जी के विचार, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकरी की। तो इन्होंने भी अपने विचार साझा किए और सभी लोगों को अपना संदेश दिया।
3: मायसेल्फ सीमा बत्रा, वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांकड़ी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मानव रचना। ग्रीन ग्रह जो है ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि किस तरह से हमें अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, किस तरह से हमको अपने एनवायरमेंट को सेव करना है। एंड फॉर ग्रीन ग्रह इनिशिएशन द ओपी भल्ला ट्रस्ट द मानव रचना सोसाइटी हैज प्रोवाइडेड अवर सोसाइटी टू ईच रेजिडेंट, दे हैव प्रोवाइडेड टू डस्टबिन, वन ग्रीन एंड वन ब्लू, फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट। एंड दे हैव डन लोट फॉर आवर स्कूल, दे हैव मोटिवेटेड अवर स्टूडेंट, एंड यस्टरडे आल्सो टू और थ्री स्टूडेंट्स केम फ्रॉम जर्नलिज्म एंड दे मोटिवेटेड स्टूडेंट्स for segregation of waste extra, and they also provides us copies which are best from the waste. They also provide copies, not when I, one thing very special they provided is a bench from a plastic, so much heavy and so much useful. I am very thankful to the OP Bhalla Trust.
2: इस अभियान में हमारे साथ में जुड़ी वैशाली ओपी भल्ला फाउंडेशन की तरफ से और मानव रचना के शिक्षक कर्मचारी, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने मिलकर सफाई की और पौधारोपण कर समाज को ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं अब वैशाली के विचार।
4: नमस्कार, हम डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे हैं अंडर अवर प्रोग्राम ग्रीन ग्रह। ग्रीन ग्रह मेनली वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोग्राम है और यहाँ 21C में बहुत ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ था जो हमने हटाया है। हम कल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी आई थिंक एक दिन और लगेगा, और ये सारा कूड़ा हटा के यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और लोगों को भी हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो घर में अपनी वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे और ड्राई वेस्ट को किसी ठीक से रिसाइकलर को दे देंगे, तो ये कूड़े के ढेर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। थैंक यू।
2: इस अभियान में छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि एक छोटा सा प्रयास भी पर्यावरण को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है और हर व्यक्ति को पौधारोपण व स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
5: हाँ जी, मेरा नाम शांतनु बत्रा है एंड ये जो भी इनिशिएटिव हुआ है इससे हम सोसाइटी में काफ़ी बेनिफिट फील कर रहे हैं खुद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट सेग्रीगेशन से हेल्प मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं जैसे मंकीज वगैरह का बहुत रहता है, वो काफ़ी कम हो गया बिकॉज हम लोग जो वेस्ट होता है वेट वेस्ट वगैरह उसको हम लोग एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, तो ओवरऑल पोल्यूशन हाइजीन भी थोड़ा बढ़ा है। उसके अलावा ये बाकी जो भी आजकल पोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था पीछे, काफ़ी वेस्ट की वजह से, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह में उसमें काफ़ी हेल्प मिला है। आसपास के जो कनेक्टेड स्वीपर्स हैं वगैरह उनको भी हेल्प मिल रहा है सेग्रीगेशन वगैरह से, उनको भी आके काफ़ी सपोर्ट हो रहा है, ईजिली वो जो चीज़ उनको यूज़फुल है वो मिल रही हैं। एंड यूथ के लिए मैं कहूँगा कि यार एक तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी आजकल बहुत है, तो हॉन्किंग कम से कम करें। हम कई बार रोड पर निकलते हैं तो हॉन्किंग से काफ़ी नॉइस पोल्यूशन होता है, हम लोगों को आई थिंक उतना फील नहीं होता लेकिन जो एल्डरली हैं उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम सोसाइटी में फील करते हैं काफ़ी ओल्ड पीपल हैं जिनको पूरा दिन प्रॉब्लम्स हैं, ईयर्स में प्रॉब्लम है, कुछ लोग इस तरह की साउंड्स नहीं ले पाते हैं तो वो प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन है कम, उसका ध्यान रखिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज हम फील होता है कि हमारे लिए बेटर हैं, नहीं प्रॉब्लम फील करते, पर जो इस एजड लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। छोटा सा भी अगर PPM एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर बंदे के पास अगेन एयर प्योरीफायर लेने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हम बेटर एटमोसफेयर क्रिएट कर सकते हैं कैसे आगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, अपने स्पेशल ओकेशंस को सेलिब्रेट ऐसे करिए कि आप डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगा सकें अपने नियर बाय प्लेसेस में, जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाइजीन की, कूड़ा फैल रहा है, सब चीज़ फैल रही है, तो हमारा आधा दिन हम लोग वेट करें कि कोई मेजर हो, तो उससे अच्छा हम लोग खुद मिलके एक इनिशिएटिव लें, उनको क्लीन करें। ताकि आगे हमें बेटर क्लीनर एनवायरनमेंट

0: जनरेट कर पाए आने वाले जनरेशन के लिए।
1: हेलो, आई एम लक्ष्य, आई एम फ्रॉम MRIRS एंड टुडे वी आर हेयर फॉर ग्रीन ग्रह मार्च। टुडे वी डिड वी केम विद आर फ्रेंड्स अप्रोक्स 100 to 150 एंड वी क्लीन द सिटी एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड नाउ वी आर प्लांटिंग मैनी ट्रीज हेयर। सो आफ्टर दिस आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड माई सजेशन इज दिस दैट everyone should plant their trees in their homes and in their surroundings, for example government places, schools, etc. Thank you.
2: मेरा नाम जीविका है, मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं हम ही लोग यहाँ पे क्लीनिनेस और प्लांटेशन ड्राइव के लिए पहुँचे हैं। हमने यहाँ पे आके क्लीनिनेस के लिए बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा करा, डस्टबिन में गिरा और हमने साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स लगाए जो कि हमें ऑक्सीजन देने में हेल्प करते हैं। तो और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी इसमें मदद करें, आप भी अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इस चीज़ के लिए दें और कूड़ा इधर उधर ना फेंके, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और व्हीकल्स का भी कम यूज़ करें जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अपने साइड से आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, अगर एक भी करेगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट को।
3: अब यहाँ बात होती है ग्रीन ग्रह का संदेश जो कि बेहद ज़रूरी है और ये प्रोग्राम जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। देखो, एक स्वच्छ शहर केवल सफाई कर्मचारियों के प्रयासों से नहीं बनता बल्कि हर जिम्मेदार नागरिक के सहयोग से बनता है। अगर हर परिवार अपने घर से ही कचरे का सही पृथक्करण करना शुरू कर दे तो देश में जो कचरा है वो प्रबंधन की जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक बदल सकती है। याद रखिए, कचरा तब तक कचरा है जब तक उसे सही तरीके से अलग नहीं किया जाता। सही प्रबंधन के बाद वही कचरा खाद, ऊर्जा और नए उत्पादों के रूप में एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है। आइए ग्रीन ग्रह के साथ मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि हमारी पहचान बने, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि कचरे को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार भी होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने की ढेर सारी बातें। आपका कोई संदेश है या कोई बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078। आप इस नंबर पर हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और बहुत सारी बातें लेकर हम जरूर आएंगे प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ प्रियंका और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका इस बेहतरीन कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आई डोनेशन यानी नेत्रदान के बारे में। हमारे साथ हैं स्वाति कालरा जी, जो कि दिल्ली के डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल आई बैंक में आई डोनेशन काउंसलर हैं और इस विषय पर विशेषज्ञ हैं। स्वाति जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते
2: स्वाति। हम आई डोनेशन या नेत्रदान के बारे में ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में इसकी क्या सिचुएशन है। हम 90 के दशक से देखते आ रहे हैं कि इसके बारे में जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आज की स्थिति क्या है?
3: जी बिल्कुल गीतिका, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अवेयरनेस या जागरूकता होने के बावजूद भी लोगों में नेत्रदान करने के लिए एक हिचक है। और हर साल हमारे यहाँ पर करीब करीब 2,00,000 लोग हैं जो कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं, और जितना हमारा नेत्रदान होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है।
2: अंकों के अनुसार स्वाति, हमने ये अपनी रिसर्च में देखा है कि भारत में करीब 70,00,000 लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्निया की बीमारी के कारण जो नेत्रहीनता है उससे पीड़ित हैं, और हर साल सिर्फ 50,000 लोग ही मृत्यु के बाद नेत्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है?
3: ऐसा इसीलिए, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि कहीं ना कहीं लोग हिचकते हैं या लोगों को ये डर लगता है कि नेत्रदान करने के बाद चेहरा जो है वो बिगड़ जाएगा, या कई बारी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नेत्रदान करेंगे तो वो अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
2: तो क्या हर तरह के नेत्रहीनता के लिए ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने से ठीक हो जाता है?
3: नहीं मैम, नेत्रहीनता के कारण कई होते हैं। नेत्रहीनता कई बारी आँख के पर्दे की खराबी की वजह से भी होती है, या आँख के अंदर जो नर्व्स जाती हैं उनकी वजह से भी होती है, लेकिन हम सिर्फ उस दृष्टिहीनता को ठीक कर सकते हैं जो कॉर्निया की खराबी के कारण हुई है। कॉर्निया की खराबी कई बारी चोट लगने की वजह से हो सकती है, या आँख में कुछ पड़ गया उस वजह से भी कॉर्निया की खराबी हो सकती है, या कई बारी हो सकता है कॉर्निया ठीक से जन्म से ही डेवलप नहीं हुआ है उस वजह से भी खराबी हो सकती है।
2: कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जब होती है तभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट का फायदा होता
3: जी,
2: है।
3: जी बिल्कुल।
2: हम जब बोलते हैं कि आप नेत्रदान कीजिए या लोग नेत्रदान का प्रण लेते हैं, तो क्या पूरी आंख को निकाल लिया जाता है? आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे?
3: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ आंख के आगे की एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है या लेयर होती है जो हम लोग निकालते हैं।
2: तो क्या नेत्रदान के बाद पता नहीं चलता है परिजनों को कि उनका नेत्रदान हुआ है या नहीं?
3: बिल्कुल भी नहीं।
2: तो शक्ल में कोई
3: शक्ल नहीं बिगड़ती है, चेहरा एज इट इज रहता है।
2: तो पूरे नेत्रदान का प्रोसेस क्या होता है, आप हमें ये बताइए।
3: नेत्रदान के प्रोसेस की जहाँ तक बात है, अगर किसी व्यक्ति ने जीते जी नेत्रदान करने का प्रण लिया है तो उसे तो सबसे पहले उसे अपनी परिवार को इस बारे में इत्तला करके रखना चाहिए कि ये उसकी आखिरी इच्छा है और वो ये चीज़ करवाना चाहते हैं। उसके बाद मृत्यु के उपरांत परिवारजनों को आपके निकटतम आई बैंक से संपर्क करना चाहिए। 6 से 8 घंटे का समय होता है कॉर्निया को रिट्रीव करने का। जितना जल्दी संपर्क करेंगे उतना बेहतर होगा। आपका जो निकटतम आई बैंक है, आपकी टीम आपके घर से आकर के भी कॉर्निया रिट्रीव कर सकती है, और कॉर्निया रिट्रीवल किसी भी प्रकार की मृत्यु के उपरांत किया जा सकता है।
2: तो कॉर्निया को लेने के लिए टीम मृत व्यक्ति के घर आकर वहां से 10-15 मिनट में कॉर्निया कलेक्ट करके लेके जा सकती है। तो इस तरह जो कॉर्निया लेके जाया जाता है उसको कितने दिन तक हम सही रख सकते हैं?
3: कॉर्निया को टीम एक प्रेजर्वेटिव के अंदर लेकर के जाती है और उस प्रेजर्वेटिव में हम 14 दिनों तक कॉर्निया को सही रख सकते हैं।
2: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। स्वाति, अब मैं ही जानना चाहूंगी कि क्या हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
3: हाँ जी कितका मैम, हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। हम जनरली 3 साल से 80 साल तक का एज बैंड लेते हैं नेत्रदान के लिए, क्योंकि 3 साल से पहले का जो कॉर्निया होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और वो बहुत नरम भी होता है, उसकी हैंडलिंग आसान नहीं होती है। और 80 साल से ऊपर कॉर्निया की क्वालिटी जो है एज के साथ साथ खराब होनी शुरू हो जाती है, तो हम लोग प्रिफरेबली नहीं लेते हैं 80 ईयर्स के ऊपर का कॉर्निया।
2: और अगर किसी को डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है या कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है तो?
3: डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट, या अगर किसी ने और किसी अन्य कारण की वजह से चश्मा लगा रखा है, वो सब नेत्रदान कर सकते हैं। कैंसर वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया जिसे हम बोलते हैं, और लिव कैंसर वाले लोग जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ कभी कभार क्या होता है गीतिका मैम कि कई लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे HIV है या हेपेटाइटिस की बीमारी है किसी को, या जॉन्डिस है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, वो केसेस में भी हम लोग नेत्रदान नहीं करवाते हैं। नेत्रदान करते समय हम 10 mm का ब्लड सैंपल साथ में लेते हैं, जिसका हम लोग लैब में जा कर के टेस्टिंग करते हैं, और अगर तो ब्लड सैंपल ठीक है तब तो हम फर्दर आगे कॉर्निया का प्रोसेसिंग करते हैं। अगर ब्लड सैंपल खराब है तो फिर वो कॉर्निया किसी को दृष्टि देने के काम नहीं आता है, और यही एक कारण होता है कि हम जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों का कॉर्निया नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर वो दृष्टि देने के काम नहीं आता है।
2: तो ये तो हमने चर्चा की नेत्रदान के बारे में, अब यदि कोई दृष्टिहीनता से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए?
3: ये आपका सवाल बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि कई बार ही क्या होता है दृष्टिहीनता से अगर कोई ग्रसित है तो उसकी बीमारी जो है उसका पता ही नहीं लग पाता है, क्योंकि हमारे देश में लोग इस बारे में ना तो ज़्यादा बात करना चाहते हैं और ना ही इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। दृष्टिहीनता के, जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया था, कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम अपने निकटतम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के, या कई बारी कैंप वगैरह लगते रहते हैं तो वहाँ पर जा कर के अपनी बीमारी का एग्जैक्ट पता लगवाएं कि हमारी दृष्टिहीनता का कारण क्या है, ताकि उस कारण का सही तरह से आगे इलाज हो सके। और अगर व्यक्ति कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टिहीन हुआ है तो उसकी उस खराबी को रिपेयर करके उसको उसकी आंखों की दृष्टि उसे लौटाई जा सके। तो अगर तो हमारी दृष्टिहीनता का कारण कॉर्निया की खराबी है तो हम अस्पताल में जाकर के खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए। सर्जरी जो है वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है वो बच्चों को और मिडिल एज लोगों को दी जाती है, क्योंकि उनके आगे उनका पूरा जीवन अभी बाकी है।
2: तो क्या आप हमें बता पाएंगी कुछ अनुमान कि इस सर्जरी के लिए कितना खर्चा लगता है और इतनी सफलता मिलती है इस ट्रांसप्लांट सर्जरी में?
3: अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करते हैं तो सरकारी अस्पताल में जैसे अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है, उसी प्रकार कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी मुफ्त में किया जाता है। सिर्फ जो दवाइयों का खर्च होता है वो लिया जाता है, और प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, एज कम्पेयर टू दी सरकारी।
2: स्वाति, क्योंकि आप इतने सालों से इस काम में लगी हुई हैं, तो मैं एक आपके काम से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। यदि आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा वाक्या बताना चाहें जिसमें आपको लगा हो कि ये काम करना क्यों इतना जरूरी है।
3: एक वाक्या है मेरे पास, ये बेसिकली एक 5 साल की छोटी सी लड़की की कहानी है। उस लड़की के कॉर्निया में कुछ तकलीफ थी जिसके कारण उसको दिखता नहीं था। वो जब बहुत छोटी थी तब से उसको ये प्रॉब्लम था, और वो लड़की को 5 साल तक, जैसा कि हमारे कल्चर में है कि स्पेशली विलेजेस में है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको घर के अंदर बंद करके रखना है, उस बेचारी बच्ची के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उसकी कॉर्निया की सर्जरी करी गई और उसको दिखना शुरू हुआ, और आज की डेट में वो लड़की स्कूल जाती है। तब मुझे समझ आए कि हाँ, हमारी इस छोटी सी एफर्ट से किसी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है।
2: और कभी कोई ऐसा नेत्रदान करने वाला परिवार जिन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की हो?
3: जी, एक लेडी थी जिन्होंने अपनी मदर का आई डोनेशन करवाया था, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी और उन्हें इस बात की संतुष्टि हुई कि उनका एक छोटा सा कार्य, अपनी माताजी का नेत्रदान करने का उनका ये छोटा सा कार्य जो है वो किसी की ज़िंदगी को खुशहाल बना गया, किसी की ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आ गया।
2: तो जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहें, कोई संदेश?
3: जाने से पहले मैं अपने लिसनर्स से सिर्फ इतनी विनती करना चाहती हूँ कि वो जितना हो सके नेत्रदान के बारे में जागरूकता फैलाएं, और सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रहीन है तो कृपया करके उसको एक अलग दृष्टि से ना देखते हुए एक सामान्य दृष्टि से देखें और उसको उसी प्रकार से ट्रीट करें या उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें जो आप बाकी किसी इंसान के साथ करते हैं, और उसकी उस दृष्टिहीनता का पता लगाएं, उसकी मदद करें कि वो अपनी इस दृष्टिहीनता से बाहर आ सके। जितना हो सके आई डोनेशन या नेत्रदान के बारे में प्लीज़ अवेयरनेस स्प्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान का प्रण लें।
2: स्वाति, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सही जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता प्रेरित होंगे और आज ही नेत्रदान का प्रण करके अपने परिवार को इस बारे में बताएंगे। सो आज हम आप सबसे यही विदा लेते हैं।
1: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, लाइफ जर्नी लेकर आती हूँ लोगों की जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। हम में से ऐसे ही बहुत कम लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना करें, कुछ ना बने या फिर अपना नाम ना बनाए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। हर किसी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, एक बड़ा नाम हो, किसी की मदद कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें। तो बस इसीलिए आप अपनी ये होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। तो बस इसीलिए हर हफ्ते आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल जर्नी लेकर आ जाती हूँ। ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प से और अपने जज्बे से कभी हार ना मान करके उस कामयाबी को हासिल किया और लोगों को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि आपके पास ना कुछ ना होते हुए भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर ना वो मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अगर वो है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज भी लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास जर्नी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनसे पूरा देश प्यार करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। जी हाँ, आज हम इनकी जर्नी के साथ चलने वाले हैं। इनकी जर्नी से बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हम सीखने वाले हैं, इंस्पायर होने वाले हैं। बहुत सारी कहते हैं ना कि लाइफ में अगर होप छूट जाती है तो किसी की जर्नी से, किसी की बातों से हमें होप मिल जाती है। तो शायद आज इनकी बातों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, जहाँ पर आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही प्यारे से गाने भी लेकर आई हूँ आपके लिए, वो भी सुनाऊंगी आपको। तो शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, संकल्प से और कभी हार न मानने वाले जज्बे से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज की हमारी कहानी भी है एक भारत के ऐसे सपूत की जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर ना सिर्फ देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में अपनी जगह बनाई बल्कि भारत के राष्ट्रपति बनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। दोस्तों, हर सफलता की कहानी किसी बड़े महल या फिर शानदार शुरुआत से नहीं होती है बल्कि कई बार इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनके पास सपने तो बड़े होते हैं लेकिन साधन बहुत कम होते हैं। वैसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नाम के एक छोटे से द्वीप पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक बहुत साधारण से बोट ओनर थे जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। उनकी माँ आसिमा बहुत ही दयालु और संस्कारी महिला थी। घर में कोई ऐसी ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी लेकिन ईमानदारी, मेहनत और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बचपन में ही अब्दुल कलाम ने समझ लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। इसीलिए स्कूल जाने के साथ साथ वो सुबह सुबह अखबार भी बांटा करते थे ताकि परिवार की मदद कर सके। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो दिन की शुरुआत जिम्मेदारी निभा कर कर रहा था और फिर स्कूल जाकर पूरी लगन से अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन इस कठिन परिस्थितियों ने कभी उनके सपने को छोटा नहीं होने दिया। जी हाँ, उन्हें बचपन से ही साइंस और उड़ते हुए हवाई जहाजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब भी वो आसमान की तरफ देखते थे तो उनके मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था कि आखिर इंसान इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है। शायद वही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत का महान वैज्ञानिक बनाने वाली थी। उनके टीचर्स ने भी उनकी प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया था। एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि बड़े सपने देखने का हौसला भी दिया। अब्दुल कलाम अक्सर कहा करते थे कि उनकी जिंदगी की दिशा देने में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की कहानी हमें बताती है कि आपका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, ये आपकी मंजिल तय नहीं करता बल्कि आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सपने ही आपकी पहचान बनाते हैं। यही से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पहला सक्सेस मंत्र मिलता है, जो कि है कि सपने वही नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखते हैं बल्कि असली सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, उनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं, उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा एक घंटे का ये सफ़र रहता है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत प्यार प्यार से गाने भी सुनते हैं, साथ ही एक मोटिवेशन लेते हैं उनकी लाइफ से कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे ने आर्थिक कमियों के बावजूद अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। अखबार बांटने से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। लेकिन दोस्तों, उनकी असली उड़ान अब शुरू होने वाली थी। जी हाँ, अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेहनती थे, खासकर साइंस और मैथमेटिक्स उनकी पसंदीदा विषय हुआ करती थी। और आजकल जैसे हम सुनते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मैथ्स और साइंस तो सच में नहीं पढ़े जाता, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और वहीं पर ही उनका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। उनके टीचर्स अक्सर कहते थे कि कलाम सिर्फ किताब पढ़कर उनका मन शांत नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ के पीछे का कारण जानने का कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। उनके अंदर सीखने की एक अलग ही भूख थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के ST जॉपिंस कॉलेज में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट और इंजीनियरिंग की दुनिया को समझना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में, जहां पर उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, MIT में एडमिशन मिलना उनके लिए जितनी खुशी की बात थी, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी इंजीनियरिंग की फीस आसानी से भर सके। एक समय ऐसा भी आया जब फीस जमा करना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई जारी रखने की मदद की थी। ये सिर्फ परिवार का त्याग ही नहीं था, बल्कि अब्दुल कलाम के सपनों का उनके ऊपर विश्वास था। MIT में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जी हाँ, उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन प्रोजेक्ट दिया गया था। जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस धीमी थी तो उनके प्रोफेसर ने साफ कहा था कि अगर निर्धारित समय पे काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो सकती है। ये बात अब्दुल कलाम के लिए एक वेकअप कॉल जैसी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा किया और अपने प्रोफेसर का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान उन्होंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि टैलेंट तभी चमकता है जब हम उसके साथ अपना डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी देते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता है दोस्तों, उन्हें पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग, लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा की ये जर्नी हमें बताती है कि मुश्किलें रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर इरादे आपके मजबूत होना, तो हर चुनौती एक नई सीख की तरह बन जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दूसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। हर दिन की छोटी छोटी सी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बनती है। तो वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हम सबको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। कौन ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं ना, हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहता है। तो बस उसके लिए ना क्या करना होता है, आपको अपनी लाइफ में ना एक मोटिवेशन लेना ज़रूरी है, और दूसरा उस मोटिवेशन को लेने से ही काम नहीं चलेगा। आपको जो अपनी लाइफ में करना है उससे पहले डिसाइड कर लीजिए और उस पर निरंतर मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। शायद कुछ रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाते हैं पर कुछ रिजल्ट हमें लेट मिलते हैं, तो बस आपको होप नहीं छोड़नी है और उस पर निरंतर आपको काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप देखना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज आपको जो मोटिवेट करने के लिए मैं जर्नी लेकर आई हूँ, वो जर्नी है आज APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, आज उनकी जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें उनकी लाइफ से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया और डिसिप्लिन और डेडिकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन दोस्तों, डिग्री हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, या फिर मंजिल मिल जाना नहीं होता। उनका सपना था कि देश के लिए कुछ ऐसा करना जिसे भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के सामने गर्व से खड़ा हो सके। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO से की। यहाँ उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ही जुनून था, और बस इसी जुनून ने उन्हें बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO तक पहुंचाया। ISRO में डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग ही नहीं था, बल्कि भारत के सपनों का प्रोजेक्ट था। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी और देश की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। साल आया 1979, जिसमें जब SLV-3 का पहला लॉन्च हुआ तो मिशन सफल नहीं हो सका। जी हाँ, रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, कई लोग निराश हो गए। डॉक्टर कलाम के लिए भी ये पल बहुत ज्यादा कठिन था। सालों की मेहनत एक पल में असफल होती नजर आ रही थी, लेकिन यहीं पर एक सच्चा लीडर सामने आता है। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, उन्होंने गलतियों का गहरा विश्लेषण किया, सीखा और दोबारा तैयारी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, सिर्फ एक साल के बाद ही 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोशनी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। इस उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बना सकता है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे कि फेलियर कभी भी अंत नहीं होता, अगर हम उसे सीख लें तो वही फेलियर हमें सफलता की तरफ ले जाता है। उनके लिए हर असफलता एक नई सीख थी, ना कि

0: मजबूत इंसान बनाने का मौका देती है। तो इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: सिमारो विंटेज के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। उनकी जर्नी के बारे में आज हम जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में काम करते हुए भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा दी। SLV-3 प्रोजेक्ट की सफलता ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे आपके मजबूत हों और टीम में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल काम मुमकिन बन सकता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों का सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने भारत की सुरक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसरो के बाद डॉक्टर कलाम ने फिर से DRDO में अपनी जिम्मेदारी संभाली। यहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में साल 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, किसी भी देश के लिए अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर कलाम ने भी अपनी वैज्ञानिक सोच, लीडरशिप और टीम वर्क के दम पर इस क्षेत्र में नए मुकाम को हासिल किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल का विकास किया है, जिसमें पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रमुख हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण ही डॉक्टर कलाम को पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उनकी लीडरशिप थी। वो अपनी टीम को, हर सदस्य को महत्वता देते थे और हमेशा उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करते थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि एक लीडर की असली पहचान तब होती है जब वो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और सफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। उनका ये विचार आज भी हर फील्ड में लोगों के लिए बड़ी सीख बन गया है। फिर आया साल 1998 में, जिसमें पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उपलब्धियों ने भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें बताती है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है, बल्कि उनके लिए विजन, टीम वर्क और पेशेंस और देश के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। उन्होंने कभी अपनी सफलता को सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं मानी है, बल्कि उसे देश की प्रगति का हिस्सा समझा है। तो दोस्तों, यही सोच उनकी उन्हें एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान इंसान भी बनाता है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चौथा सक्सेस मंत्र मिलता है कि बड़ी सफलता के लिए एक बड़ा विजन, लगातार मेहनत और टीम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हस्ती हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और आप भी सक्सेस को हासिल कर सकें। और इस जर्नी में आज हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई पहचान दी और अपनी मेहनत, लीडरशिप और साइंटिफिक विजन के दम पर देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का एक और खास अध्याय भी अभी बाकी था। एक वैज्ञानिक जो हमेशा लेबोरेटरीज और रिसर्च के बीच रहे, एक दिन भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जी हाँ, साल आया 2002 जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये पल अपने आप में बहुत खास था क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध सीधे तौर पर आम लोगों, खास करके युवाओं और विद्यार्थियों से था। उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता ने उन्हें देश के हर वर्ग के लोगों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा की तरह सरल जीवन जीते रहे और अपना समय देश के भविष्य, खास करके युवाओं के साथ बिताना पसंद करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वो देश भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट से मिला करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी करते थे। उनका मानना था कि एक युवा के अंदर देश को बदलने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। वो अक्सर कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्रपति बनना सफलता के अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि देश की सेवा करने का एक और मौका था। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप स्टाइल भी बहुत अलग थी। वो हमेशा नए विचारों को बढ़ावा देते थे और लोगों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर सिर्फ कुर्सी से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से पहचाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो सम्मान और सफलता अपने आप आपके पास आ जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पांचवा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि असली लीडरशिप वही है जो लोगों को इंस्पायर करे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे और देश के हित में काम करें। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है सक्सेस जर्नी को आपके साथ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, जिससे आप अपना तो भला करेंगे ही साथ ही देश का, अपने आस पास की सोसाइटी में लोगों का भी भला कर सकें। और आज हम जिनकी जर्नी के साथ चल रहे हैं उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक महान वैज्ञानिक से भारत के राष्ट्रपति बने और कैसे उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और युवाओं के प्रति अपने लगाव से हर भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पहचान सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं थी, वो एक महान लेखक, एक प्रेरणादायक वक्ता और एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों को ने देखने और उन्हें पूरा करने का सिखाया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश का असली विकास तभी संभव है जब युवाओं के पास बड़े सपने, सही सोच और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी किताबों और स्पीचेस में के माध्यम से लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने संघर्ष तक, वैज्ञानिक सफर और सफलता तक पहुंचने की कहानी को बहुत ही सरल तरीके से बताया है, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सकें। ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, और क्योंकि इसमें एक साधारण परिवार के बच्चे की असाधारण सफर की कहानी है। इसके अलावा उन्होंने इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें उन्होंने एक विकसित और मजबूत भारत का सपना देखा था। उनका विश्वास था कि अगर देश के युवा अपनी सोच को बड़ा रखें और अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, तो भारत दुनिया के सबसे आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की सबसे खास बात तो ये थी कि उनकी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उन्होंने खुद को हमेशा एक टीचर माना है। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी वो स्टूडेंट्स के बीच जाते रहे, लेक्चर्स देते रहे और उन्हें नए आइडियाज के लिए प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि अच्छा टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर सोचने और कुछ नया करने की चिंगारी भी जगाता है। शायद इसी वजह से स्टूडेंट्स के साथ उनका रिश्ता इतना खास था। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले, जिनमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का प्यार और युवाओं का विश्वास। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इंसान जितना ज्यादा सीखता है उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। यहाँ से हमें उनकी जिंदगी से एक और सक्सेस मंत्र मिलता है, जो है कि जिंदगी में सीखना कभी मत रोकिए, क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें नए रास्ते दिखाती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव।

भी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र धुना कर देव कर तू कहना।

का जूट संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, किट्टे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। और आज के इस प्रेरणादायक सफर में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी के कई पहलुओं को जाना। एक छोटे से शहर रामेश्वर में जन्मे एक साधारण बच्चे से लेकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का उनका ये सफर हमें सिखाता है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी जर्नी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, मेहनत और सीखने की और देश के प्रति समर्पण की कहानी थी। और उनकी जिंदगी से हमें ऐसे सक्सेस मंत्रास भी मिले जो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी चीजें समझाते हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ उनके बहुत सारे सक्सेस मंत्रा भी मिले जो कि हमने बात करी कि पहला सक्सेस मंत्रा था कि बड़े सपने देखिए। जी हाँ, सपने हमेशा बड़े देखिए, खुली आंखों से देखिए और इसे पूरा करने के लिए काम करिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा था शिक्षा और ज्ञान को अपनी ताकत बना लीजिए, पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा था असफलता से डरना नहीं चाहिए, चाहे फेलियर्स कितने भी क्यों ना आ जाए पर हमेशा ट्राई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा सक्सेस मंत्रा था मेहनत और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लीजिए, ये लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर किसी ने इसे ट्राई कर लिया ना तो समझ लीजिए आपकी लाइफ ना हमेशा के लिए बन गई, तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्रा है अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के लिए कीजिए। जी हाँ, हम अपने लिए तो सक्सेस होते ही है पर अपनी सक्सेस को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही खास बात होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी ली इस जर्नी में उनकी बातों से, उनकी लाइफ जर्नी से, वो हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम बड़े सपने देखें, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के सक्सेस मंत्रा में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जर्नी से विदा लेते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ स्नेहा और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शख्सियत की जर्नी के साथ, उनकी कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्रा मिलेगा। तब तक के लिए याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ, बाय।
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
2: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरूह इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों, हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे, बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गानों के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों, बात हो गई बहुत सारे इनके बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी करा और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों, बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया अभी, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स, और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है, और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara dun taman che pe disco.
2: Well, hello, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto. मेरा नाम है सागर, मैं लेकर के आ चुका हूँ प्रोग्राम सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। रेडियो मानव रचना 107.8 का एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है ये, जहाँ पर आपको लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, अपने अधिकारों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, जो चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन हमें फिर भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। इसी गैप को दूर करने के लिए ये वाला प्रोग्राम हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आते हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर छवि। डॉक्टर छवि इज एन एसोसिएट प्रोफेसर विद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट मानव रचना यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ये वैसे बात नहीं होने वाली है कि आपको कैसे बात करनी चाहिए पब्लिक में। हम सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि कानून के हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई बयान दे रहे हो या किसी इंसान से आप कोई बात कर रहे हो, कोई अपनी बात कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई लूप होल है वहां पर, क्या वहां पर गलती की गुंजाइश होती है और गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कैसे उनको सुधारा जाए। आज के इस एपिसोड से आपको ये तमाम चीजें क्लियर होने वाली हैं, तो इत्मीनान से बैठिए, अपने शो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन स्वागत करेंगे डॉक्टर छवि का। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
3: हाय सागर, थैंक यू वेरी मच, इट इज रियली अ प्लेजर टू बी हियर।
2: थैंक यू सो मच मैम, मतलब मुझे हमेशा जब मैं ये शो करता हूँ तो बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, और ऐसी मेरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स भी उतना ही एंजॉय करते होंगे, उतना ही सीख पाते होंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अलग नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी का। स्पेशली अगर मैंने कोई टिप्पणी कर दी और मैंने अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए।
3: सागर, आज के समय में सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन एक तरह से हम कहेंगे कि एक इंडिस्पेंसिबल एस्पेक्ट हो गया है, और ये हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। ये हमें अपने आसपास के लोगों से भी जोड़ के रखता है, और कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे के साथ ही चल पाते हैं। तो हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम बहुत बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है, ये हमें अधिकार देती है कि हम सेंसिटिव तरीके से और किसी के इमोशंस को हर्ट ना करते हुए, अपने अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ ना करते हुए, कम्युनिकेशन को कैसे एम्पैथेटिक तरीके से सामने वाले के आगे हम रखते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लाइक योर कमेंट्स, योर थिंग्स दैट यू स्पीक ऑन सोशल मीडिया।
2: बहुत सुंदर। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि लोगों के शब्दों में आपको नफरत नजर आएगी, या फिर आपको कड़वाहट नजर आएगी, या अपशब्दों का चयन किया जाता है, ठीक है, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, खुलेआम होता है, और ये हम सब ने इस तरह की वीडियोस देखी हुई हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं डोमेन में, कानून क्या कहता है इसको लेकर के? क्या कानून में कोई प्रावधान है कि अगर किसी ने मानकर चलिए गाली दे दी और मुझे वो बात बुरी लगी लेकिन मेरे लिए नहीं बोली गई है, क्या मैं उसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ कानून के सामने?
3: हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं उसको पॉइंट आउट। और अगर देखा जाए तो लॉ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इस तरह के, बट सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिकली आपको साइबर जो हमारे सेल्स बने हुए हैं उनके पास रिपोर्ट करना होता है इन सारी चीज़ों के लिए, फिर वो आगे के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ से आपको क्लियर होते हैं। एक वैसे भी साइकोलॉजी में कहा जाता है ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट, तो आपको लगता है आप तो स्क्रीन के इस तरफ हैं, सामने वाला आपको डायरेक्टली नहीं देख पा रहा, तो आप अपने शब्दों का चयन जो है वो उस तरह से नहीं करते, और जो आपके मन में होता है बिना सोचे समझे आप उस फाउल लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो स्क्रीन, आप वैसे ही शब्दों का चयन करें जो आप अपने लिए सुनना पसंद करते हो।
2: बहुत सुंदर। ये मुझे लगता है कि सिंपल सा सिद्धांत है, लेकिन ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि यार आपको उस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए जो आप सुन सकें, जो अपने घर में आप बोल सकें, वही सब चीज़ें आप उसको एक घर की तरह मानिए कि आप बाकी लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हो, वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लोग सोशल मीडिया पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं?
3: सिमिलरली जैसे अभी मैंने अभी बोला कि वो एक डिस इनहिबिशन वाला जो इफेक्ट होता है, लोगों को शायद ऐसा लगता है कि एक हीट ऑफ मोमेंट या इंस्टेंटली देर इज़ नो वन वॉचिंग यू, आपको कोई नहीं देख रहा एंड यू कैन राइट और स्पीक एनी थिंग वॉट यू लाइक, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं. अगर आपके मन में उस तरफ एक ऐसा कोई शब्द आता है, आपको बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, यू आर इन रेज, तो आप उस तरह का कमेंट लिख देते हैं. उस टाइम आप ये भूल जाते हैं कि शायद जो व्यक्ति स्क्रीन के उस तरफ है वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है और उसको आपके कमेंट्स या लैंग्वेज से उतना ही हर्ट होगा जितना कि शायद आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखते हैं. तो जो चीज़ हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखते हैं, हम अपना कर्टसी, पोलाइटनेस, काइंड, तो सेम मैं ये आग्रह करूंगी सभी से कि जब आप कुछ सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो आप उतने ही कर्टियस, पोलाइट, एम्पैथेटिक रहें.
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. आई थिंक म्यूजिकल ब्रेक का कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ. आगे इस संवाद को हम लेकर के चलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया के डोमेन में कैसे बात करनी होती है, कैसे अपनी बात रखी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सही में आपको अलाउ करता है कि किसी भी तरीके के शब्दों का आप चयन कर सकते हो, ये आगे डिस्कस हम करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव.
4: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
5: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
4: हाँ गुरुदेव. ना

ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਨਮਲਦੇ।

महाराज पधारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहा है सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ डॉक्टर छवि। कम्युनिकेशन स्किल हमारा आज का टॉपिक है, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको कैसे बात करनी है अपने दोस्त से, बल्कि इस तरीके से कि कैसे आपको इस तरीके से बात करनी है कि कानून का शिकंजा आप तक ना पहुंचे। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, थोड़ा सा मुझे अंतर समझाइए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू अब्यूज समवन में।
1: बहुत से लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो हमारे विचार और जो हमारी नीतियाँ हैं उनको हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, उनसे डिसअग्री भी कर सकते हैं, पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं निकलता कि हम इंसल्ट करें किसी को भी, या किसी को थ्रेटन करें, या किसी पर डिफेमेशन का किसी भी तरह का या नफ़रत फैलाने का जो है उस तरह का कोई अधिकार आपको मिल गया है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इसीलिए फ्रीडम टू अब्यूज़ के साथ कई बार, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है हमें, वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ वर्ड, एनी टाइप ऑफ अ लैंग्वेज दैट वी विश टू यूज़। तो बिल्कुल इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और डेमोक्रेसी है हमारी, असहमति हो सकती है पर असभ्य भाषा का उपयोग ना करा जाए।
0: क्या किसी के अभद्र शब्दों से या अपमानजनक भाषा से किसी की मानसिक हालत के ऊपर प्रभाव पड़ता है? मानसिक जो हमारी हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका?
1: बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर हम एग्जांपल लें, अभी कोई एक बच्ची है, उसने 99% अचीव किए हैं और उसने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाला है। वो पोस्ट उसने लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है और उसको कोई भी देख सकता है, उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। अगर वो कमेंट्स उसके अचीवमेंट्स को ना लेके उसको लाइक वो कैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस है या उसका कलर कैसा है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसका मेंटल हेल्थ ज़रूर डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे यू डोंट लुक वेल, इस तरह का कोई कमेंट आ गया, तो सच में वो जो केस है, जो लड़की है, उसके साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ सच में डिटेरियोरेट हो सकती है, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और आपकी जो भाषा है, जो कहते नहीं है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। वर्ड्स आर जस्ट लाइक अ सॉर्ड, वो किसी को भी घायल कर सकते हैं। तो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और मेंटल हेल्थ का एक ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर इतने लाइक्स नहीं हैं तो एंग्जाइटी में चले जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो लैंग्वेज तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह की भाषा का आपको उपयोग करना है।
0: अगर कोई मैंने गलत रील डाल दी जिसमें मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उसको लोगों ने पॉइंट आउट किया और बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्या ये सच में प्रॉब्लम फिक्स हो गई है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कई सारी पोस्ट या रील में देखते और पढ़ते भी होंगे कि एक बार जो चीज़ इंटरनेट पर चली जाती है वो किसी भी तरह से डिलीट नहीं हो सकती, मतलब परमानेंटली तो वो रिमूव हो ही नहीं सकती। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिट्रीव करे जा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने मोबाइल में डिलीट कर दिया है किसी को कुछ भी अब्यूज़ करके और वो सब ख़त्म हो गया है? नहीं, हो सकता है उस व्यक्ति ने उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया हो, रिपोर्ट कर दिया हो आपका एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी आप अपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर एनी पर्पस।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग। किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं हमारे देश में?
1: कहने को तो बहुत सारे लाइक पोस्ट्स हैं अदर देन कर्टियस। तो एक मिसकंसेप्शन ये भी आ जाता है कि आप कुछ भी पोस्ट करेंगे आपको कोई लॉ का शिकंजा नहीं कर सकता, बस ऐसा नहीं है, लीगल एक्शन होगा। और सबसे पहले तो डिफेमेटरी जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी आप पर आरोप लगाया जा सकता है। अगर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं इवन ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और एनी काइंड, अगर आपने धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष कुछ हेटरेड सॉर्ट ऑफ स्पीच दी, उस बारे में भी आप पर हो सकता है लीगल एक्शन। साइबर बुलिंग अगर आप कर रहे हैं उस पर भी आपको एक्शन हो सकता है। किसी की आप पर्सनल चीज़ों को बाहर ला रहे हैं उस पर भी हो सकता है, विदाउट हिज और हर कंसेंट। अगर पर्सनल चीज़ें आप बाहर ला रहे हैं, प्राइवेट चीज़ें, तो उस पर भी हो सकता है। और फॉल्स र्यूमर्स को अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उस पर भी हो जाएगा। फेक न्यूज़, इम्पर्सनेशन, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिन पर आप पर लीगल एक्शन हो सकता है।
0: ओके, क्या ह्यूमर भी हार्मफुल हो सकता है?
1: देखिए, ह्यूमर को कई बार हम बहुत अच्छी भाषा में सटायर से भी कई बार मिसकॉन्सेप्शन में चला जाता है। जैसे मजाक अगर एंटरटेनमेंट के लिए है, ह्यूमर इफ़ इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, किसी को हंसा सकता है वहाँ तक तो ठीक है, पर अगर आप किसी को हैरिस करने के लिए, उसके फिजिकल अपीयरेंस को बुली करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को, उसकी कास्ट को, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, इन सब को अगर आप डिसरिस्पेक्ट तरीके से अगर आप बोलते हैं, तो वो वाला ह्यूमर जो है, दैट इज़ नॉट गुड। तो उस पर अच्छा ह्यूमर, विटी, इज़ अलग चीज़ जो सबको हंसाता है, और जो ह्यूमर किसी को रुला सकता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी के मन में किसी भी तरह का इमोशन हर्ट ना हो, तो ह्यूमर इस तरह का होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिलहाल वक्त एक और ठहराव का, यहाँ पर एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ आप लोग बने हुए रेडियो मानवप्रश्न 107.8 पर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर छवि। आइए आगे शो में बात करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पष्टीकरण तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

0: वेलकम बैक वंस अगेन, मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहा है सत्यमेव जयते, डॉक्टर छवि हमारे साथ हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा आज का टॉपिक है। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि पॉलिटिकल डिस्कशंस कई बार अब्यूजिव हो जाते हैं, क्या, पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सही है?
1: देखिए, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी इज़ हियर, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये हमारे लिए भी, और हर किसी व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा पूरा अधिकार होता है। पर हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास कई बार डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट्स सामने वाले से हो सकते हैं। बट अगेन, हमें जैसे अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा। हमारे पास मतभेद हो सकते हैं, मतलब हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं सामने वाले से, उसके विचारों से, पर उस व्यक्ति विशेष से आप नहीं डिसएग्री हो सकते हो। तो मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस में जो आपकी भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा मतभेद ठीक है, लाइक आप उनके विचारों से सहमत नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी, अगर वो प्रेजुडिस्ड हैं आप उन सब पर टिप्पणी कर सकते हैं, बट वो कैसे व्यक्ति हैं, वो फुलिश हैं या किस तरह के, वो नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी डिसएग्रीमेंट में आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर।
0: अभी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मैंने जाकर के देखा वहाँ पर पर्सनली, मोटिव अच्छा था, कॉज अच्छा था, अच्छा लगा देश के नौजवान उठ के सामने आए, आवाज़ उठाई, ठीक है। आप इस पार्टी में विश्वास रख सकते हैं, आप उस आइडियोलॉजी में विश्वास रख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी कि लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, संविधान आपको ये अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में जाकर के मैंने पर्सनली जो चीज़ नोटिस करी वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वहाँ पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करी जा रही थी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दी जाना या किसी और व्यक्ति को, किसी समुदाय को गालियां दिए जाना, क्या ये किसी भी प्रोटेस्ट में ओके है, एक्सेप्टेबल है?
1: फिर से हम लोग उसी बात पर आते हैं कि हमारी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा कर्टियस और सम्मानजनक होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को, अगर हम 5 साल बाद भी सेम उस भाषा को अगर हम सुनते हैं, लाइक हम अपना कमेंट पढ़ते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तो वो जो भाषा जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं या जिसने भी करी और जिसके लिए भी करी, कोई भी व्यक्ति विशेष है या पार्टीज़ हैं, उन भाषा का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब्यूज़िव लैंग्वेज, गालियाँ देना, किसी पर पर्सनल अटैक्स करना, ये सब तो कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आजकल कहा जाता है, उसका तो बिल्कुल भी ये हिस्सा है ही नहीं। और ऐसा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ आपको खुद के लिए सुनना पसंद है आप वही बोलें वही लिखें। तो जो इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं वो एक बार पहले देख लें कि क्या वो अपने घर में, टेबल के अदर साइड, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड से, क्या वो इस तरह की भाषा सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, तभी वो इसको आगे लेके जाएं। और नहीं तो भाषा हमेशा बहुत ही पोलाइट, काइंड और कर्टियस होनी चाहिए। मतलब डिसएग्री करती हूँ मैं इस चीज़ से कि कोई भी भाषा आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया का कोई पोस्ट किसी के करियर को प्रभावित कर सकता है?
1: क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, और इसीलिए कर सकता है क्योंकि आजकल तो सारा कुछ सोशल मीडिया पर है। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो यूजुअली आपका सोशल प्रोफाइल देखा जाता है, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म पर हो, और आपका ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपकी डिजिटल रेप्यूटेशन बताता है कि आपकी पोस्ट कैसी हैं, आप कि लाइक्स किस चीज़ पर है, आपके कमेंट्स किस तरह के हैं। तो आपका जो फुटप्रिंट है डिजिटल वाला वो आपकी रेप्यूटेशन बिल्ड करता है। तो जब आप करियर के लिए, प्रोस्पेक्ट्स के लिए जाते हैं, तो यस, दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द अदर पार्टी, लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू शॉर्ट लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल फुटप्रिंट।
0: बहुत अंदा। तो भैया, आपके करियर के ऊपर भी सवाल उठ सकता है अगर आप थोड़े माइंडफुल नहीं हुए, अगर आपने ऐसे ही रैंडम कोई चीज़ डाल दी, सोच समझ कर डालिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा 5 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जो जिम्मेदार हैं कम्युनिकेशन के ऑन सोशल मीडिया। व्हाट आर द 5 गोल्डन रूल्स?
1: ऑलराइट, अब ऐसे गोल्डन रूल्स तो बहुत सारे, मतलब 5 हम लोग कहते हैं, पर जैसे सबसे पहला जो मैं कहूँगी वो थिंक बिफोर पोस्टिंग। तो पोस्ट करने से पहले ज़रूर एक बार सोचें, और अगर आप कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वेरीफाई बिफोर फॉरवर्डिंग, तो हमेशा देख लें कि आप र्यूमर, गॉसिप ये सब तो नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं. और रिस्पेक्ट बिफोर रिस्पोंडिंग, जब भी आप रिस्पोंड कर रहे हैं तो ये देख के चलें कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पोलाइट हैं या नहीं. और रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचें ज़रूर, पॉज ज़रूर लें. इंस्टेंट रिएक्शन इज ऑलवेज डेंजरस. एंड एम्पथाइज बिफोर कमेंटिंग, सेम, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज बिफोर कमेंटिंग एनी थिंग. सो दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यू आर पोस्टिंग एनी थिंग ऑन सोशल मीडिया.
0: बहुत सुंदर. मेरे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो मैं श्रोताओं से, तो प्लीज़ फील फ्री मैम.
1: देखिए आज का जो टाइम है, थैंक यू सागर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग इन द कंक्लूडिंग पार्ट. तो जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है. ईजी बना दिया है, बट उसके साथ में हमारी विजडम, सेंसिटिविटी साथ में जुड़ी होनी चाहिए. क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक थिंक फॉर्मूला अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. हमें हमेशा सच के साथ ही रहना है, लाइक सच ही बोलना है सोशल मीडिया पर भी. हेल्पफुल रहना है, इंस्पायर करते जाना है, और जो ज़रूरी है उसी को हम फॉरवर्ड करें या सोशल मीडिया के पोस्ट को लाइक करें. और काइंड लैंग्वेज वी हैव टू यूज़. तो अगर हमारी पोस्ट और हम लोग इस तरह इन सारी चीज़ों पर अगर हम बढ़िया निकल जाते हैं, तो शायद हमें लीगल फ्रेमवर्क से दूर ही रहना पड़ेगा.
0: बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच मैम यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू अस.
1: थैंक यू. एंड एज आई सेड, इट्स ऑलवेज आई चेरिश कमिंग हियर एंड जस्ट कीप inviting us.
0: Thank you so much ma'am, it's an honor to always have you here. Thank you so much for enlightening us and umeed kar raha hu dosto aaj aapko ek aur topic acche se clear hua hai. Reason being ki ye show bahut khas isliye bhi ho jata hai ki yahan par jo expert maujood hote hain, jaise abhi yahan par Dr. Chavi hamare sath hai, to ye wo log hain jo bhavishya taiyar karte hain desh ka. These are professors जिन्होंने खुद वकालत की पढ़ाई की हुई है पहले, उसके बाद अब बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो आगे जा करके अच्छे वकील बन सकें, अच्छे जजेस बन सकें, या और किसी डोमेन में जाना तो एटलीस्ट एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें. ये एक जिम्मेदारी है जो उनके कंधों पर होती है, इसलिए ये शो हमेशा बहुत खास होता है. अगर आप इस शो को पसंद करते हैं तो हमें बताइए ज़रा 8010 7 8 10 7 8 पर. फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहाँ पर पार्क करने का, एक हॉल्ट देने का. फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। सशक्त महिलाओं से मिलवाने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनाती हूँ जिन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग चुना है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नुपुर माथुर। डॉक्टर नुपुर माथुर एक MBBS डॉक्टर हैं और सेवा की राह पर इस तरीके से चल रही हैं कि क्या कहने। ना सिर्फ ये जो गरीब लोग होते हैं या हमें कहना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उनके लिए सलाह लेकर जाती हैं, एडवाइस लेकर जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस लेकर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें सेहत का एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा देने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
4: हाँ नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा विशेष है नहीं मुझ में जितना आपने बताया है, बट स्टिल आई थिंक।
3: तो डॉक्टर नुपुर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं?
4: हाँ ये एक अच्छा प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण शायद हर व्यक्ति सोच में एक अलग अर्थ रखता है, और जैसा कि हम सोचते हैं, एक आम आदमी ये सोचता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से रिलेटेड है या महिला काम कर रही है या नौकरी कर रही है उससे रिलेटेड है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। सशक्तिकरण से अगर आप वैसे अर्थ ले तो महिला शक्ति, देखिए शक्ति तो महिला में होती है, नारी शक्ति का हमारे में तो हमेशा से रहा है, तो उस शक्ति को थोड़ा सा एक सही अर्थ देने को शायद सशक्तिकरण कहा जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह पर स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, तो सशक्तिकरण इस माध्यम से हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्वयं की जो भावना है जो नारी में होनी चाहिए, उस भावना को लेकर कुछ भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए जो भी कार्य वो करना चाहे उसको हम नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं।
3: हालांकि
4: हाँ, एक बड़े तौर पर देखा जाए अगर किसी देश के लिए या विश्व के लिए तो यही देखा जा सकता है कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छा कमा सकती हैं। पर अगर इंडिविजुअल अप्रोच देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही रिलेट किया जाना चाहिए।
3: वाकई बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नुपुर आपने। और मैं ये कहती हूँ महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए वो आजादी है जिससे वो अपना जीवन जी सकती हैं, क्योंकि परेशानी है कि महिलाएं अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबे समय तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। दोस्तों वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर से। डॉक्टर नुपुर की वैसे तो पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस में ये इतनी सारी महिलाओं की मदद करती हैं कि क्या कहने। भाई मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि महिलाएं जो है ना वो अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं, और जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ना वो बाहर डॉक्टर के पास तो जाती ही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर हैं, आई एम श्योर इस बात से तो वो बिल्कुल अग्री करती हैं। डॉक्टर नुपुर मुझे बताइए ना कि आज के टाइम की महिलाओं का क्या खास चैलेंज है।
1: हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाएं नहीं आती हैं आसानी से डॉक्टर्स के पास। इसका एक कारण तो ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इवन जो लोअर क्लास है उसमें इतनी विजिलेंस नहीं है। लगता है कि एक छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो है कि पैसों की कमी होती है। जो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए और जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उसमें पैसों की काफ़ी कमी होती है। तो हमेशा महिलाओं का पहला प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, उनको पहले आगे रखें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इसका इलाज करा दें। फिर एजुकेशन है जिसमें आजकल काफ़ी पैसा चला जाता है, तो उसमें वो अपना योगदान दे देती हैं और उनकी बीमारी थोड़ा पीछे रह जाती है। और एक दूसरा कारण यह है कि कुछ हद तक औरतें अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाती हैं सबसे, ख़ास तौर से जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ उनके पति का कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता है और इस तरह से वो पीछे रह जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों मैं तो महिलाओं से हमेशा से ये बात करती हूँ, इतनी सारी महिलाएं फिलहाल मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी, जीवन तो आपका है और इस जीवन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है। तो अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना पाएंगी। जरूरी है कि अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। जहां पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वहां अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करें। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जब मैं ये कहती हूँ ना सशक्तिकरण, तो ऐसा लगता है महिलाओं में बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये दरअसल चैनलाइज कहीं और जगह हो रही है। मानी वो शक्ति है तो वो पूरे परिवार को पालने के लिए शक्ति है, शक्ति है तो बहुत सारे दर्द को एंड्योर करने की शक्ति है तो अच्छे डिसीजन लेने की शक्ति है, लेकिन उसे सही जगह इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं को ये मौके मिलने चाहिए। आज हम डॉक्टर नुपुर से बात करें। डॉक्टर नुपुर माथुर अगर देखा जाए तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन दिल में इनके बिल्कुल मदर टेरेसा की जैसे ही बहुत सारा प्यार है। इतने सारे लोगों की ये मदद करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में तो बहुत कम है। डॉक्टर नुपुर, अब मैं ना आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। क्या आपके समय में डॉक्टर बनना आसान था? और अगर मैं आज तक की आपकी पूरी जर्नी देखूं, तो कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जिसको आप आज जीवन के इस पड़ाव पर बैठकर ये कहें कि यस, मैंने ये एम्पावरमेंट भरा डिसीजन लिया?
1: थोड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। खैर, जर्नी मेरी कुछ बहुत कठिन नहीं रही, क्योंकि एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षा वर्ग से थे और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम जहाँ रहते थे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैंपस था, तो चारों तरफ देखा जाए तो शिक्षा ही शिक्षा थी। फादर भी मेरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, मदर लेक्चरर थी, तो ये हमेशा देखते चले आए कि हमसे सीनियर, हमारे से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो या तो उस टाइम पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये दो ही चार थोड़ी अच्छी वाली शिक्षाएं कही जा सकती थी। तो थोड़ा सा प्रयत्न करा, कुछ बहुत विशेष नहीं, पर हाँ उस टाइम PMT एग्ज़ाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट करके, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद हाँ यह ज़रूर था कि शादी हमेशा माँ बाप सोचते थे कि एक सही समय पर हो जाए, तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर शादी के बाद यहाँ दिल्ली आई और उसके बाद लगा कि पिछड़े वर्ग को और भी समाज को ऐसा लगा कि एक MBBS डॉक्टर की अपनी अलग पहचान है, तो फिर मैंने वही परस्यू कर लिया। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक था तो मैं उसके साथ ही जुड़ गई और फिर बस तब से शायद चली रही है गाड़ी।
0: वाओ, बट भाई देखिए, ये एक बहुत एम्पावरिंग सी जर्नी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत सारी महिलाएं नहीं ले पाती हैं, और आपने ये डिसीजन लिया। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आज आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज जब आप उनके इलाज करती हैं, आज जब आप उनके पास जाती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जीवन को टच कर रही हैं और उनके जीवन को बदलकर उनके जीवन को और भी खुशमय बना रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट।

0: महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी ढेर सारे लोगों से हम बात करते हैं। जब डॉक्टर्स की बारी आती है ना, तो मन में हमेशा ये फीलिंग होती है कि ये वो लोग हैं जो हमें दर्द से बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर में हम भगवान का रूप तो देखते ही हैं, और आज हम बिल्कुल कहना चाहिए कि भगवान स्वरूप डॉक्टर नुपुर माथुर से बात कर रहे हैं। ये जिस तरीके का काम कर रही है ना, दरअसल मानवता की सच्ची सेवा है। आज भी ऐसे जमाने में जहाँ पर कि आपको डॉक्टरी सलाह फ्री में नहीं मिलती है या बहुत कम कॉस्ट में नहीं मिलती है, ये आज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। और इनफैक्ट मेरे इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये वहीं जाने वाली हैं। डॉक्टर नुपुर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ना जेंडर इक्वालिटी की बड़ी बात करते हैं, और अगर मैं डॉक्टरी लाइन में देखूं तो वहां तो फिर भी इक्वालिटी है, क्योंकि देखिए महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार तो सब पड़ते हैं, तो डॉक्टर तो आपको हर जेंडर के चाहिए। लेकिन बाकी सारे एरियाज में अगर आप देखें तो इम्बैलेंस है। तो क्या इस इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं?
1: हाँ, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में काफी हद तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहा जाए तो उत्थान नहीं हो पा रहा है। मगर अब बहुत सा नजरिया सब लोगों का बदल गया है। डॉक्टरी में तो आपने अभी देखा होगा कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स हर फील्ड में फीमेल थे, और इवन जो पहले इवन हम जब पढ़ रहे थे तब भी ऐसा था कि जो सोचा करते थे कि गायनी डिपार्टमेंट में इसमें मेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे। तो डॉक्टरी में तो ये समानता है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इतना कोई अंतर नहीं रहा है। पर और फील्ड में देखा जाता है कि इंजीनियरिंग में जो क्रूड वाली इंजीनियरिंग होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा पीछे से अगर देखा जाए, अच्छी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो या उनके मम्मी पापा अच्छी तरह समझा दें, तो शायद हर फील्ड में, और इंडिया में तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई हैं। तो ये कहना कि समानता नहीं है, यह भी गलत होगा। थोड़ा सा उसमें अंदर से, अपने अंदर से कुछ एक भावना सी चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं, तो काफी हद तक सरलता से पहुंच जाती हैं स्त्रियां।
0: वाकई तो भाई देखिए, इस बात की हम खुशी मना सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। जहां पर एक जमाने में महिलाएं होती ही नहीं थी, वहां अब हम महिलाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि अगला सवाल बड़ा दिल को छूने वाला है। हर महिला जब इस सवाल को सुनती है ना कहीं वो इस सवाल से रेजोनेट करती है और सोचती है इसका सोल्यूशन क्या मेरी जिंदगी पर फिट होगा या नहीं। तो पूछने वाली हूँ ये अगला सवाल डॉक्टर नुपुर माथुर से, पर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज उतनी ही प्यारी लेकिन सीजन्ड डॉक्टर नुपुर माथुर जी से मैं बात कर रही हूँ। बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, जब कभी भी महिलाओं की बात होती है, मतलब मैं अक्रॉस पूरे भारत की बात करूं या ग्लोब की बात करूं, तो हमेशा से ये माना गया है कि जो महिला है ना, वो घर की केयर टेकर है और नर्चरर है। और ये जो रोल्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत जमाने से डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसा होता है कि एक अगर महिला अपना करियर बना भी रही है या बना भी चुकी है, तो जैसे ही जीवन का वो पड़ाव आता है जहां बच्चे आते हैं और आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमेशा एक महिला को अपने करियर का त्याग करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करिए, आप ब्रेक ले लीजिए या आप कुछ और करिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी भी महिला के करियर के लिए एक पुरुष ने कहीं कोई त्याग दिया हो।
1: नहीं नहीं, ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल तो पुरुष वर्ग बहुत साथ देता है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी यंग, बिल्कुल यंग अभी आगे बढ़ रही हैं, और जब फैमिली में आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक अच्छा प्रमोशन होने वाला है, साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देर आर मैनी, अब तो अपर क्लास में तो हैं पर लोअर क्लास में भी देर आर मैनी मेल मेंबर्स हु रेस्पेक्ट देम एंड हु ऑप्ट फॉर लीव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द फीमेल पार्टनर। सो इट्स नॉट एज सच, बट हाँ, डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर। द मेन थिंग इज दैट इन लॉज एंड हूएवर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फैमिली शुड बी कंपैशनेट फॉर द गर्ल। तो आई थिंक इतना नहीं है, रहता जरूर है। और अगर स्त्री कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है, कुछ फॉरगो करना पड़ रहा है उसको, अपना प्रमोशन या कुछ अपने आवर्स जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो शायद मन में एक ऐसा मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है कि हमने वो नहीं करा लेकिन कुछ उससे बढ़कर कर दिया। तो ये मेरा मानना है।
0: वाकई बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर नुपुर, और शायद मुझे लगता है कि यही मातृत्व कहलाता भी है। तो इसीलिए एक माँ का जो दर्जा है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि माँ बनने के बाद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के माइंडसेट को और भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं।
1: रिस्पेक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। वो शायद मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग में एक स्कूलिंग के टाइम से जो मैनर्स और रिस्पेक्ट फीमेल्स के प्रति इम्बाइब हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो बॉयज होते हैं उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आपको अपने साथ वाली जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी के लिए, मैंने देखा है मदर्स के लिए भी कई लोगों में वो रिस्पेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, जो और कंट्रीज में होता है मेल्स में। तो वो उसमें अगर थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से अगर अच्छी एजुकेशन दे दें तो शायद काफी हद तक ये समस्या खत्म हो सकती है।
0: और इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत घर से हो सकती है, और घर में फिर कौन, माँ, महिला। तो भाई अगर महिलाएं चाहें तो वाकई बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों, वक्त है एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर माथुर से। डॉक्टर नुपुर, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने ना अपने पूरे जीवन के पन्ने खोले, आपने बहुत सारी शिक्षा हमें दी, साथ के साथ ही बताया कि चीजें बदल रही हैं और कुछ जो चीजें बदलनी है उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन सामंजस्य बिठाकर। तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे सभी को आप?
1: खास मैसेज तो यही है कि स्त्रियों को लगे रहना पड़ेगा, अपना एक अलग स्थान तो बनाना पड़ेगा और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के शायद यह काम करना ज्यादा आसान होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो स्थान आपका परिवार आपको नहीं देगा, जरूर देगा। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखें और उस तरफ अपने प्रयत्न जारी रखें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जो समाज है ये तभी बदलेगा जब आप और मैं बदलने वाले हों, जब हम अपनी सोच को बदल लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना? जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएं जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2025 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितनी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ा दी। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था यूएस में भी जो वीजा के नियमों में काफी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीजा नियम काफी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जाकर के एजुकेशन लोन की ईएमआई कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कम्फर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए, यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है दोस्तों? आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा चार्म भी रहता है हमारे देश में उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने का। यदि हम 2025 वर्ष 2025 के प्लेसमेंट सीजन की बात करें तो IIT बॉम्बे में लगभग 74% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये कि IIT मुंबई में 74% प्लेसमेंट हुआ। और इंटरनेशनल जो पैकेज था वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की भी बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो उस वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है, उसकी प्लेसमेंट आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में, वो बहुत बढ़ गया है। वीज़ा की इश्यूज़ हो गए हैं और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं। यानी अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच
हमें आज स्वीकारना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो इसका एक जो लाभ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सीधा सीधा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए होते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप है या कोई भी और एसेसरी। और साथ ही साथ जब आप किसी जगह पर रहते हैं, नई

पे विदेशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। और एक अनुमान के अनुसार जो हम कई देशों की हम बात करते हैं तो उसमें तकरीबन किसी एक छात्र पर 20 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि छात्र अपने खर्चे को बियर करने के लिए, वहाँ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं और वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले वहाँ मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है या वहाँ का जो वातावरण है या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस जो आपको अकेलापन महसूस होता है वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु, जो पर्यावरण वहाँ का है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदी नहीं होते, तो वहाँ पर जा करके उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा करके जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पर हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है। और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले करके आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता जा रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। साथ ही जैसा भी मैंने आपको कहा कि भारत में भी अब ग्लोबल कैंपसेज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, यानी शिक्षा नीति के माध्यम से भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ विदेश जाना नहीं है, सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी को अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें या यदि हम विकास की बात करें, तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा? एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न, यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं, वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में, जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य।

मनुष्य जब ही होता है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अवसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की मां ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए,

0: उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थी मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा, और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना, लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है, खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था, और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।

0: करूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
1: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: HPP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए। P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए। फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये 7 गुण आत्मा में निहित है। इन जब 7 गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान।

0: प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है, तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है। और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है।

0: है। तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते।

0: मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो सत प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो सत प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाभारत जो एक ग्रंथ है, इसके अंदर समाहित बहुत सारे विषयों के बारे में, बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के बारे में, और रागलेखा दासी जी हमेशा की तरह बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। तो वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृष हो गए थे
0: जी।
1: उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया और वहाँ कुटी बनाकर आसपास के रमणीय वन, पर्वत, नदियों के किनारे विचरने लगे। अनेक वेद अध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक बातचीत करने पर कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछो, धूप के कारण उन सबके शरीर बहुत कृश हो गए हैं और वह वीर पत्नी होकर अनाथाशी हो रही है और सब और से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुना की राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार से दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। कुपुत्र के मुंह में सच कर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर इसे सुनाई। आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो, तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्र से सज्जित होकर चले और मेघ चर्म और वलकल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उनका घी जलावे। दुर्योधन से ऐसा कहकर दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में भी ये बात बसी हुई है, पांडवों को बलकल वस्त्र मधु चर्म होड़े देख कर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी
0: जी।
1: और इससे बढ़कर प्रशंसा की क्या होगा कि मैं द्रौपदी को दुर्योधन वस्त्र पहने देखूं। कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश द्वैत वन में है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गोश यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, लोगों की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है आजकल नरशार्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पासी में ठहरे रहे हैं। ये लोग जब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, किंतु अहंकार और मोह में चूर हो रहे हैं, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। शकुनी ने कहा, जहाँ पांडव लोग रहते होंगे वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं। इस प्रकार जब सब लोगों के ठहरने की ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवाकर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। द्वैत वन के सरोवर पर गए वे लोग और वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने सरोवर को घेर रखा था। सुखा सरोवर को घिरा हुआ देख कर वे लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर तुम्हें वहां से निकाल दो उसे सरोवर पर भेजा। गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंदबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, उसी से हम देवताओं पर इस प्रकार की हुकूमत चलाता है, मानो हम बने ही हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सहस्त्र योजना कमर कस के तैयार हो गए। और गंधर्वों को मार पीट कर बलात् स्वर्ण में घुस कर गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। एक एक कौरव वीरों को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुर्योधन ने इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। चित्रसेन जी ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया और वो नीचे गिर गया रथ से। और बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ा लाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्री ने रो होकर धनराज से कहा, महाराज हमारे प्रिय ऋषि महाबाहु दृतराज कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे। धनराज ने कहा, भैया भीम इस समय कड़वी बातें सुनाने की का नहीं है। देखो ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे प्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उसे उस तिरस्कार को वो सह नहीं सकते। अर्जुन नकुल सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ। यदि वह गंधर्वराज समझाने में जाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि अरे युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ये हमारा भाई दुर्योधन नहीं है सुयोधन है और हम लोग 105 भाई है। हम 5 भाई नहीं है 105 है
2: जी।
1: हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए ही हम जैसी हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। मारुति पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। गंधर्व उन्हें उड़ते देखकर बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा गया जिसके चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे चित्कार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिल मिला उठा। उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लटा दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। वे लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे, उन्होंने मुझसे कहा जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्री सहित बांध कर लिया गया। भाइयों के साथ अर्जुन की सब प्रकार से रक्षा करना क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और ज्ञान विद्या का शिष्य है। फिर ये सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सही चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से सरलोक को चले गए। देवराज इंद्र के दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ के मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर व दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। इस समय वैसा व्याकुल हो रहा था मानो इंद्रियां नष्ट हो गई है, शोक के कारण उसके हृदय थका जा रहा था।
2: जी श्रोताओं बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और अभी रागलेखा दासी जी ने हमें कथा सुनाई किस तरह से पांडवों की जो दुर्दशा हो रही थी वो भी बताया और कौरवों की क्रूरता के बारे में बताया, गंधर्वों से उनका किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से भाइयों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, ये सारी कथा हमने जानी महाभारत के इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा हम जान लेते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: दुर्योधन ने कहा, जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझे मंदोगती को मुंडन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो मैं उसी महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। मेरा जो विचार है वे सुनो। मैं यहाँ अंजल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब बाह्य सीमा से उड़ चले जाओ। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुर्योधन का प्रायोपवेश देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए कर्म कांड आरम्भ किया। वेद विधान में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में घी दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ से बड़ी ही अद्भुत कृपया जमाई लेती हुई प्रकट हुई। बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्य ने प्रसन्न के साथ इस प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ लिया। कृपया ने कहा, जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुँच गई। एक क्षण में ही उसे देखकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आता देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोकों में भी उसकी निंदा होती है। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रु में संग्राम करेंगे। अब आप अपने घर जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दूसरे दिन सवेरा होते ही खुद पुत्र करण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रु को नहीं जीत सकता। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ, पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। इस प्रकार कहने और दुशासन के बहुत अनुनय विनय करने पर दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया और पांडवों के साथ युद्ध का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए साथी जोड़े उसको नियुक्त कर दिया। दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। भीष्म के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उस समय कौंडिन्य का राजन, सुनिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं, इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते। आप मुझे सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी की विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी, मैं शास्त्रों की शपथ कहकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार कर ली। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना लेकर चला और महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद अपना अशुद्ध बना लिया। उसे कर रूप में बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीत कर उनसे भी कर लिया। वो हिमालय से शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। सब राजाओं को जीत कर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। इन सबको जीत कर इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी की विजय कर ली। दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि मैं पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था मैंने। अब मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन, इस समय सभी निपतिगण आपके अधीन है, आप याचकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। दुर्योधन ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए शास्त्र अनुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिए। इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। इस पर पुरोहित ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किन्तु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, उसका नाम है वैष्णव यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ही जोड़ का है और हमें बहुत प्रिय है, इससे आपका हित होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। राजन, यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार है, सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। उस समय सारे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनमें से एक दूसरे दुशासन से कहा तुम शीघ्र ही जयपुरम जाओ और वहाँ रहने वाले पांडवों और ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। युधिष्ठिर ने कहा हम भी उसमें सम्मिलित होते किंतु इस समय इस प्रकार नहीं हो सकता क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास का नियम करना है। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते, फल मूल खाकर रहते थे। राजा युधिष्ठिर सोचते हम भाइयों पर जो महान दुख आ पड़ा है वे मेरी ही करने का तो फल है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती और नींद नकुल सहदेव द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। एक समय की अपने व्यास जी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाते देखकर जीवन निर्वाह करते थे व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता, तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए उसे प्रसन्न होकर अपनी यथाशक्ति से दान दे। युधिष्ठिर ने कहा मामुनि दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा राजन दान से बढ़कर कठिन कार्य स्थिति पर दूसरा नहीं है। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए धन का त्याग करना बड़ा ही कठिन है, अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है, उन्हें दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसमें से यदि कोई धन न्याय से कमाया गया हो तो उत्तम देश काल पात्र का विचार करके इसका दान किया जाए और इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है तो कर्ता की महान भरोसे रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह है मुद्गल ऋषि की कथा।
2: जी तो श्रोताओं इस ऋषि की कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आपसे इजाजत लेने का हो चला है। और इसी तरह बहुत सारी कथाएं और प्रसंग महाभारत के अंतर्गत जो समाहित हैं वो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए, इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है

जान बूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूँ

मैं की बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की बात हम कर रहे हैं। ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है अपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है, और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए, जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली। जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का। जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है। और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे। और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रिश्ता 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा. साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स है तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या हैं बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के 7 दिन में आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंगासन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतुबंधनासन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंधनासन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतुबंधनासन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की। जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी। तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है। कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में। मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है। इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है। तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है, तो आप थोड़ी देर

आसन कर लीजिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है। लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है और सिर को आपको मैट पर ही लगा कर रखना है। और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है। कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन। जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है। जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है। और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है। इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का। तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी। अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी, और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्रे घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आरजे साक्षी में. कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ और दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया कि आज इस तरह खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बन के अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया। लेकिन देखिए, मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का इंडिया से क्या लेना देना। लेकिन उसी स्पोर्ट में करियर इन्होंने बनाया। ट्रेनिंग के लिए इटली और फ्रांस तक जाने का खर्चा उन्होंने लोन और क्राउड फंडिंग से मैनेज किया। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता। 2020 में हिस्ट्री लिखी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर की इन्होंने हिस्ट्री लिखी। भवानी ने एक ऐसे स्पोर्ट में नाम कमाया जहाँ लोगों का वो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता थी। जिंदगी के हर अटैक का सिर्फ एक जवाब था, भवानी की फेंसिंग स्क्वाड। और ये जो है, इन्होंने नाम तो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, जहां किसी को पता भी नहीं था कि ये फेंसिंग है क्या, वहां पर इन्होंने खेल के भाई सबका जो है दिल जीत लिया। चलिए, इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है, और यही आदमी जीवित था कल तक। शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संती हो, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंती हो। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बतानी पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं,

आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी। तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है, उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी, पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में, कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब और भगवान है।
तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अल-हिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आई, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उनसे पाही उन्होंने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है, इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है, इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है, जो तुम्हारे भीतर हो कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है, ये तो तुम्हारे अंतत्म का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी,
फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5,000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी, अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे होगे कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा, कोमल चित्र, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है, संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी, संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा, और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं।
संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो बासंती देहों को रंगना है कायरता, पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे, सब होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में,
उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी ना थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी। किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस
न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं, लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो। तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें, 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगे पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो, 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने 1 विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता, बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता, तुमसे ज्यादा पढ़ लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक, अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो,
75 साल के तुम हो गए, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज न हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए, और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक, प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत, तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती,
पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती है। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है।

तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो, लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफा बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, तू थक गए अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए, तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूँ। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूँ। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूँ। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता, लेकिन एक किरण चौंक जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती है।

एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशीत युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है, और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नालियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या पर हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? सुभाष जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीर्ण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु पी कर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटकाकर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कार उसे कहिएगा, और उसे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसा करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर लो। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले खदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले खदासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। सुने आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते है कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋतिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप इंजॉय कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है